0: है।
1: मुझे ना जिंदगी ने धीरे धीरे एक बात सिखाई और मैंने सोचा कि आज उसे आपसे बांटूं, क्योंकि बहुत जरूरी है कि जिंदगी में हर एक बात हर एक इंसान को समझाना एक्सप्लेन करना जरूरी नहीं होता है। भाई पहले मुझे भी आपकी तरह लगता था कि हर किसी को बात समझानी चाहिए, एक्सप्लेन करनी चाहिए, लेकिन धीरे धीरे जिंदगी ने सिखाया कि लोग वर्ड से नहीं एक्शन से समझते हैं। संस्कृत में एक वर्ड है विवेक, यानी कि पेशेंस, जिसका मतलब है कि लाइफ में जो भी सही या गलत हो रहा है उसे शांत दिमाग से पहचान पाना। और जहां ये पेशेंस यानी कि विवेक होता है वहां अननेसेसरी एक्शंस खुद ब खुद कम हो जाते हैं। तो इसलिए अननेसेसरी एक्शंस लेना बंद कीजिए, दूसरों को समझाना बंद कीजिए और सिर्फ अपने काम पर फोकस कीजिए। एक और ट्रैक सताक्षी के साथ सुनिए, एंड कीप लिसनिंग टू रेडियो ब्रिस्वानी। आप सुन रहे हैं इट हैपेंस।

हाँ जी, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक. आप सुन रहे हैं ठापन सताक्षी के साथ. क्या था वो गाना? कल और आएंगे नगमों की गिरती कलियां चुनने वाले, मुझसे बेहतर कहने वाले, तुमसे बेहतर सुनने वाले. ये तो आपने जरूर सुना होगा, है ना? देखिए, ये बात सच है कि हर कोई किसी ना किसी की जगह कभी ना कभी जरूर लेता है. कोई हमसे पहले यहाँ होगा और कोई हमारे बाद. लेकिन देखिए, अभी ये जो वक्त है, ये आपका और मेरा वक्त है. अभी इस वक्त में हमारा जलवा है. कल जब ये वक्त ढल जाएगा, हमारे पास कुछ नहीं होगा, लेकिन हमारे पास याद करने के लिए ये यादें, ये बातें, ये लम्हे तो होंगे. और इसीलिए जितना हो सके इस टाइम को भरपूर इंजॉय कीजिए, क्योंकि दोबारा लौट कर ये जमाने नहीं आएंगे. कल और आएंगे नगमों की गिरती कलियां चुनने वाले. ठीक है जी, तो बस इस वक्त को एंजॉय कीजिए. यही वक्त आपका है और आप ही का है. स्टे ट्यून्ड, रेडियो प्रस्फानी सदाक्षी के साथ आप सुन रहे हैं इट हैपेंस.

0: कंटेनर्स फॉर चेंज के माध्यम से अपने खाली डिब्बे बोतलों से धनराशि कमाएं। आपके प्रत्येक योग्य खाली कैन बोतल और कार्टन पर 10 सेंट का रिफंड प्राप्त होता है। इसे हम बिन कॉइन कहते हैं। अपने बिन कॉइन की बचत करके रखें, खर्च करें या जिस उद्देश्य में आपका विश्वास है उसमें दान करें। आपके नजदीक कहीं एक कंटेनर्स फॉर चेंज मौजूद है, बैंक में डालें ना कि कूड़ेदान में। अपना सबसे नजदीकी रिफंड पॉइंट ढूंढने के लिए वेबसाइट पर जाएं और आज ही 10 सेंट कमाना शुरू करें।
1: कंटेनर्स फॉर चेंज राही अपने खाली डब्बिया बोतल तो कमाई करो। तुहाडे हर एक योग खाली कैन बोतल अते कार्टन उते 10 सेंट दा रिफंड प्राप्त हुंदा है। इसनु असी बिन कॉइन कहंदे हां। अपने बिन कॉइन नु बचा के रखो, खर्चो जां फिर जिस किसी संस्था जां विषय विच तुहाडा विश्वास है उन्हां नु दान विच दे दियो। तुहाडे नेड़े एक कंटेनर्स फॉर चेंज मौजूद है, बैंक विच पाओ ना के कूड़ेदान विच। अपना सब तो नजदीकी रिफंड पॉइंट लभण लई वैबसाइट उते जाओ अते अज ही 10 सेंट कमाना शुरू करो।

वेलकम बैक, इट हैपेंस, सुन रहे हैं आप सताक्षी के साथ रेडियो प्रस्वानी 1701 एम पर। और लाइफ में कई बार ऐसे लोग होते हैं ना जो आपको बहुत सलाह देते हैं और आप उनसे इरिटेट भी हो जाते हैं। देखिए, लाइफ में जो लोग आपको सलाह देते हैं, सजेशंस देते हैं, ये जरूरी नहीं है कि वो हर एक इंसान आपसे बेहतर हो। कभी कभी उसने बस वो रास्ते आपसे बेहतर देखे हैं या आपसे पहले देखे हैं जिन पर इस वक्त आप चल रहे हैं, और जो गलतियां उसने की है ना, वो नहीं चाहता कि आप उन्हें दोहराएं। शायद वो शख्स जो है, वो इंसान आपको इसलिए सजेशंस देता है, इसलिए सजेस्ट करता है कुछ भी। लेकिन वो क्या है ना, पहले के ज़माने के लोग सजेशंस मांगा करते थे और आज के ज़माने के लोग सजेशंस को ताना समझ लेते हैं और कुछ बताओ तो उसे दखलंदाजी मान लेते हैं। पर सच तो ये है ना कि जो आपको गिरते हुए देखकर चुप रहे, वो ज़रूरी तो नहीं है कि आपका अपना है। और जो आपको संभालने की कोशिश करे, ज़रूरी नहीं है कि वो आपका दुश्मन है। किसी को रास्ता दिखाना खुद को बड़ा बताना नहीं होता है। कभी कभी लोग आपको सजेशन सिर्फ इसलिए देते हैं क्योंकि आपकी जीत पर उन्हें शायद आपसे ज़्यादा खुशी होती है। वो यूं तो आपके सामने नहीं आते, लेकिन वो चाहते हैं कि आप लाइफ में कुछ बड़ा करें, कुछ अच्छा करें या कुछ बेटर करें, इसलिए वो आपको सजेस्ट करते हैं। आइए फिलहाल सोचिए मेरी बात को और मैं प्ले करती हूँ आपके लिए अगला ट्रैक। एंजॉय कीजिए और सताक्षी के साथ एंजॉय करते रहिए। इट हैपेंस, आप सुन रहे हैं रेडियो प्रस्वानी 1701 AM मेरे साथ।

वेलकम बैक, इट हैपेंस में सताक्षी के साथ हैं आप और एंजॉय कर रहे हैं इट हैपेंस रेडियो ब्रिस्बेन 1701 एएम पर। लाइफ में ना परफेक्ट लोगों का होना इम्पोर्टेंट नहीं है, लाइफ में अपनों का होना, अपने लोगों का होना इम्पोर्टेंट है, वो जो ना तो वक्त के साथ बदलते हैं और ना ही सिचुएशन के साथ दूर होते हैं। आजकल लोग कंडीशंस के साथ आते हैं, अच्छा वक्त आए तो साथ और मुश्किल वक्त आए तो खामोश। लेकिन जो रियल लोग होते हैं ना, उनकी बात अलग होती है। वो आपके साथ होने के रीजंस नहीं ढूंढते, वो बस साथ देते हैं। देखिए, जिंदगी का ना एक सिंपल सा और परफेक्ट सा रूल है कि इस दुनिया में परफेक्ट जैसा कुछ नहीं होता, परफेक्ट लोग कुछ नहीं होते, पर सच्चे लोग होते भी हैं और वो आपकी जिंदगी बना देते हैं, क्योंकि वो आपको जज नहीं करते, वो आपको समझते हैं, वो आपको बदलने की कोशिश नहीं करते, बस आपको एक्सेप्ट करते हैं। सो देखिए आपके आसपास रियल लोग हैं या परफेक्ट लोग। एंजॉय कीजिए अभी अगला ट्रैक और सुनते रहिए इट हैपेंस रेडियो ब्रिस्बेन 1701 एएम पर।

0: गाना बजा दूं।
1: सो वेलकम बैक, इट हैपेंस, सुन रहे हैं आप सताक्षी के साथ रेडियो प्रस्वानी 1701 AM पर। आज एक बहुत अच्छी बुक पढ़ रही थी तो उसने एक लाइन पढ़ी और सोचा, जब वो लाइन मुझे बहुत अच्छी लगी तो सोचा कि क्यों ना आपके साथ बांट ली जाए, शेयर कर ली जाए। तो उसमें लिखा था, बुक में लिखा था कि जो हम देते हैं वो हमेशा लौट कर वापस नहीं आता, पर जो हम देते हैं वो ये जरूर बताता है कि हम कौन हैं। अब देखिए ना, कई बार आपने किसी को सच्चा प्यार दिया, परवाह दी, अपने इमोशंस दिए, उसकी बहुत केयर की, पर बदली में कुछ नहीं मिला। दर्द होता है ना, पर देखिए जो आपने किया वो गलत नहीं था, क्योंकि आपने जो कुछ भी किया वो आपकी फितरत थी। आप जानते हैं कि किस तरह से लोगों से मोहब्बत करनी है, किस तरह से उन्हें प्यार देना है। एक कहावत है ना कि लोग क्या देते हैं वो उनका कैरेक्टर है, पर आप क्या देते हैं वो आपकी रूह दिखाता है, वो बताता है कि आप कितने खूबसूरत हैं। इसलिए आपने जो दिया वो आपकी गलती नहीं, वो आपकी रूह की खूबसूरती थी। और उसी खूबसूरती के नाम एक और ट्रैक सुनिए मेरे साथ और सुनते रहिए इट हैपेंस। आप सुन रहे हैं रेडियो प्रस्वानी 1701 AM।

वेल दोस्तों, आज का ये था इट हैपेंस का साथ सताक्षी के साथ। आज कुछ और जिंदगी को समझा हमने, जाना और इसके हर एक पहलू को महसूस करने की कोशिश की। सो कल कुछ और बातें होंगी, कुछ और गाने होंगे और कुछ किस्से कहानियां होंगी एक बार फिर से, क्योंकि हम जानते हैं कि हर एक दिन आपकी जिंदगी का बहुत खूबसूरत दिन है और इसे और खूबसूरत बनाने की हम कोशिश करते रहेंगे। कल मिलती हूँ, लेकिन हाँ, आज आप अपने सपनों की ओर कदम बढ़ाइए, बढ़िए आगे और जिंदगी को जी लीजिए। हैव अ ग्रेट डे, कीप शाइनिंग, कीप स्माइलिंग। नमस्कार।

0: ओए राहुल, विरे तेरे केस दा की होया?
1: ओ यारा, मैं बहुत वरीड हां। आई एक्चुअली वांट एन एक्सपीरियंस्ड लॉयर टू हैंडल माय केस।
0: गो फॉर द बेस्ट विरे। अतुल भारद्वाज जी नु अज ही कांटेक्ट करो। ओना दे कोल वास्ट एक्सपीरियंस आ ते लॉ दी इंट्रीकेसीज नु हैंडल करन च वी ओ एक्सपर्ट हन। क्रिमिनल लॉ, डोमेस्टिक वायलेंस, ट्रैफिक ड्रग ऑफेंस विच 12 साल तो वध दा रिच एक्सपीरियंस ते कन्वेयंस, फैमिली लॉ, इमीग्रेशन लॉज विच वी भारद्वाज एंड एसोसिएट्स दे लॉयर्स दा वास्ट एक्सपीरियंस आ। एंड द बेस्ट पॉइंट, they understand the stress that you go through and work effectively to minimize it.
1: Thanks a ton, Vire. I'm so relaxed to hear that.
0: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Ajji contact karo Atul Jino on 0400-234-235. That is 0400-234-235.

0: just moved from overseas? Start banking like a local with ANZ. We're one of Australia's biggest banks and we're chosen by millions. For customers living in Australia, available in English only, consider if right for you. Eligibility criteria and TNCs apply.
1: आ रही है पंजाब दी एक सच्ची कहानी ते आधारित फिल्म चढ़दी कला, दिल नू छू जान वाली अते रूह नू हिला देन वाली फिल्म है चढ़दी कला।
2: देखो सच बता दो।
3: मैं झूठ नहीं बोल रही, मैनू सच्ची कुछ नहीं पता।
1: स्टारिंग एमी विर्क, रूपी गिल अते हिम्मत संधू। पंजाबी फिल्म चढ़दी कला रिलीज होवेगी 29 मई नू तुहाडे नेड़ले सिनेमा घरां विच।
4: ARY Films and Salman Iqbal present Love Thee Song, starring Farhan Saeed and Mamia Shah Jafar, directed by Imran Malik. Love Thee Song in cinemas this Eid-ul-Azha, May 27th.

0: यार राहुल, तेरे केस का क्या हुआ?
1: यार I'm so worried. Actually want an experienced lawyer to handle my case.
0: मेरी एडवाइस है, go for the best. अतुल भारद्वाज जी है ना, उनके पास 12 साल से ज्यादा का वास्ट एक्सपीरियंस है और लॉ की एंट्री केसेस को हैंडल करने में उनकी एक्सपर्टीज है. क्रिमिनल लॉ, डोमेस्टिक ऑफेंस, ट्रैफिक ड्रग ऑफेंस में 12 साल से ज्यादा का रिच एक्सपीरियंस, और तो और कन्वेयंस, फैमिली लॉ, इमिग्रेशन लॉज में भी भारद्वाज एंड एसोसिएट्स के लॉयर्स का वास्ट एक्सपीरियंस है. एंड द बेस्ट पॉइंट, दे अंडरस्टैंड द स्ट्रेस दैट यू गो थ्रू एंड वर्क इफेक्टिवली टू मिनिमाइज इट.
1: थैंक्स अटनियर, आई एम सो रिलैक्स टू हियर दैट.
0: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Contact Atul now on 0400-234-235. That is 0400-234-235.
2: Are you ready to stop renting and thinking about owning one? Or maybe an investor looking to invest? Then think no more, and it is time to build your future in upcoming house and land packages available in Oxley, Breckenridge, Morgill and surrounding areas in Brisbane, Queensland. It is the great Australian dream. Homes built strong, smart and built to last. If you are ready to make the move, then don't wait till tomorrow. Call agent John Lawla on 0404-004-899. Yes, it's 0404-004-899. And quote code word Briswani. Your new home waiting for you in Oxley, Breckenridge, Morgill and surrounding areas in Brisbane, Queensland.

0: Hi, this is Amitabh Bachchan.
1: और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
2: Hi guys, I'm Manmeet from the Meet Brothers. आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
3: Hi, this is Salman Khan.
4: और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
5: Hi, this is Deepika Padukone. और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
6: To everyone tuning into Radio Brisbane, this is Alia.
7: Hi, मैं हूँ तुलसी कुमार और आप मुझे सुन रहे हैं Radio Brisbane
8: से. To everyone tuning into Radio Brisbane, this is Shahrukh Khan.
9: Hi, this is Ajay Devgan और आप सुन रहे हैं Radio Brisbane.
10: मेरा नाम डॉक्टर कुमार है और यहाँ कुछ ऐसा है जिसे जानना अच्छा है. एक नया नेशनल लंग कैंसर स्क्रीनिंग प्रोग्राम शुरू हुआ है. ये सरल है, निशुल्क है और ये लक्षणों के सामने आने से पहले ही लंग कैंसर का पता लगा सकता है. यदि आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो हो सकता है कि आप ये सोचें कि बहुत देर हो चुकी है या इसके बारे में ना जानना ही बेहतर है. लेकिन क्या आपको पता है कि फेफड़ों के कैंसर की शुरुआत में पता लगाए गए 65% से अधिक मामलों का सफलतापूर्वक इलाज किया जा सकता है. यदि आप 50 से 70 वर्ष की आयु के हैं और आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो अपने डॉक्टर से बात करें या lungcancerscreen.org.au पर जाएं.

0: प्रिया, नेक्स्ट मंथ मामा का बर्थडे है। सोच रही हूँ उनको फॉरेन एक्सचेंज के थ्रू न्यूजीलैंड मनी भेज दूँ, जिससे वो अपनी पसंद का गिफ्ट ले लेंगे।
1: ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। मेरे पास एक अच्छा ऑप्शन भी है मनी ट्रांसफर करने का।
0: अच्छा, वो क्या?
1: अब तुम घर बैठे न्यूजीलैंड या फिजी में भी मनी भेज सकती हो लोटस फॉरेन एक्सचेंज की हेल्प से ऑनलाइन, और वो भी फ्री में।
0: लेकिन मामा के लिए मनी लेने कहीं दूर जाना पॉसिबल नहीं होगा।
1: अरे, रिसीवर्स अब कैश पिकअप, बैंक ट्रांसफर या मोबाइल वॉलेट में भी ले सकते हैं मनी। डाउनलोड कीजिए लोटस फॉरेन एक्सचेंज ऑनलाइन au.lotusfx.com ऐप आज ही विजिट करें।

0: यार सब ठीक है, बस मम्मी पापा इंडिया में अकेला फील करते हैं। अनऑर्गेनाइज्ड हेल्पर्स पे भरोसा भी नहीं होता, कल को इमरजेंसी हो जाए तो।
1: तूने ओम्स ओर्ग असिस्टेड लिविंग के बारे में सुना है? गुरुग्राम में है प्रोफेशनल सीनियर लिविंग, 24/7 नर्सिंग और डॉक्टर्स के स्ट्रॉन्ग टाई-अप्स के साथ। फोर्टिस, मेडांटा, सीके बिरला, आर्टेमिस, सब अच्छे हॉस्पिटल्स पास ही हैं।
0: सीरियसली? मतलब प्रॉपर केयर और मुझे यहाँ भी पीस ऑफ माइंड?
1: बिल्कुल, ओम्स ओर्ग असिस्टेड लिविंग, ऑस्ट्रेलियन ओन्ड सीनियर लिविंग इन गुरुग्राम इंडिया। ऑस्ट्रेलियन स्टैंडर्ड्स की प्रोफेशनलिज्म, एक्सपीरियंस टीम और ट्रस्टेड अल्टरनेटिव टू अनऑर्गेनाइज्ड अनरिलायबल होम हेल्पर्स। अपने पेरेंट्स के लिए सेफ डिग्निफाइड केयर चाहिए? ओम्स ओर्ग, स्पेल्ड OMSORG। वेबसाइट omsorg.co.in। व्हाट्सएप या कॉल कीजिए इंडिया नंबर 8448381360। ओम्स ओर्ग असिस्टेड लिविंग, जहां केयर का मतलब है रियल केयर।
2: Are you ready to stop renting and thinking about owning one? Or maybe an investor looking to invest? Then think no more, and it is time to build your future in upcoming house and land packages available in Oxley, Breckenridge, Morgill and surrounding areas in Brisbane, Queensland. It is the great Australian dream. Homes built strong, smart and built to last. If you are ready to make the move, then don't wait till tomorrow. Call agent John Lawla on 0404-004-899. Yes, it's 0404-004-899. And code word Briswani. Your new home waiting for you in Oxley, Breckenridge, Morgill and surrounding areas in Brisbane, Queensland.
3: भाई मम्मी पापा की तबीयत की बहुत टेंशन रहती है यार। हम यहाँ ब्रिस्बेन में और वो इंडिया में अकेले हैं।
4: तो ओम्स ओर्ग से बात कर, इंडिया में एल्डर्स और दिव्यांगनों के लिए इन होम केयर देते हैं एकदम प्रोफेशनल तरीके से।
3: हाँ, लेकिन भरोसा कैसे करूं?
4: अरे ओम्स ओर्ग एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी मैपल केयर की सब्सिडियरी है और मैपल केयर NDIS का रजिस्टर्ड प्रोवाइडर है।
3: अच्छा, मतलब स्टैंडर्ड और रिस्क मैनेजमेंट भी ऑस्ट्रेलिया जैसा?
4: बिल्कुल, खाना, दवाई, हेल्थ चेक, सब कुछ जैसे आप खुद देख रहे हो।
3: फिर तो आज ही वेबसाइट देखनी पड़ेगी।
4: उनकी वेबसाइट www.omsorg.co.in है। भारत में नंबर +91 8448 381360 है और ऑस्ट्रेलिया में 0470 631 801। प्यार और देखभाल की कोई दूरी नहीं होती भाई।
5: ओम्स ओर्ग, केयरिंग विद डिग्निटी।

हाँ जी, वेलकम बैक जी, वेलकम बैक। एक बार फिर तो बहुत बहुत स्वागत है जी थोड़ा थोड़े अपने चाहे ते रेडियो स्टेशन रेडियो ब्रसवानी वन सर वाले हम ते जी आर चे संदेश चालक दिनाल से बने हुए। अगली फिल्म थोड़ी जी पिछे जाने हैं 2015 दे, फिल्म का नाम हैगा मसान। नीरज गायवान दी जैप्यू फिल्म वाराणसी विच दो कहानियां, देवी जिस जो रिचा चड्डा बने से ते दीपक जो विकी कौशल बने से दी सामाजिक दबाव ते मुक्ति दी खोज ये है की है। 2015 दे कांस फिल्म फेस्टिवल विच दो पुरस्कार जीते जिस विच FIPRESCI अवार्ड्स अते प्रोमिसिंग फ्यूचर प्राइज सीगा। वाराणसी दी उत्थे जमीन ते बनी इस फिल्म विच रिचा चड्डा ते विकी कौशल ने यादगार एक्टिंग कीती है। विकी कौशल दी किस्मत इस फिल्म दे नाल चमकी सी।

0: ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਫਿਲਮ
1: ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਸਿਨੇਮੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗਏ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਚ ਗਏ ਹਾਂ ਤੇ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਆਏ ਤੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਚ ਆਏ ਹਾਂ
0: ਕਈ ਫਿਲਮਾਂ ਨਾ ਬਾਈ ਜੀ ਦਹਾਕਿਆਂ ਚ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਫਿਲਮ ਇਹ ਆ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ
2: ਅੱਜ ਮੱਥੇ ਚ ਮਾਰ ਕੇ ਵੇਖ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗੂ ਤੇਰੇ ਚ ਕਿੰਨੀ ਹਿੰਮਤ ਆ
0: ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਇੰਸਪਾਇਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੌਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਦੀ ਆਪਣੀ ਹਿਸਟਰੀ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦੀ ਆ
3: ਉਹ ਕਿਰਦਾਰ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਆ ਨਾ ਬਹੁਤ ਉੱਚੇ ਤੇ ਸੁੱਚੇ ਕਿਰਦਾਰ ਸੀਗੇ
4: ਅੱਖਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਧੋ ਲੋ ਬੜਾ ਗੁਨਾਹ ਹੋਊਗਾ ਜੇ ਮੂਵੀ ਮਿਸ ਕਰ
0: ਕੋਈ ਐਸਾ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਜਿੱਥੇ ਰੋਣਾ ਨਾ ਆਵੇ
3: ਇਹ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਵਕਫਾ ਨਹੀਂ ਆ ਉਹ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਕਫੇ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮੇਟ ਕੇ ਨਾ ਸਕਰੀਨ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿੱਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ
4: ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਮੂਵੀ ਹੋਣੀ ਆ ਹਰ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਦੇਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ
5: ਫਾਇਰ ਐਂਟਸ ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਜਾਂ ਜਾਇਦਾਦ ਵਿੱਚ ਫਾਇਰ ਐਂਟਸ ਹਨ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਦਿਓ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਾਇਰ ਐਂਟਸ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਮੁਫਤ ਕਿੱਟ ਭੇਜਾਂਗੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਫਾਇਰ ਐਂਟਸ ਕੁਈਨਜ਼ਲੈਂਡ ਜਾਂ ਫਾਇਰ ਐਂਟਸ QLD ਖੋਜੋ ਜਾਂ 132 ANT ਯਾਨੀ ਕਿ 132-268 ਉੱਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ ਇਹ ਸੁਣਿਆ ਕੁਈਨਜ਼ਲੈਂਡ ਸਰਕਾਰ ਬ੍ਰਿਸਬੇਨ ਵੱਲੋਂ ਅਧਿਕਾਰਤ ਹੈ ਆਥੋਰਾਈਜ਼ਡ ਬਾਈ ਦਾ ਕੁਈਨਜ਼ਲੈਂਡ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਬ੍ਰਿਸਬੇਨ
6: कंटेनर्स फॉर चेंज के माध्यम से अपने खाली डिब्बे बोतलों से धनराशि कमाएं। आपके प्रत्येक योग्य खाली कैन बोतल और कार्टन पर 10 सेंट का रिफंड प्राप्त होता है इसे हम बिन कॉइन कहते हैं अपने बिन कॉइन की बचत करके रखें खर्च करें या जिस उद्देश्य में आपका विश्वास है उसमें दान करें आपके नजदीक कहीं एक कंटेनर्स फॉर चेंज मौजूद है बैंक में डालें न कि कूड़ेदान में अपना सबसे नजदीकी रिफंड पॉइंट ढूंढने के लिए वेबसाइट पर जाएं और आज ही 10 सेंट कमाना शुरू करें
5: कंटेनर्स फॉर चेंज राहीं अपने खाली डब्बियां बोतलों तो कमाई करो तुहाडे हर एक योग खाली कैन बोतल अते कार्टन उते 10 सेंट दा रिफंड प्राप्त हुंदा है इस नूं असी बिन कॉइन कहंदे हां अपने बिन कॉइन नूं बचा के रखो खर्चो जां फिर जिस किसी संस्था जां विषय विच तुहाडा विश्वास है उहनां नूं दान विच दे दिओ ਤੁਹਾਡੇ ਨੇੜੇ ਇੱਕ ਕੰਟੇਨਰਸ ਫਾਰ ਚੇਂਜ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਪਾਓ ਨਾ ਕਿ ਕੂੜੇਦਾਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਰਿਫੰਡ ਪੁਆਇੰਟ ਲੱਭਣ ਲਈ ਵੈਬਸਾਈਟ ਉੱਤੇ ਜਾਓ ਅਤੇ ਅੱਜ ਹੀ 10 ਸੈਂਟ ਕਮਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ
7: क्या आपकी शादी होने वाली है तो आज ही फोन कीजिए कॉमनवेल्थ सिविल मैरिज सेलिब्रेंट परमानंद को 04111270035 पर या फिर उनसे मिलिए Level 133 Balaclava स्ट्रीट वोलोंगाबा में फॉर वेडिंग्स एंगेजमेंट्स रिन्यूअल ऑफ वाउस और कमिटमेंट सेरेमनीज घर पर हॉल या पार्क में बुक विद परमानंद कॉल नाउ ऑन 04111270035 रिमेम्बर द नंबर इज 04111270035 या फिर ईमेल करें permanand@optusnet.com.au पर फॉर बेस्ट सर्विस कंप्लीट लीगल पेपर वर्क मैरिज सर्टिफिकेट एंड अ मेमोरेबल मैरिज सेरेमनी रिमेम्बर द नेम परमानंद योर प्रोफेशनल एंड फ्रेंडली सिविल मैरिज सेलिब्रेंट सिंस 2003
8: यार साग में कुछ दम नहीं है बिल्कुल मजा नहीं आया
9: किसी दिन घर आना असली देसी घी में साग बनाकर खिलाऊंगा तुम्हें
8: कहां यार आजकल असली देसी घी मिलते कहां है
9: किस दुनिया में हो भाई क्वालिटी फूड सर्विस में ट्रिपल रिफाइंड पीवा देसी घी मिलते हैं ऑस्ट्रेलिया में ही बनते हैं 100% पीवा क्रीम से 99.9% पीवा मिल्क फैट से और तो और हर मौसम में उपलब्ध रहने के साथ साथ हाई क्वालिटी पैकेजिंग में भी आते हैं
8: मुझे तो पता ही नहीं था अच्छा ये बताओ मैं कहाँ से खरीद सकता हूँ
9: लगभग सभी इंडियन आउटलेट से तुम पीवा देसी घी ले सकते हो
10: पीवा देसी घी सिंह डेयरी द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है बिल्कुल ओरिजिनल और कलरलेस और इन्फो के लिए आज ही कॉल करें मोबाइल नंबर 04006644355 पर याद रहे 04006444355 पर या फिर ईमेल करें singdairy@gmail.com पर
11: मेरी पत्नी सभी घी ट्राई कर चुकी है और जब से वो पीवा देसी घी इस्तेमाल करने लगी है सारे घर में घी की खुशबू फैल जाती है

0: इन फैशन का जब भी जिक्र होता है तो लोग रानी क्रिएशंस को याद करते हैं, क्योंकि रानी क्रिएशन में सभी कुछ उपलब्ध है। यू गेट मेंस एंड लेडीज वेडिंग सूट्स एंड एक्सेसरीज, टॉप क्वालिटी डिजाइनर साड़ीज, लहंगा, सलवार कमीज, पार्टी वेयर एंड मेन शर्ट्स एंड सूट्स। यू कैन ऑल्सो ऑर्डर टेलर मेड सूट्स फ्रॉम रानी क्रिएशंस। इतना ही नहीं, ओरिजिनल DVDs, CDs, फोन कार्ड्स, प्रीपेड चार्ज कार्ड्स, फैंसी ज्वेलरी, बैंगल्स, गिफ्ट वेयर भी उपलब्ध है। फॉर टॉप क्वालिटी बॉलीवुड फैशंस विजिट रानी क्रिएशंस एट 33 बलक्लावा स्ट्रीट, वुलन गैबा, ओपन डेली फ्रॉम 9 AM। टेलीफोन रानी क्रिएशंस ऑन 3391-0622 और विजिट देयर वेब पेज RaniCreations.com। द वन स्टॉप बॉलीवुड फैशन एंड एंटरटेनमेंट स्टोर, वेल नोन फॉर इट्स क्वालिटी सर्विस एंड रीजनेबल प्राइसेस।
1: बिजली का बिल देखकर हर महीने शॉक लगता है क्या? तो अब स्विच करो सोलर पर। ब्रे सोलर पावर के साथ आपके लोकल CEC अप्रूव्ड सोलर एक्सपर्ट्स। घर हो या बिजनेस, हम सब के लिए सोलर पैनल्स, बैटरीज और कमर्शियल सिस्टम्स को सप्लाई और इंस्टॉल करते हैं, ताकि आप बचा सके पैसे और क्लीन एंड रिन्यूएबल एनर्जी से एनवायरमेंट को भी। आपकी लोकल टीम पर भरोसा रखे। ब्रे सोलर पावर का प्रॉमिस है क्वालिटी प्रोडक्ट्स, प्रोफेशनल इंस्टॉलेशन और रियल सेविंग्स। तो अब बिजली का बिल नहीं, सिर्फ सनशाइन मिलेगा। रे सोलर पावर, पावरिंग होम्स, पावरिंग बिजनेसेस, पावरिंग द फ्यूचर। आज ही कॉल करें 0430-525-896, दैट इज 0430-525-896। हमारा ईमेल आईडी है ray@raysolarpower.com.au और वेबसाइट www.raysolarpower.com.au।

0: excuse me, may I? Some matches are made in heaven and some are made at weddings. Every wedding is special. Think weddings, think Roy Singh. From the grand ballroom to your childhood backyard to a faraway beach, the big day comes in all sizes and styles, and that is why I'm proud that you have trusted me with your civil wedding, and I cannot wait to help you create yours. Contact me, Roy Singh, today on 0411-022-602, 0411-022-602, or email me at roylindrasingh@gmail.com. Think weddings, think Roy Singh.
1: आप माने या ना माने, बात बिल्कुल सही है। मौत और टैक्स से कोई नहीं बच सकता, लेकिन आपका हुनरदार अकाउंटेंट आपको कम टैक्स भी भरवा सकता है और अधिक टैक्स वापस लौटा भी सकता है। स्मॉल और मीडियम बिजनेस टैक्स अकाउंटिंग, ऑल इनकम टैक्स बेस आदि विषयों में वर्षों के अनुभवी बिजनेस अकाउंटेंट प्रकाश मेनन का जवाब नहीं। प्रॉम्प्ट पर्सनलाइज्ड एंड प्रोफेशनल सर्विस के लिए ऑब्लिगेशन फ्री अपॉइंटमेंट फ्री ऑफ चार्ज रिंग करे प्रकाश मेनन को। फोन 3630-5438, 3630-5438 या मोबाइल 0415-952-660, 0415-952-660।
2: हनी, ये तुम कहाँ ले जा रही हो? ये ग्रोसरी पास वाली शॉप से ले सकते हैं ना?
3: यस बेबी, बट नो कॉम्प्रोमाइज विद क्वालिटी एंड हेल्थ। हम जाएंगे सिर्फ MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड।
2: ऐसा क्या खास है वहाँ?
3: सब कुछ, क्वालिटी स्पाइसेस, लेंटिल्स, राइस, फ्लावर और फ्रोजन सब्जी फ्रॉम फिजी एंड इंडिया। ब्रिस्बेन के बेस्ट इंडियन बुचर सप्लाइंग फार्म फ्रेश गोट, लैम्ब, चिकन एंड डक, और फ्रेश लोकल प्रोड्यूस भी रखते हैं। साथ ही किचनवेयर एंड डिस्पोजेबल प्लेट्स की लार्ज रेंज किसी भी फंक्शन के लिए।
2: अरे वाह, इंटेलिजेंट हो गई हो।
3: MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड, सर्विंग ब्रिस्बेन सिंस 1999, ओपन 7 डेज। फाइंड अस ऑन फेसबुक और विजिट वेबसाइट mcsfoods.com.au। 1/268 किंगस्टन रोड, स्लैक्स क्रीक, फोन नंबर 3804-3818, दैट्स 3804-3818।

जान पहचान हो जीना आसान हो, जान पहचान हो जीना आसान हो, दिल को चुराने वालों आंख न चुराओ, नाम तो बताओ, जान पहचान हो।

फायर एंट्स तुहाडे इलाके विच मौजूद हन। जे तुहानू लगदा है कि तुहाडे घर जां जायदाद विच फायर एंट्स हन तां इस दी सूचना दिओ। असी तुहानू फायर एंट्स दे इलाज लई मुफ्त किट भेजांगे। होर जानकारी लई फायर एंट्स क्वींसलैंड जां फायर एंट्स QLD खोजो जां 132 ANT यानी के 132-268 उते कॉल करो। ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਕੁਈਨਜ਼ਲੈਂਡ ਸਰਕਾਰ ਬ੍ਰਿਸਬੇਨ ਵੱਲੋਂ ਅਧਿਕਾਰਤ ਹੈ। ਆਥੋਰਾਈਜ਼ਡ ਬਾਈ ਦਾ ਕੁਈਨਜ਼ਲੈਂਡ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਬ੍ਰਿਸਬੇਨ।

0: Earn money from your empty drink containers with Containers for Change. Your empty eligible cans, bottles and cartons receive a 10 cents refund each. We call it Bin Coin. Save, spend or donate your Bin Coin to a cause you support. There's a Containers for Change near you. Bank it, don't bin it. Visit the website to find your nearest refund point and start trading for 10 cents today. कंटेनर्स फॉर चेंज के माध्यम से अपने खाली डिब्बे बोतलों से धनराशि कमाएं। आपके प्रत्येक योग्य खाली कैन बोतल और कार्टन पर 10 सेंट का रिफंड प्राप्त होता है। इसे हम बिन कॉइन कहते हैं। अपने बिन कॉइन की बचत करके रखें, खर्च करें या जिस उद्देश्य में आपका विश्वास है उसमें दान करें। आपके नजदीक कहीं एक कंटेनर्स फॉर चेंज मौजूद है, बैंक में डालें ना कि कूड़ेदान में। अपना सबसे नजदीकी रिफंड पॉइंट ढूंढने के लिए वेबसाइट पर जाएं और आज ही 10 सेंट कमाना शुरू करें।
1: कंटेनर्स फॉर चेंज राहीं अपने खाली डब्बिया बोतलों तो कमाई करो। तुहाडे हर एक योग खाली कैन बोतल अते कार्टन उते 10 सेंट दा रिफंड प्राप्त हुंदा है। इस नूं असी बिन कॉइन कहंदे हां। अपने बिन कॉइन नूं बचा के रखो, खर्चो जां फिर जिस किसे संस्था जां विषय विच तुहाडा विश्वास है उन्हां नूं दान विच दे दिओ। तुहाडे नेड़े एक कंटेनर्स फॉर चेंज मौजूद है, बैंक विच पाओ ना के कूड़ेदान विच। अपना सब तो नजदीकी रिफंड पॉइंट लभण लई वैबसाइट उते जाओ अते अज ही 10 सेंट कमाना शुरू करो। वधेरे किफायती रिहायश की शुरुआत वधेरे घरां दी उपलब्धता नाल हुंदी है। इसे लई नवी क्वींसलैंड सरकार सूबे भर विच 98,000 तों वी वध नवे घरां दे निर्माण दा राह खोल रही है। असी होर घर जल्दी बनाउण लई बुनियादी ढांचे विच 2 बिलियन डॉलर दा निवेश कर रहे हां। असी रिहायश लई 4100 हेक्टेयर तों वध जमीन उपलब्ध करवा दित्ती है अते लोड़वंदां लई 53,500 समाजिक अते कम्युनिटी घर मुहैया करवा रहे हां। इस तो अलावा होर भी योजनावां तैयार हन। अ प्लेस टू कॉल होम खोजो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारत। ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन।

0: ओए राहुल, वीरे तेरे केस दा की होया?
1: ओ यारा, मैं बहुत वरीड हां। I actually want an experienced lawyer to handle my case.
0: Go for the best, Vire. Atul Bhardwaj ji nu ajji contact karo. Ona de kol vast experience aa. Te law di intricacies nu handle karan ch vi o expert han. Criminal law, domestic violence, traffic drug offense vich 12 saal to vadh da rich experience. Te conveyance, family law, immigration laws vich vi Bhardwaj and Associates de lawyers da vast experience aa. And the best point, they understand the stress that you go through and work effectively to minimize it.
1: Thanks a ton, Vire. I'm so relaxed to hear that.
0: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Ajji contact karo Atul Jino on 0400-234-235. That is 0400-234-235.
2: Anuj, koi achha sa lawyer suggest karo na. Aisa jo meri sari baat dhang se sune, samjhe, aur phir mere tarike se mujhe samjhaye.
3: अर्शाद लॉयर्स है तुम्हारी प्रॉब्लम का सलूशन। कमर्शियल मैटर हो जैसे लीज का मामला, बिजनेस हो या फिर घरों की बाइंग सेलिंग का मामला, और डिवोर्स जैसे फैमिली मैटर्स भी, वो सब में मदद कर सकती हैं। और फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अदालत तक तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। अभी फोन करो 0420-933-171 पर और 15 मिनट का फ्री फोन कंसल्टेशन ले लो।
2: अरे वाह, इनका पता बताना।
3: अर्शाद लॉयर्स, माउंट ग्रेविट शोग्राउंड्स, ऑफिस 5, 1644 लोगन रोड, माउंट ग्रेविट, एम्पल पार्किंग। कॉल अर्शाद फ्रॉम अर्शाद लॉयर्स नाउ ऑन 0420-933-171। वेबसाइट www.arshadlawyers.com. We pride ourselves in providing excellent service.

0: यार राहुल, तेरे केस का क्या हुआ?
1: यार I'm so worried. Actually want an experienced lawyer to handle my case.
0: मेरी एडवाइस है, go for the best. अतुल भारद्वाज जी है ना, उनके पास 12 साल से ज्यादा का वास्ट एक्सपीरियंस है और लॉ की एंट्री केसेस को हैंडल करने में उनकी एक्सपर्टीज है. क्रिमिनल लॉ, डोमेस्टिक ऑफेंस, ट्रैफिक ड्रग ऑफेंस में 12 साल से ज्यादा का रिच एक्सपीरियंस, और तो और कन्वेयंस, फैमिली लॉ, इमिग्रेशन लॉज में भी भारद्वाज एंड एसोसिएट्स के लॉयर्स का वास्ट एक्सपीरियंस है. एंड द बेस्ट पॉइंट, दे अंडरस्टैंड द स्ट्रेस दैट यू गो थ्रू एंड वर्क इफेक्टिवली टू मिनिमाइज इट.
1: थैंक्स अटनिया, आई एम सो रिलैक्स्ड टू हियर दैट.
0: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Contact Atul now on 0400-234-235. That is 0400-234-235.

0: Hi, this is Amitabh Bachchan.
1: और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
2: Hi guys, I'm Madhvi from the Meet Brothers. आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
3: Hi, this is Salman Khan. और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
4: Hi, this is Deepika Padukone. और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
5: To everyone tuning into Radio Brisbane, this is Alia.
6: Hi, मैं हूँ तुलसी कुमार और आप मुझे सुन रहे हैं Radio Brisbane
7: से. To everyone tuning into Radio Brisbane, this is Shahrukh Khan.
8: Hi, this is Ajay Devgan और आप सुन रहे हैं Radio Brisbane.

मेरा नाम डॉक्टर कुमार है और यहाँ कुछ ऐसा है जिसे जानना अच्छा है। एक नया नेशनल लंग कैंसर स्क्रीनिंग प्रोग्राम शुरू हुआ है। ये सरल है, निशुल्क है और ये लक्षणों के सामने आने से पहले ही लंग कैंसर का पता लगा सकता है। यदि आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो हो सकता है कि आप ये सोचें कि बहुत देर हो चुकी है या इसके बारे में ना जानना ही बेहतर है। लेकिन क्या आपको पता है कि फेफड़ों के कैंसर की शुरुआत में पता लगाए गए 65% से अधिक मामलों का सफलतापूर्वक इलाज किया जा सकता है। यदि आप 50 से 70 वर्ष की आयु के हैं और आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो अपने डॉक्टर से बात करें या lungcancerscreen.org.au पर जाएं।

0: ऐ मेरी हमरंग, मुझको थाम ले, जिंदगी से भाग कर आया हूं।
1: बारिश हो रही है, ये बारिश ना होती तो भी ना आती।

0: चलो जल्दी चलो, लेट हो गए। ले भाई चाबी।
1: सर ऑन स्टेज 5 मिनट।
0: ओके तुम आ रही हो? मैं जा रहा हूं। लगता है रूम में रह गए।

0: प्रिया, नेक्स्ट मंथ मामा का बर्थडे है। सोच रही हूँ उनको फॉरेन एक्सचेंज के थ्रू न्यूजीलैंड मनी भेज दूँ, जिससे वो अपनी पसंद का गिफ्ट ले लेंगे।
1: ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। मेरे पास एक अच्छा ऑप्शन भी है मनी ट्रांसफर करने का।
0: अच्छा, वो क्या?
1: अब तुम घर बैठे न्यूजीलैंड या फिजी में भी मनी भेज सकती हो लोटस फॉरेन एक्सचेंज की हेल्प से ऑनलाइन, और वो भी फ्री में।
0: लेकिन मामा के लिए मनी लेने कहीं दूर जाना पॉसिबल नहीं होगा।
1: अरे, रिसीवर्स अब कैश पिकअप, बैंक ट्रांसफर या मोबाइल वॉलेट में भी ले सकते हैं मनी। डाउनलोड कीजिए लोटस फॉरेन एक्सचेंज ऑनलाइन au.lotusfx.com ऐप आज ही विजिट करें।

0: यार सब ठीक है, बस मम्मी पापा इंडिया में अकेला फील करते हैं। अनऑर्गेनाइज्ड हेल्पर्स पे भरोसा भी नहीं होता, कल को इमरजेंसी हो जाए तो।
1: तूने ओम्स और असिस्टेड लिविंग के बारे में सुना है? गुरुग्राम में है प्रोफेशनल सीनियर लिविंग, 24/7 नर्सिंग और डॉक्टर्स के स्ट्रॉन्ग टाइप्स के साथ। फोर्टिस, मेडांटा, सीके बिरला, आर्टेमिस, सब अच्छे हॉस्पिटल्स पास ही हैं।
0: सीरियसली, मतलब प्रॉपर केयर और मुझे यहाँ भी पीस ऑफ माइंड।
1: बिल्कुल, ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, ऑस्ट्रेलियन ओन्ड सीनियर लिविंग इन गुरुग्राम इंडिया। ऑस्ट्रेलियन स्टैंडर्ड्स की प्रोफेशनलिज्म, एक्सपीरियंस टीम और ट्रस्टेड अल्टरनेटिव टू अनऑर्गेनाइज्ड अनरिलायबल होम हेल्पर्स। अपने पेरेंट्स के लिए सेफ डिग्निफाइड केयर चाहिए, ओम्स ऑर्ग, स्पेल्ड OMSORG। वेबसाइट omsorg.co.in। व्हाट्सएप या कॉल कीजिए इंडिया नंबर 8448381360। ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, जहां केयर का मतलब है रियल केयर।

0: भाई मम्मी पापा की तबीयत की बहुत टेंशन रहती है यार। हम यहाँ ब्रिस्बेन में और वो इंडिया में अकेले हैं।
1: तो उमसॉक से बात कर, इंडिया में एल्डर्स और दिव्यांगनों के लिए इन होम केयर देते हैं एकदम प्रोफेशनल तरीके से।
0: हाँ, लेकिन भरोसा कैसे करूं?
1: अरे उमसॉक एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी मैपल केयर की सब्सिडियरी है और मैपल केयर NDIS का रजिस्टर्ड प्रोवाइडर है।
0: अच्छा, मतलब स्टैंडर्ड और रिस्क मैनेजमेंट भी ऑस्ट्रेलिया जैसा?
1: बिल्कुल, खाना, दवाई, हेल्थ चेक, सब कुछ जैसे आप खुद देख रहे हो।
0: फिर तो आज ही वेबसाइट देखनी पड़ेगी।
1: उनकी वेबसाइट www.omsorg.co.in है। भारत में नंबर +91 8448 381 360 है और ऑस्ट्रेलिया में 0470 631 801। प्यार और देखभाल की कोई दूरी नहीं होती भाई।
2: ओमसॉक, केयरिंग विद डिग्निटी।

क्या आपकी शादी होने वाली है? तो आज ही फोन कीजिए कॉमनवेल्थ सिविल मैरिज सेलिब्रेंट परमानंद को 04111270355 पर या फिर उनसे मिलिए लेवल 133 बालाक्लावा स्ट्रीट वोलोंगाबा में। फॉर वेडिंग्स एंगेजमेंट्स रिन्यूअल ऑफ वाउज और कमिटमेंट सेरेमनीज घर पर हॉल या पार्क में बुक विद परमानंद। कॉल नाउ ऑन 04111270355। रिमेम्बर द नंबर इज 04111270355 या फिर ईमेल करें permanand@optusnet.com.au पर। फॉर बेस्ट सर्विस कंप्लीट लीगल पेपर वर्क मैरिज सर्टिफिकेट एंड अ मेमोरेबल मैरिज सेरेमनी रिमेम्बर द नेम परमानंद योर प्रोफेशनल एंड फ्रेंडली सिविल मैरिज सेलिब्रेंट सिंस 2003।

0: यार साग में कुछ दम नहीं है, बिल्कुल मजा नहीं आया।
1: किसी दिन घर आना, असली देसी घी में साग बनाकर खिलाऊंगा तुम्हें।
0: कहाँ यार, आजकल असली देसी घी मिलते कहाँ है?
1: किस दुनिया में हो भाई, क्वालिटी फूड सर्विस में ट्रिपल रिफाइंड पीवा देसी घी मिलते हैं। ऑस्ट्रेलिया में ही बनते हैं 100% पीवा क्रीम से, 99.9% पीवा मिल्क फैट से। और तो और हर मौसम में उपलब्ध रहने के साथ साथ हाई क्वालिटी पैकेजिंग में भी आते हैं।
0: मुझे तो पता ही नहीं था। अच्छा ये बताओ मैं कहाँ से खरीद सकता हूँ?
1: लगभग सभी इंडियन आउटलेट से तुम पीवा देसी घी ले सकते हो।
2: पीवा देसी घी सिंह डेयरी द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है, बिल्कुल ओरिजिनल और कलरलेस। और इन्फो के लिए आज ही कॉल करें मोबाइल नंबर 0400664435 पर। याद रहे 0400664435 पर, या फिर ईमेल करें singdairy@gmail.com पर।
3: मेरी पत्नी सभी घी ट्राई कर चुकी है और जब से वो पीवा देसी घी इस्तेमाल करने लगी है सारे घर में घी की खुशबू फैल जाती है।

कैसे हो आप सब? सबसे पहले तो आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। प्रोग्राम शुरू हो गया है इवनिंग वाइब मेरे यानी आरजे निव्या के साथ। हैप्पी संडे कहते हैं, हैप्पी वीकेंड कहते हैं, हैप्पी सैटरडे कहते हैं, हैप्पी फ्राइडे भी कहते हैं, तो हैप्पी मंडे भी यहाँ पर कहना होगा। आप लोग बोलोगे कि निव्या शर्मा, ना ना ना ना, ये बात बनती ही नहीं है। मतलब इस बात का कोई लॉजिक ही नहीं है। सो इलॉजिकल बातें मत करो। देर कैन नॉट बी अ हैप्पी मंडे। मतलब छुट्टी के बाद इतना काम करना किसको पसंद आएगा? वेल वेल वेल, एलन मस्क को पसंद आता है और बड़े बड़े जो मिलीनियर्स और बिलीनियर्स हैं उनको पसंद आता है। दे लव इट, दे लव इट, दैट्स व्हाई दे आर देयर। सो आप मुझे बताइए, क्या आप भी ऐसे गोल्स को अचीव करने का सपना देखे हुए हो या नहीं? क्योंकि नहीं देखे हुए तो देखिए, क्योंकि ऐसा कहा जाता है जो पहला स्टेप है सक्सेसफुल होने का वो है सपने देखना, बड़े बड़े सपने देखना और उसके बाद उसकी प्लानिंग करना और उसके बाद उसको एग्जीक्यूट करना। बहुत सारे लोग जो है वो प्लानिंग वाले स्टेप पे ही रह जाते हैं, उसके बाद जो है वो आगे नहीं बढ़ पाते। लेकिन आपको क्या करना है, उसका ब्लूप्रिंट बनाना है, प्लानिंग करनी है और फिर उसके बाद उसको एग्जीक्यूट करना है। हाँ, मैं कह रही हूँ कि ऐसा टाइम हो सकता है जब आपको आपके एम्बिशंस के मामले में सेटबैक्स मिल सकते हैं, लेकिन दैट डजंट मीन कि आप कभी भी सक्सेसफुल नहीं होंगे। सो यू नो व्हाट, सेटबैक्स को डिसाइड मत करने दो कि आप क्या कर सकते हो क्या नहीं कर सकते, बिकॉज यू कैन लिटरली डू एनीथिंग। जी हाँ, तो आइए इसी के साथ अब जरा करते हैं प्रोग्राम की शुरुआत। और प्रोग्राम की शुरुआत होगी ऑफकोर्स एक हेल्दी रिचुअल के साथ, और वो हेल्दी रिचुअल है डीप ब्रेथ एक्सरसाइज। तो आइए सबसे पहले करते हैं। क्या बात है, अच्छा फील हो रहा है, बहुत अच्छा फील हो रहा है। और इसी के साथ शुरुआत करते हैं एक बढ़िया से गाने के साथ। जी हाँ, बढ़िया सा गाना जो कि आपको काफी अच्छा लगने वाला है, क्योंकि ये है कॉकटेल 2 का गाना। जी हाँ, कॉकटेल 2 का गाना है ये, और कॉकटेल 2 रिलीज हो चुकी है। आप मुझे ये बताइए कि आपने इस वीकेंड कॉकटेल 2 देखी या नहीं, और क्या आप अगले वीकेंड के लिए उसे प्लान कर रहे हो या नहीं। लेकिन यहाँ पर जरा करते हैं शुरुआत इस गाने के साथ और फिर करते हैं और बहुत सारी बातें।

मतलब क्लासिकल को पॉप कैसे बनाया जाता है, पॉप क्लासिकल और R&B कैसे मिलाया जाता है, ये कोई इम्तियाज अली से सीखे, यार रहमान से सीखे, मतलब क्या गाना बनाया है आपने देखा इसमें, स्टार्टिंग जो है शुरू होता है जब ये कितना क्लासिकल टोन के साथ है, और वो भी इतनी खतरनाक, मतलब एक सूफी खातिलाना जो है टोन के साथ शुरू होता है, फिर धीरे धीरे पॉप में जाता है, फिर क्लासिकल में जाता है, फिर से पॉप में जाता है, फिर R&B में जाता है. या एग्जैक्टली एग्जैक्टली. सो ये सिर्फ और सिर्फ AR रहमान और इम्तियाज अली का कॉम्बिनेशन ही कर सकता है, आई एम टेलिंग यू. इसी के साथ दोस्तों बिना देर किए हुए करते हैं शुरुआत अब सीधा मौसम के साथ. आप बोलोगे शुरुआत तो हो गई थी, अब मौसम की जानकारी देने वाली हूँ. ऑफकोर्स मौसम की जानकारी जरूरी है, क्योंकि आज के साथ साथ अगले 2 दिन के बारे में भी हम आपको बताएंगे कैसा मौसम रहेगा, और ताकि आप उसके लिए प्रिपेयर हो सको, इनकेस बारिश है और कैसे आपको उसके लिए रेडी होना है, आई एम गोना टेल यू अबाउट दैट. और ऑफकोर्स मौसम हमारे प्लान्स को अफेक्ट करता है, सो ऑफकोर्स इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ध्यान से सुनिए, 22 डिग्री सेल्सियस मैक्सिमम टेम्परेचर अभी की बात की जाए तो 22.3 डिग्री सेल्सियस के करीब है, और फील आपको हो रहा है 20.6 डिग्री सेल्सियस के करीब. जी हाँ दोस्तों, ये तो हुई आज की बात, और अब जरा बात करते हैं रात के टेम्परेचर की. तो 15 डिग्री सेल्सियस तक तापमान में गिरावट आप देख पाएंगे, और 40% चांसेस बारिश होने के, 1 mm तक बारिश होगी. आप मुझे ये बताइए कि आपके यहाँ बारिश हुई या नहीं हुई, क्योंकि कुछ जगहों पर मैं देख पा रही हूँ बारिश होने का सिस्टम, और वो अभी कब तक होने वाली है, वेल ऑफ कोर्स वो 5 बजे तक मुझे यहाँ पर दिख रही है, लेकिन उसके बाद फिर से मुझे 8 बजे थोड़ी सी बारिश होती हुई दिख रही है, लेकिन नॉट एवरीवेयर, हर जगह नहीं, बस कुछ कुछ जगहों पर, और वो भी बूंदाबांदी. सो ये है आज का हाल. ऑफकोर्स एयर क्वालिटी बनी हुई है एकदम एक्सीलेंट. अब बात करते हैं ट्यूसडे की, यानी कि कल की. तो 22 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर के साथ नो चांसेस ऑफ बारिश एट ऑल, आई मीन 5% है, जो कि ना के बराबर है. सो ऑफकोर्स हम यही कहेंगे कि ना के बराबर है, मतलब नहीं है, और आपको सूरज की किरणें जो है वो अच्छे से मिलेंगी, थोड़े बहुत बादल हो सकते हैं, बट उसके अलावा मुझे मौसम अच्छा नजर आ रहा है. वेडनेसडे को तो भर भर के धूप आपको मिलने वाली है विद 22 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर. सो कल थोड़े बहुत बादल हो भी सकते हैं, लेकिन वेडनेसडे पूरी तरह क्लियर रहने वाला है आसमान, और आप उस धूप को, उस विटामिन डी को एंजॉय करना, सोक इन करना बिल्कुल मत भूलिएगा. और ये है मौसम का हाल, जो कि है कहीं ना कहीं मजेदार, और आई नो ठंड बढ़ गई है. जिन लोगों को ठंड नहीं पसंद, उनको ऐसा लगेगा कि कौन सा मजेदार निव्या शर्मा, व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट, मजेदार कहाँ का मजेदार. लेकिन जिनको पसंद है, दे आर लाइक ओह निव्या, वी आर लविंग इट. सो आप मुझे बताइए आप कौन सी कैटेगरी में आते हो, और यहाँ पर हमारी तरफ से एक और मजेदार सा गाना आपके लिए.

0: ये तुम कहाँ ले जा रही हो? ये ग्रोसरी पास वाले शॉप से ले सकते हैं ना?
1: यस बेबी, बट नो कॉम्प्रोमाइज विद क्वालिटी एंड हेल्थ। हम जाएंगे सिर्फ MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड।
0: ऐसा क्या खास है वहाँ?
1: सब कुछ, क्वालिटी स्पाइसेस, लेंटिल्स, राइस, फ्लावर और फ्रोजन सब्जी फ्रॉम फिजी एंड इंडिया। ब्रिस्बेन के बेस्ट इंडियन बुचर सप्लाइंग फार्म फ्रेश गोट, लैम, चिकन एंड डक और फ्रेश लोकल प्रोड्यूस भी रखते हैं। साथ ही किचनवेयर एंड डिस्पोजेबल प्लेट्स की लार्ज रेंज किसी भी फंक्शन के लिए।
0: अरे वाह, इंटेलिजेंट हो गई हो।
1: MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड, सर्विंग ब्रिस्बेन सिंस 1999, ओपन 7 डेज। फाइंड अस ऑन फेसबुक और विजिट वेबसाइट mcsfoods.com.au। 1/268 किंगस्टन रोड, स्लैक्स क्रीक, फोन नंबर 3804-3818। दैट्स 3804-3818।

0: ਫਾਇਰ ਐਂਟਸ ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਜਾਂ ਜਾਇਦਾਦ ਵਿੱਚ ਫਾਇਰ ਐਂਟਸ ਹਨ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਦਿਓ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਾਇਰ ਐਂਟਸ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਕਿੱਟ ਭੇਜਾਂਗੇ। ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਫਾਇਰ ਐਂਟਸ ਕੁਈਨਜ਼ਲੈਂਡ ਜਾਂ ਫਾਇਰ ਐਂਟਸ QLD ਖੋਜੋ ਜਾਂ 132 ANT ਯਾਨੀ ਕਿ 132-268 ਉੱਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ। ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਕੁਈਨਜ਼ਲੈਂਡ ਸਰਕਾਰ ਬ੍ਰਿਸਬੇਨ ਵੱਲੋਂ ਅਧਿਕਾਰਤ ਹੈ। ਆਥੋਰਾਈਜ਼ਡ ਬਾਈ ਦ ਕੁਈਨਜ਼ਲੈਂਡ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਬ੍ਰਿਸਬੇਨ।
1: Just moved from overseas? Start banking like a local with ANZ. We're one of Australia's biggest banks, and we're chosen by millions. For customers living in Australia, available in English only. Consider if right for you. Eligibility criteria and T&Cs apply.
2: Earn money from your empty drink containers with Containers for Change. Your empty eligible cans, bottles and cartons receive a 10 cents refund each. We call it Bincoin. Save, spend, or donate your bin coin to a cause you support. There's a Containers for Change near you. Bank it, don't bin it. Visit the website to find your nearest refund point and start trading for 10 cents today. Containers for Change ke madhyam se apne khali dibbe botlon se dhan rashi kamaye. Aapke pratek yogya khali can, bottle aur carton par 10 cent ka refund prapt hota hai. Ise hum bin coin kehte hain. अपने बिनकॉइन की बचत करके रखें, खर्च करें या जिस उद्देश्य में आपका विश्वास है उसमें दान करें। आपके नजदीक कहीं एक कंटेनर्स फॉर चेंज मौजूद है, बैंक में डालें ना कि कूड़ेदान में। अपना सबसे नजदीकी रिफंड पॉइंट ढूंढने के लिए वेबसाइट पर जाएं और आज ही 10 सेंट कमाना शुरू करें।
0: कंटेनर्स फॉर चेंज राही अपने खाली डब्बिया बोतल।
3: जी हाँ दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्वानी 107.1 AM। शो चल रहा है इवनिंग वाइब मेरे यानी आरजे नेविया के साथ। दोस्तों इसी के साथ अब बिना देर किए हुए चलते हैं सीधा आपकी फरमाइशों की तरफ, क्योंकि प्रोग्राम शुरू हो गया है। मौसम का हालचाल आपको बता दिया गया है, आज का ही नहीं बल्कि अगले दो दिन का भी। कैसे आपको प्लानिंग करनी है, कैसे आपको बाहर निकलना है, ये आप बहुत अच्छे से जानते हो। अब हम आपको ये बता दें कि आप अपने फेवरेट गाने यहाँ फरमाइश कर सकते हो, इनकेस आप हमारे नए लिसनर हो। और अगर आप पुराने हो, हमेशा सुनने वाले हो, तब तो फिर आपको पता ही होगा मैं किस बारे में बात कर रही हूँ। तो आ जाइए अपने फेवरेट अजीज पसंदीदा गानों के साथ हमारे पास, क्योंकि हम आपके लिए उन्हें प्ले करेंगे। सो ऑल यू नीड टू डू इज अपना फोन उठाना है, नंबर डायल करना है, नंबर है +9182888717701। आई रिपीट, +9182888717701। तो बस फिर जल्दी से फोन उठा लीजिए, नंबर डायल कर दीजिए, भेज दीजिए हमें अपनी फरमाइश। और जब तक आप भेज रहे हैं, हमारी तरफ से एक और मजेदार सा जबरदस्त सा गाना आप सबके लिए। sure.

जी हाँ दोस्तों, गाने मजेदार हैं और अब आपको एक बहुत ही दिलचस्प चीज के बारे में बताते हैं। शायद इसके बारे में आपने सोशल मीडिया पर कुछ वीडियोस भी देखी होंगी और सुना भी होगा, पढ़ा भी होगा। जी हाँ, सो जैसे कि आजकल बच्चे जो है हमेशा से किंडरगार्टन जाते हैं, जब वो छोटे होते हैं स्कूल से पहले वो किंडरगार्टन जाया करते हैं, वैसे ही पपीज यानी कि डॉग्स के लिए भी किंडरगार्टन जो है वो शुरू हो गए हैं और ये है किंडरगार्टन फॉर डॉग्स। जी हाँ, अब जिसके बारे में मैं बात कर रही हूँ वो एग्जैक्टली चाइना में है और ये क्यों मैं इसके बारे में बात कर रही हूँ आपको पता चल जाएगा। सो यहाँ पर जो डॉग्स हैं उनको सुबह सुबह एक बस आती है पिक करने के लिए। जी हाँ, सो मतलब अगर आप चाइना में रहते हो, उस इलाके में रहते हो, तो आपके डॉग को सुबह सुबह पिक करने के लिए एक बस आएगी और वो आपके डॉगी को उस बस में बिठा कर ले जाएगी और फिर उसके बाद उन्हें पूरा शेड्यूल जो है वो उनके लिए बनाकर रखा होगा, उनके लिए पूरा दिन के लिए एक्टिविटीज होंगी और शाम को उनको वही बस जो है वो वापस छोड़ के भी जाएगी। जस्ट लाइक यू नो किड्स, जैसे बच्चों के साथ होता है वैसे ही डॉग्स के लिए भी हो रहा है। अब आप लोग बोलोगे कि अच्छा ऐसा क्या क्या करवाते हैं। वेल चाइना में पपीज जो है उनको ड्रॉप जो है वो किया जाता है शाम को, सुबह उनको लेकर जाया जाता है, उनको फिर शाम को ड्रॉप किया जाता है। उनकी जो डेली रूटीन होती है वो इंक्लूड करती है सोशलाइजेशन सेशंस। जी हाँ, उनको सोशलाइज करने का मौका मिले उनके लिए ये सेशंस रखे जाते हैं, उनको होममेड स्नैक्स खिलाए जाते हैं, उनको ट्रेडमिल एक्सरसाइजेस करवाई जाती हैं और इनफैक्ट उनके लिए लाइव पियानो परफॉर्मेंसेस और क्लासिकल म्यूजिक भी प्ले किया जाता है। आप लोग बोलोगे कि आर वी रियली टॉकिंग अबाउट डॉग्स एंड पपीज, या वी आर टॉकिंग अबाउट डॉग्स एंड पपीज ओनली। एंड यहां पर ये सारी की सारी चीजें करने के पीछे जिस बंदे का हाथ है वो बंदा अपने आप को प्रिंसिपल कहता है इस किंडरगार्टन का, एट पॉज 3 का। जी हाँ, अब आप लोग बोलोगे कि अच्छा बट उसने ये किया क्यों। वेल, जैसे कि मैंने बताया कि बहुत सारे वेस्टर्न कॉन्सेप्ट में, व्हेन आई से वेस्टर्न आई एम टॉकिंग अबाउट अमेरिका, और अमेरिका की कुछ स्टेट्स में ये कॉन्सेप्ट जो है वो देखा गया है और वहां पे काफी वीडियोस जो है इसकी वायरल भी हो रही है, जहां पे एक बस आती है वो किंडरगार्टन जैसी सिचुएशन में लेकर जाती है और फिर वहां पे डॉग्स को जो है वो पूरा दिन खिलाया जाता है उनको, यू नो उनके प्लेइंग सेशंस होते हैं, सब कुछ होता है उनके लिए ताकि उनको किसी भी तरह से अकेला फील ना हो, क्योंकि अगेन वो जो है डॉग्स घर पे अकेले ना रहे, क्योंकि ऑफ कोर्स जो उनके मालिक होते हैं, जो उनके ओनर्स होते हैं, जो उनके मॉम डैड होते हैं, वो सब तो काम पे जाते हैं। अब काम पे हर जगह तो डॉग्स को नहीं लेकर जाया जा सकता, तो इसी के लिए ये चीज रखी गई थी। एंड देर आर सो मेनी पीपल जो इसमें इंटरेस्टेड है। चाइना में भी कुछ ऐसा ही हुआ। अच्छा, जो इसका प्रिंसिपल है वो अपने आप को प्रिंसिपल इसलिए कहता है क्योंकि उनके लिए ये करना बहुत ही ज्यादा जरूरी था। उन्होंने कहा कि वेस्टर्न कल्चर में यानी कि अमेरिका में ये कॉन्सेप्ट देखा गया था, लेकिन यहाँ ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल भी नहीं था। और मेरा जो एक डॉग था, 6 साल का जो डॉग है, उसको एंजाइटी हो गई जब मैं उसको लेकर गया डॉक्टर के पास, उसे एंजाइटी हो गई। एंड माइंड यू, एंजाइटी सिर्फ किसी एक डॉग को नहीं होती है, देर आर मेनी डॉग्स। इनफैक्ट 70% डॉग्स को नॉर्मली एंजाइटी रहती है, फिर चाहे वो सेपरेशन एंजाइटी हो, चाहे कोई भी एंजाइटी हो, बट दे उनको एंजाइटी होती है। तो उन्होंने कहा कि जब मुझे पता चला कि मेरे 6 साल के डॉगी को एंजाइटी है, तो मैंने सोचा कि ऐसे तो नहीं चलेगा, ठीक है, मुझे ऐसा कुछ करना पड़ेगा। और फिर उन्होंने इस डॉग किंडरगार्टन को शुरू किया, जहां पर पहले तो सिर्फ 10 डॉग आया करते थे, लेकिन अब 200 से ज्यादा डॉग आते हैं। एंड जब मैं इसके बारे में पढ़ रही थी, आई वाज लाइक या यू नो व्हाट, दैट्स सो ट्रू, क्योंकि हम लोग अपने काम में इतने ज्यादा व्यस्त हो जाते हैं, हम अपने डॉग से हर दिन मिलते तो हैं लेकिन हम कितने ही वक्त तक मिल पाते हैं, वो घर पे अकेले रहते हैं और ऐसे में वो सच में अंदर से क्या फील कर रहे हैं हमें पता भी नहीं है। सो ऐसे में यहाँ पर ऐसे कॉन्सेप्ट अगर यहाँ ब्रिस्बेन में, यू नो ऑस्ट्रेलिया में भी अगर हूं, तो कितना ज्यादा अच्छा हो जाएगा, राइट। आई नो देर आर सो मेनी पेट पेरेंट्स जो कि इसमें बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड होंगे एंड दे विल बी लाइक वाओ, बट आई डोंट नो व्हेन इट्स गोना हैपन। बट या जो भी है, बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है और एंजाइटी इन डॉग्स इज रियल, इट्स एज रियल एज हेवन एंड अर्थ। सो ऑफकोर्स अपने डॉग्स के बारे में अच्छे से देखिए, परखिए, उनको ध्यान दीजिए, उनके साथ खेलिए कूदिए, क्योंकि आपके डॉग्स के साथ आप उनको सिर्फ खाना दे रहे हो उससे काम नहीं चलेगा। इनफैक्ट नॉट जस्ट डॉग्स बल्कि आपके पेट्स, तो आपको अपने पेट्स के साथ टाइम भी व्यतीत करना है, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पर एक और गाना आप सबके लिए मेरी तरफ से।

0: आजकल मुझे ना कभी कभी बहुत अजीबोगरीब फील होता है। मुझे ऐसा लगता है कि क्या क्या हो रहा है इस दुनिया में। मैं आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज के बारे में बताने वाली हूँ और वो हमारे एजिंग प्रोसेस से रिलेटेड है। एंड दैट टू हमारे एजिंग प्रोसेस कैसे होता है अगर हमारे पास लड़के होते हैं, अगर हमारे पास बेटे होते हैं, मतलब जिन पेरेंट्स के पास बेटे होते हैं या बेटियां होती हैं, क्या सीन है। वेल, इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग। पर पहले मैं यहाँ पे एक ब्रेक लूंगी और फिर मैं आपको बताऊंगी मैं किसके बारे में बात कर रही हूं।
1: कंटेनर्स फॉर चेंज राही अपने खाली डब्बिया बोतलों तो कमाई करो। तुहाडे हर एक योग खाली कैन बोतल अते कार्टन उते 10 सेंट दा रिफंड प्राप्त हुंदा है। इस नू असी बिन क्वाइन कहंदे हां। अपने बिन क्वाइन नू बचा के रखो, खर्चो जां फिर जिस किसे संस्था जां विषय विच तुहाडा विश्वास है उन्हां नू दान विच दे दियो। तुहाडे नेड़े एक कंटेनर्स फॉर चेंज मौजूद है, बैंक विच पाओ ना के कूड़ेदान विच। अपना सब तो नजदीकी रिफंड पॉइंट लभण लई वैबसाइट उते जाओ अते अज ही 10 सेंट कमाउणा शुरू करो। ਵਧੇਰੇ ਕਿਫਾਇਤੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਧੇਰੇ ਘਰਾਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਨਵੀਂ ਕੁਇਨਜ਼ਲੈਂਡ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ 98,000 ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਨਵੇਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦਾ ਰਾਹ ਖੋਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਘਰ ਜਲਦੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ $2 billion ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਲਈ 4100 hectares ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਮੀਨ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਲਈ 53,500 ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਘਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਵੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਤਿਆਰ ਹਨ। ਅ ਪਲੇਸ ਟੂ ਕਾਲ ਹੋਮ ਖੋਜੋ। ਕੁਇਨਜ਼ਲੈਂਡ ਸਰਕਾਰ ਬ੍ਰਿਸਬੇਨ ਵੱਲੋਂ ਅਧਿਕਾਰਤ, ਆਥੋਰਾਈਜ਼ਡ ਬਾਈ ਦਾ ਕੁਇਨਜ਼ਲੈਂਡ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਬ੍ਰਿਸਬੇਨ। ਨਵੀਂ ਕੁਇਨਜ਼ਲੈਂਡ ਸਰਕਾਰ 4,000 hectares ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਜ਼ਮੀਨ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਲਈ 53,500 ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਘਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅ ਪਲੇਸ ਟੂ ਕਾਲ ਹੋਮ ਖੋਜੋ। ਕੁਇਨਜ਼ਲੈਂਡ ਸਰਕਾਰ ਬ੍ਰਿਸਬੇਨ ਵੱਲੋਂ ਅਧਿਕਾਰਤ, ਆਥੋਰਾਈਜ਼ਡ ਬਾਈ ਦਾ ਕੁਇਨਜ਼ਲੈਂਡ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਬ੍ਰਿਸਬੇਨ। ਵਧੇਰੇ ਕਿਫਾਇਤੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਧੇਰੇ ਘਰਾਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਨਵੀਂ ਕੁਇਨਜ਼ਲੈਂਡ ਸਰਕਾਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ $2 billion ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕੁਇਨਜ਼ਲੈਂਡ ਭਰ ਵਿੱਚ 98,000 ਨਵੇਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦਾ ਰਾਹ ਖੋਲਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਅ ਪਲੇਸ ਟੂ ਕਾਲ ਹੋਮ ਖੋਜੋ। ਕੁਇਨਜ਼ਲੈਂਡ ਸਰਕਾਰ ਬ੍ਰਿਸਬੇਨ ਵੱਲੋਂ ਅਧਿਕਾਰਤ, ਆਥੋਰਾਈਜ਼ਡ ਬਾਈ ਦਾ ਕੁਇਨਜ਼ਲੈਂਡ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਬ੍ਰਿਸਬੇਨ।
2: ਓਏ ਰਾਹੁਲ, ਵੀਰੇ ਤੇਰੇ ਕੇਸ ਦਾ ਕੀ ਹੋਇਆ?
3: ਓ ਯਾਰਾ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵਰੀਡ ਹਾਂ। I actually want an experienced lawyer to handle my case.
2: Go for the best, Vire. Atul Bhardwaj ji nu ajj hi contact karo. Ona de kol vast experience a. Te law di intricacies nu handle karan ch vi o expert han. Criminal law, domestic violence, traffic drug offense vich 12 saal to vadda rich experience. Te conveyance, family law, immigration laws vich vi Bhardwaj and Associates de lawyers da vast experience a. And the best point, they understand the stress that you go through and work effectively to minimize it.
3: Thanks a ton, Vire. I'm so relaxed to hear that.
2: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Ajji contact karo Atul Jino on 0400-234-235. That is 0400-234-235.
4: Anuj, koi achha sa lawyer suggest karo na. Aisa jo meri sari baat dhang se sune, samjhe, aur phir mere tarike se mujhe samjhaye.
5: अर्शाद लॉयर्स है तुम्हारी प्रॉब्लम का सलूशन। कमर्शियल मैटर हो जैसे लीज का मामला, बिजनेस हो या फिर घरों की बाइंग सेलिंग का मामला, और डिवोर्स जैसे फैमिली मैटर्स भी, वो सब में मदद कर सकती हैं। और फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अदालत तक तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। अभी फोन करो 0420-933-171 पर और 15 मिनट का फ्री फोन कंसल्टेशन ले लो।
4: अरे वाह, इनका पता बताना।
5: अर्शाद लॉयर्स, माउंट ग्रेविट शो ग्राउंड्स, ऑफिस 5, 1644 लोगन रोड, माउंट ग्रेविट, एम्पल पार्किंग। कॉल अर्शाद फ्रॉम अर्शाद लॉयर्स नाउ ऑन 0420-933-171। वेबसाइट www.arshadlawyers.com. We pride ourselves in providing excellent service.
0: जी हाँ दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्वानी 107.1 AM। शो चल रहा है इवनिंग वाइब मेरे यानी आरजे निव्या के साथ। दोस्तों, इसी के साथ जैसे मैंने आपको बताया था पहले कि मैं बताने वाली हूँ आपके एजिंग प्रोसेस के बारे में, और मैं सिर्फ अपने आप से बात नहीं कर रही, आई मीन मैं खुद से ही नहीं कह रही हूँ, ये अपनी मेरी रिसर्च नहीं है, बल्कि ये रिसर्च है जहां पर 13,000 से ज्यादा पेरेंट्स के ऊपर ये रिसर्च हुई है, और यहाँ पर पता चला है कि जो एजिंग प्रोसेस है वो ज्यादा जल्दी जल्दी बढ़ जाता है जिन पेरेंट्स के पास सिर्फ बेटे हैं। जी हाँ, आप लोग बोलोगे कि नीवा शर्मा व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट, ऐसा कुछ नहीं है, हमारे बेटे हमारे लिए बहुत कुछ करते हैं और हम एकदम यंग है। वेल ऑफ कोर्स देयर आर अदर फैक्टर्स आल्सो, बट द थिंग इज कि ये बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग था तो मुझे लगा मुझे आपके साथ शेयर करना चाहिए। नाउ व्हाट एग्जैक्टली दे आर सेइंग, सो ऐसा कहा जाता है कि कंपेयर टू द पेरेंट्स जिनके पास बेटियां होती हैं, उन पेरेंट्स के कंपैरेटिवली जिनके पास सिर्फ बेटे होते हैं या फिर बेटियां नहीं होती, उनकी एज जो है वो जल्दी जल्दी बढ़ती है, और उनकी एज जो है वो जल्दी जल्दी दिखना भी शुरू हो जाती है उनकी बॉडी पर। आप लोग बोलोगे कि इसके पीछे क्या रीजन है, well, इसके पीछे रीजन है वो इमोशनल सपोर्ट। जी हाँ, स्टडीज कहती हैं कि जो इमोशनल सपोर्ट लड़कियां अपने पेरेंट्स को देती हैं, बेटियां अपने पेरेंट्स को देती हैं, वो बेटे नहीं दे पाते। आप लोग बोलोगे कि निविया शर्मा, खासकर मेरे मेल लिसनर्स, ऐसे कैसे, मतलब माना कि तुम हमेशा औरतों का ज्यादा साथ देती हो, लेडीज का ज्यादा साथ देती हो, पर यहां भी तुम ऐसा कह रही हो, और अब तो तुम हमारे पेरेंट्स को रेज बेट कर रही हो कि उन्होंने बेटियां क्यों नहीं पैदा की। जी हाँ, द थिंग इज कि मैं खुद एक बेटी हूं एंड आई काइंड agree to that. Now, I'm not saying कि every son is like that. There are many बहुत सारे ऐसे जो हैं वो males हैं, ऐसे बेटे हैं जो कि literally अपने parents को काफ़ी सारा emotional support देते हैं, even more than girls. And I'm not gonna say कि ये सारे ही cases में होता है, बहुत सारी बेटियाँ भी होती होंगी, बहुत सारी नहीं होती होंगी तो कुछ बेटियाँ तो होती हैं जो कि अपने parents को इतना ज़्यादा अच्छा emotional support नहीं दे पाती. And you know what, जो हमारी एज के जो बाद वाले जो एयर्स होते हैं ना, जो हमारी एयर्स होते हैं जो 50s के बाद वाले जो एयर्स होते हैं, तो हमारे पेरेंट्स को इमोशनल सपोर्ट की जरूरत जो है वो नॉर्मल से ज्यादा होती है। सो ऐसे में देयर आर, मतलब ऑफ कोर्स एक्सेप्शंस, बट द थिंग इज कि रिसर्च ने ये प्रूव किया है। जी हाँ, अगेन मैं ये कहूंगी कि मैं नहीं कह रही हूँ, रिसर्च कह रही है कि जिन पेरेंट्स के पास बेटियां होती हैं वो जल्दी जल्दी बूढ़े नहीं होते, वो मॉडर्न रहते हैं अपने दिमाग से भी। जी हाँ, वो आगे की ओर सोचते रहते हैं, मतलब वो प्रोग्रेसिव सोच की तरफ जो है वो बढ़ते रहते हैं, और प्रोग्रेसिव सोच तो एक चीज है लेकिन हेल्दी रहते हैं, और वो हेल्थ जो है वो फैक्टर, वो जो इमोशनल सपोर्ट है वो हमारी मेंटल हेल्थ को, हमारे पेरेंट्स की मेंटल हेल्थ को अच्छा रखती है, और इस वजह से वो बूढ़ा फील करते ही नहीं है जल्दी। अब आप लोग मुझे बोलोगे कि निविया शर्मा ओके ठीक है, कहीं ना कहीं हम इसमें अग्री करेंगे। सो टू ऑल द मेल लिसनर्स, जी हाँ, मैं इतना ही कहूंगी कि इट डजेंट मैटर कि आपके पेरेंट्स ने किसी बेटी को पैदा किया है या नहीं किया है, उन्होंने आपको पैदा किया और मुझे लगता है कि उनको इमोशनल सपोर्ट की जरूरत है, और वो भी आपसे। फिर चाहे बेटी हो चाहे बेटा हो, हम सबको अपने पेरेंट्स के लिए वो इमोशनल सपोर्ट जो है वो प्रोवाइड करनी चाहिए जिसकी उन्हें जरूरत होती है, खासकर 50 और 60 साल की उम्र के बाद, बिकॉज दे रियली नीड इट। एंड अगर आप वो करते हो तो आप अपने पेरेंट्स को हेल्दी रख रहे हो और बहुत लंबे समय के लिए रख रहे हो। सो या, स्टडीज ने बेशक प्रूव कर दिया, लेकिन मैं अपने लिसनर्स को यही कहूंगी कि इररिस्पेक्टिव ऑफ इफ यू आर मेल और फीमेल, अगर आपके घर में भाई है, बहन है, बेटियां हैं, बेटे हैं, मैं कहूंगी कि आप अपने पेरेंट्स के लिए इमोशनल सपोर्ट जरूर बनिए, बिकॉज they need it and they want it. यहाँ पर एक और गाना आप सबके लिए मेरी तरफ से।

जी हाँ दोस्तों, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि अगर आप लोग भी कॉरपोरेट सेक्टर में काम करते हो और आपको भी आदत है क्या अपने कोवर्कर्स के डिफरेंट डिफरेंट अजीबो गरीब नाम रखने की। जी हाँ, अभी कल ही की बात है, मैं सोशल मीडिया स्क्रॉल कर रही थी और वहां पर मैं एक मीम देखती हूँ और मुझे ऐसा लगता है कि वाओ, दैट्स अ गुड आइडिया एंड दैट्स अ गुड नेम एट दैट। जी हाँ, अब आप लोग बोलोगे कि अच्छा ऐसा क्या था। सो वहां पे लिखा हुआ था, मी गेटिंग ड्रैग्ड इनटू एचआर आफ्टर सेइंग माय कोवर्कर्स आर लाइक क्रिसमस लाइट्स। जी हाँ, ध्यान से सुनिएगा, उसमें लिखा हुआ था, मी गेटिंग ड्रैग्ड इनटू एचआर आफ्टर सेइंग माय कोवर्कर्स आर लाइक क्रिसमस लाइट्स, दे ऑल हैंग टुगेदर, हाफ डोंट वर्क एंड द रेस्ट आर इन दैट ब्राइट। जी हाँ, सो आई थिंक अगर आपको भी अपने कोवर्कर्स के लिए नाम चाहिए जो कि काम चोर हैं, देन क्रिसमस लाइट्स कैन बी अ गुड नेम, राइट? व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट, जरूर मुझे बताइएगा। यहाँ पर एक और गाना आप सबके लिए मेरी तरफ से, जो कि अगेन जबरदस्त होने वाला है।

0: यार राहुल, तेरे केस का क्या हुआ?
1: यार I'm so worried. Actually want an experienced lawyer to handle my case.
0: मेरी एडवाइस है, go for the best. अतुल भारद्वाज जी है ना, उनके पास 12 साल से ज्यादा का वास्ट एक्सपीरियंस है और लॉ की एंट्री केसेस को हैंडल करने में उनकी एक्सपर्टीज है. क्रिमिनल लॉ, डोमेस्टिक ऑफेंस, ट्रैफिक ड्रग ऑफेंस में 12 साल से ज्यादा का रिच एक्सपीरियंस, और तो और कन्वेयंस, फैमिली लॉ, इमिग्रेशन लॉज में भी भारद्वाज एंड एसोसिएट्स के लॉयर्स का वास्ट एक्सपीरियंस है. एंड द बेस्ट पॉइंट, दे अंडरस्टैंड द स्ट्रेस दैट यू गो थ्रू एंड वर्क इफेक्टिवली टू मिनिमाइज इट.
1: थैंक्स अटनिया, आई एम सो रिलैक्स्ड टू हियर दैट.
0: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Contact Atul now on 0400-234-235. That is 0400-234-235.
2: Are you ready to stop renting and thinking about owning one? Or maybe an investor looking to invest? Then think no more, and it is time to build your future in upcoming house and land packages available in Oxley, Breckenridge, Moggill and surrounding areas in Brisbane, Queensland. It is the great Australian dream. Homes built strong, smart and built to last. If you are ready to make the move, then don't wait till tomorrow. Call agent John Lawla on 0404-004-899. Yes, it's 0404-004-899. And quote code word Briswani. Your new home waiting for you in Oxley, Breckenridge, Moggill and surrounding areas in Brisbane, Queensland.
3: Hi, this is Amitabh Bachchan.
4: और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
5: Hi guys, I'm Manmeet, one of the Meet Brothers. आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
6: Hi, this is Salman Khan.
7: और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
8: Hi, this is Deepika Padukone. और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
9: To everyone tuning into Radio Briswani, this is Alia.
10: Hi, मैं हूँ तुलसी कुमार और आप मुझे सुन रहे हैं Radio Briswani से.
11: To everyone tuning into Radio Briswani, this is Shahrukh Khan.
12: Hi, this is Ajay Devgan और आप सुन रहे हैं Radio Briswani.
13: मेरा नाम डॉक्टर कुमार है और यहाँ कुछ ऐसा है जिसे जानना अच्छा है. एक नया नेशनल लंग कैंसर स्क्रीनिंग प्रोग्राम शुरू हुआ है. ये सरल है, निशुल्क है और ये लक्षणों के सामने आने से पहले ही लंग कैंसर का पता लगा सकता है. यदि आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो हो सकता है कि आप ये सोचें कि बहुत देर हो चुकी है या इसके बारे में ना जानना ही बेहतर है. लेकिन क्या आपको पता है कि फेफड़ों के कैंसर की शुरुआत में पता लगाए गए 65% से अधिक मामलों का सफलतापूर्वक इलाज किया जा सकता है. यदि आप 50 से 70 वर्ष की आयु के हैं और आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो अपने डॉक्टर से बात करें या lungcancerscreen.org.au पर जाएं.
9: जी हाँ दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी 1701 AM. शो चल रहा है इवनिंग वाइब मेरे यानी आरजे निव्या के साथ. दोस्तों इसी के साथ आज बर्थडे है विजय का. जी हाँ, ऑफ कोर्स अब बर्थडे विश करने का वक्त हो गया है क्योंकि बर्थडे है एक ऐसे एक्टर का जो कि लिटरली एक्टिंग से शुरुआत करके सीधा पॉलिटिक्स में एंटर कर गए और पॉलिटिक्स में एंटर करने वाली जो गूंज थी वो पूरी दुनिया में सुनाई दी. जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ विजय की. जी विजय जो कि तमिलनाडु में, भारत के तमिलनाडु में वहां के सीएम बन चुके हैं ऑफिशियली. जी हाँ, एकदम से अपनी पार्टी का जो है वो लॉन्च करते हैं और उसके बाद वो सीधा बन जाते हैं सीएम. मतलब अपनी पिक्चरों में सीएम का कैरेक्टर प्ले करना, पॉलिटिशियंस का कैरेक्टर प्ले करना, बड़े बड़े हीरोज का कैरेक्टर प्ले करने के साथ साथ उन्होंने लोगों को इतना ज्यादा मदहोश कर दिया कि लिटरली लोगों ने मान लिया कि ये बंदा जो फिल्मों में अच्छा एक्टर बन रहा है, फिल्मों में अच्छा सीएम बन रहा है, अच्छा पॉलिटिशियन बन रहा है, ये रियल में भी अच्छा पॉलिटिशियन बन सकता है यार. जी हाँ, इनकी जो यू नो सक्सेस स्टोरी है पॉलिटिक्स में एंटर होने वाली वो बड़ी ही जबरदस्त है बाय द वे. और इनफैक्ट उनकी एक मूवी आ रही है जिसमें वो कुछ ऐसा ही कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं, सो वो भी एक बड़ी बात होगी. सो यार, जन्मदिन की बहुत बहुत मुबारकबाद विजय आपको, क्योंकि साउथ के सुपरस्टार नहीं हो आप, सिर्फ आप पैन इंडिया सुपरस्टार हो. दैट्स ऑल आई वांट टू से. ये साल आपके लिए अच्छा रहे जो कि अभी तक काफी अच्छा है. मतलब क्या स्विच हुआ है एक्टिंग से पॉलिटिक्स का. बट या अगेन हम यही कहेंगे कि साल आपकी हेल्थ अच्छी बनी रहे, वेल्थ आपको आती रहे और सत्ता में तो आप आ ही गए, इससे ज्यादा मैं और क्या कहूँ. एंड गेस व्हाट दोस्तों, आज एक और बंदे का जन्मदिन है. अब ये बंदा जो है ये बहुत ही जबरदस्त एक्टर रहे हैं, अब हमारे साथ इस दुनिया में नहीं है, लेकिन इनकी एक्टिंग इतनी खतरनाक है कि आज भी इनके कुछ रोल से बच्चे जो हैं वो कांप जाते हैं। आप लोग बोलोगे गब्बर का तो जन्मदिन नहीं है ना, नो नो नो नो नो नो, एक और लेजेंडरी विलन का आज जन्मदिन है। गेस कीजिए किसका और फिर हम आपको बताएंगे किसके बारे में हम बात कर रहे हैं। पहले हम आपको सुनाते हैं एक और गाना।

जी हाँ दोस्तों, कहा था ना, बताएंगे आपको किसका जन्मदिन है, कैसे खलनायक का, जिसको लिटरली हिंदी फिल्म जगत हमेशा याद रखेगा। और मैं बात कर रही हूँ मोगाम्बो खुश हुआ। जी हाँ, मोगाम्बो खुश हुआ। आप मुझे बताइएगा कैसे किया जाता है, क्योंकि मुझे पता है मेरे लिसनर्स जो है वो सबसे ज्यादा टैलेंटेड है। सो जा सिमरन जा जीले अपनी जिंदगी से पहले जो सारी की सारी मूवी में हड़कंप मचा के रखा था। जी हाँ, बात कर रहे हैं अमरीश पुरी जी की। मोगाम्बो खुश हुआ मतलब लिटरली मिस्टर इंडिया को परेशान करके रखा हुआ था। हम बात कर रहे हैं अमरीश पुरी जी की। आप मुझे ये बताइए कि अमरीश पुरी की कौन सी पिक्चर आपको पसंद है और कौन से कैरेक्टर में वो आपको सबसे ज्यादा मजेदार लग रहे हैं। इज इट अ DDLJ, इज इट मिस्टर इंडिया, और इज इट कौन सी वाली वो मूवी थी जिसके साथ आप अमरीश पुरी के फैन हो गए थे, या आपको अमरीश पुरी से इतना डर लग गया था कि आपको लग रहा था कि ये बंदा सच में भी ऐसा है क्या? जी हाँ, क्योंकि ये लेजेंडरी विलन्स ने और लेजेंडरी एक्टर्स ने जब ये विलन कैरेक्टर्स प्ले किए हैं तो लिटरली लोगों को ये लगा है कि ये बंदे तो रियल में ही ऐसे, मतलब मोगाम्बो रियल में ही मोगाम्बो है और सच में ये लोगों को परेशान करता है। जी हाँ, सो या आज अमरीश पुरी जी के जन्मदिन के दिन हम उन्हें याद कर रहे हैं और हम यही कहेंगे कि उनकी एक्टिंग ने हमें एंटरटेन करके रखा, हमें डराया, कभी कभी हमें लिटरली बहुत ज्यादा इमोशनल भी किया, एंड वी लव हिम। जी हाँ, यहाँ पर एक और गाना आप सबके लिए मेरी तरफ से।

0: प्रिया, नेक्स्ट मंथ मामा का बर्थडे है। सोच रही हूँ उनको फॉरेन एक्सचेंज के थ्रू न्यूजीलैंड मनी भेज दूँ, जिससे वो अपनी पसंद का गिफ्ट ले लेंगे।
1: ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। मेरे पास एक अच्छा ऑप्शन भी है मनी ट्रांसफर करने का।
0: अच्छा, वो क्या?
1: अब तुम घर बैठे न्यूजीलैंड या फिजी में भी मनी भेज सकती हो लोटस फॉरेन एक्सचेंज की हेल्प से ऑनलाइन, और वो भी फ्री में।
0: लेकिन मामा के लिए मनी लेने कहीं दूर जाना पॉसिबल नहीं होगा।
1: अरे, रिसीवर्स अब कैश पिकअप, बैंक ट्रांसफर या मोबाइल वॉलेट में भी ले सकते हैं मनी। डाउनलोड कीजिए लोटस फॉरेन एक्सचेंज ऑनलाइन au.lotusfx.com ऐप आज ही विजिट करें।
2: यार सब ठीक है, बस मम्मी पापा इंडिया में अकेला फील करते हैं। अनऑर्गेनाइज्ड हेल्पर्स पे भरोसा भी नहीं होता। कल को इमरजेंसी हो जाए तो?
3: तूने ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग के बारे में सुना है? गुरुग्राम में है प्रोफेशनल सीनियर लिविंग, 24/7 नर्सिंग और डॉक्टर्स के स्ट्रॉन्ग टाइप्स के साथ। फोर्टिस, मेडांटा, सीके बिरला, आर्टेमिस, सब अच्छे हॉस्पिटल्स पास ही हैं।
2: सीरियसली? मतलब प्रॉपर केयर और मुझे यहाँ भी पीस ऑफ माइंड?
3: बिल्कुल, ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, ऑस्ट्रेलियन ओन्ड सीनियर लिविंग इन गुरुग्राम इंडिया। ऑस्ट्रेलियन स्टैंडर्ड्स की प्रोफेशनलिज्म, एक्सपीरियंस टीम और ट्रस्टेड अल्टरनेटिव टू अनऑर्गेनाइज्ड अनरिलायबल होम हेल्पर्स। अपने पेरेंट्स के लिए सेफ डिग्निफाइड केयर चाहिए? ओम्स ऑर्ग, स्पेल्ड OMSORG। वेबसाइट omsorg.co.in, व्हाट्सएप या कॉल कीजिए इंडिया नंबर 8448381360। ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, जहां केयर का मतलब है रियल केयर।
4: भाई, मम्मी पापा की तबीयत की बहुत टेंशन रहती है यार। हम यहां ब्रिस्बेन में और वो इंडिया में अकेले हैं।
5: तो ओम्स ऑर्ग से बात कर, इंडिया में एल्डर्स और दिव्यांगनों के लिए इन होम केयर देते हैं एकदम प्रोफेशनल तरीके से।
4: हाँ, लेकिन भरोसा कैसे करूं?
5: अरे, ओम्स ऑर्ग एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी मैपल केयर की सब्सिडियरी है, और मैपल केयर NDIS का रजिस्टर्ड प्रोवाइडर है।
4: अच्छा, मतलब स्टैंडर्ड और रिस्क मैनेजमेंट भी ऑस्ट्रेलिया जैसा?
5: बिल्कुल, खाना, दवाई, हेल्थ चेक, सब कुछ जैसे आप खुद देख रहे हो।
4: फिर तो आज ही वेबसाइट देखनी पड़ेगी।
5: उनकी वेबसाइट www.omsorg.co.in है। भारत में नंबर +91 8448381360 है, और ऑस्ट्रेलिया में 0470631801। प्यार और देखभाल की कोई दूरी नहीं होती भाई। ओम्स ऑर्ग, केयरिंग विद डिग्निटी।
6: जी हाँ दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्वानी 1701 AM, और यहां पर शो चल रहा है इवनिंग वाइब। इवनिंग वाइब में अब वक्त हो गया है खबरों की तरफ रुख करने का। जी हाँ, आपने सही सुना, मतलब पॉलिटिकल वर्ल्ड में क्या हो रहा है, दुनिया में क्या हो रहा है। जिस पीस डील के लिए हम इतना खुश हो गए थे, क्या वो हो रही है या नहीं हो रही है, और कहाँ पर वॉर की सिचुएशन बनी हुई है, वेल वी आर गना टॉक अबाउट दैट। सो ध्यान से सुनिएगा अब, क्योंकि आपको बहुत कुछ पता चलने वाला है। सबसे पहले शुरुआत करते हैं कतर के गैस प्लांट पे बड़ा धमाका, 54 लोग घायल हुए और 18 लोग लापता हुए। जी हाँ, कतर के रास लाफान इंडस्ट्रियल सिटी में स्थित एक गैस प्लांट में बड़ा धमाका हो गया है। इस हादसे में 54 लोग घायल हुए हैं और 18 लोग लापता हुए हैं। कतर प्रशासन के अनुसार रास लाफान इंडस्ट्रियल सिटी में एक धमाका हुआ और फिर बड़े पैमाने पर आग लग गई। कंपनी ने कहा कि इमरजेंसी टीमें तुरंत मौके पर भेजी गई और थोड़े समय बाद आग पर काबू पा लिया गया। कतर के गृह मंत्रालय ने बयान में कहा कि धमाके में 54 लोग घायल हुए हैं, जबकि 18 लोग लापता हैं, उनकी तलाश की जा रही है। मंत्रालय के अनुसार धमाका एक तकनीकी हादसे की वजह से हुआ। इससे गैस का कोई ऐसा रिसाव नहीं हुआ जो आम लोगों की सुरक्षा के लिए खतरा बने। गृह मंत्रालय ने कहा कि कतर इंटरनेशनल सर्च एंड रेस्क्यू ग्रुप सिविल डिफेंस टीमों के साथ मिलकर लापता लोगों की तलाश कर रहा है। ये नहीं बताया गया कि धमाके से उस प्लांट को कोई नुकसान हुआ या नहीं जो कतर के घरेलू बाजार में गैस सप्लाई करता है। इसी बीच एक चश्मदीद ने राइटर्स को बताया कि धमाके की तेज आवाज राजधानी दोहा में भी सुनी गई।

जी हाँ दोस्तों, इसी के साथ खबरों की बात हो रही है और अब जरा बात कर लेते हैं उस समझौते की और उस समझौते पर हुए हस्ताक्षर की, यानी कि सिग्नेचर की, जो कि स्विट्जरलैंड पे हुए। क्या क्या तय हुआ आपको बताते हैं। आई एम टॉकिंग अबाउट अमेरिका ईरान के बीच हुआ समझौता। इसके बारे में पाकिस्तान ने कहा है, क्योंकि पाकिस्तान ने मध्यस्थता का कैरेक्टर यहां पर प्ले किया है, मतलब वो इंटरमीडिएटर बना हुआ था। तो स्विट्जरलैंड के बर्गनस्टॉक रिजॉर्ट में अमेरिका और ईरान के बीच शांति वार्ता चल रही है। कतर और पाकिस्तान मध्यस्थता की भूमिका निभा रहे हैं और इस बैठक को लेक ल्यूसर्न समिट कहा जा रहा है। अब इसको लेकर कतर और पाकिस्तान ने एक साझा बयान जारी किया है। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय की ओर से जारी किए गए इस बयान में कहा गया कि उच्च स्तरीय वार्ता का पहला सत्र खत्म हो गया है। साझा बयान में बताया गया है कि समझौते के आधार पर सबने मिलकर तय किया है कि एक हाई लेवल कमेटी बनाई जाएगी। ये कमेटी पूरी बातचीत पर नजर रखेगी और देखेगी कि सब सही दिशा में चल रहा है या नहीं। वार्ताकार इस कमेटी को लगातार रिपोर्ट देंगे, साथ ही अलग अलग टीमें बनाई जाएंगी जो खास मुद्दों पर काम करेंगी, जैसे परमाणु कार्यक्रम, ईरान पर लगे प्रतिबंध, निगरानी और विवाद सुलझाने के तरीके। बयान में आगे कहा गया कि यह तय किया गया है कि अगले 60 दिनों में अंतिम समझौते तक पहुंचने के लिए एक योजना बनाई जाएगी। इस रोड मैप के आधार पर तुरंत तकनीकी बातचीत शुरू होगी। सभी पक्षों के बीच एक सीधी बातचीत की लाइन बनाई गई है। इसका मकसद है कि कोई गलत फहमी या टकराव ना हो, जहाजों को हॉर्मुज स्ट्रेट से सुरक्षित तरीके से गुजरने दिया जा सके। दोनों देशों ने अपने साझा बयान में जानकारी दी कि सब देशों ने मिलकर तय किया कि एक डी कॉन्फ्लिक्शन सेल बनाई जाएगी। इसमें लेबनान भी शामिल होगा। इसे कतर और पाकिस्तान जैसे मध्यस्थ देश चलाएंगे। इसका काम यह देखना होगा कि लेबनान में लड़ाई बंद करने का जो समझौता हुआ उसका सही पालन हो। यहां पर एक और गाना आप सबके लिए मेरी तरफ से।

जी हाँ दोस्तों, इसी के साथ खबरों के बारे में हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। खबरों की बात हो रही है तो ऑफ कोर्स अब जरा बात कर लेते हैं अमेरिका और ईरान की। आप लोग बोलोगे कि निवेश शर्मा, अमेरिका और ईरान के बारे में तो हम बात कर ही रहे थे पहले भी। अरे वो तो आपने समझौता और समझौते से रिलेटेड बातें सुनी, लेकिन आपको ये बता दूं कि समझौता टेबल पर है लेकिन यहाँ पर एक दूसरे पर वार और प्रहार पूरी तरह से चल रहा है। जी हाँ, मतलब अभी भी दोनों कंट्रीज एक दूसरे को धमकियां दे रही हैं। जी हाँ, अब ऐसे में क्या हुआ है नया आपको बता दें। सो डोनाल्ड ट्रंप ने धमकी दी है और उस पर ईरानी संसद के स्पीकर गलिबाफ ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। आइए जरा जानते हैं। अमेरिका और ईरान के बीच जंग खत्म करने के लिए स्विट्जरलैंड में बातचीत चल रही है। इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को धमकी दी, जिस पर ईरान के मुख्य वार्ताकार और संसद के स्पीकर मोहम्मद बग गलिबाफ की प्रतिक्रिया भी आई है। दरअसल अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रविवार को ट्रुथ सोशल पर लिखा कि अगर ईरान ने लेबनान में इसराइल से लड़ रहे हिजबुल्ला को नहीं रोका तो अमेरिका हमला करेगा। ईरान ने इस चेतावनी पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि वह लड़ने के लिए तैयार है। जी हां, ईरान के मुख्य वार्ताकार और संसद के स्पीकर मोहम्मद बगर गलिबाफ ने ट्रंप का जवाब देते हुए कहा कि क्या उन्हें लगता है अगर उनकी धमकियों का कोई असर होता तो वो आज इस हालत में होते? चाहे वो जितनी भी बातें करें, असली कार्रवाई हम ही करते हैं। दरअसल अमेरिका और ईरान के बीच बीते हफ्ते साइन हुए डील में ये शर्त भी थी कि लेबनान समेत हर मोर्चे पर युद्ध रोकना होगा। हालांकि इसके बावजूद दक्षिणी लेबनान में हिजबुल्ला और इसराइल सेना के बीच लड़ाई तेज हो गई है। लेबनान के स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक इसराइल के हवाई हमलों में दर्जनों लेबनानी नागरिक मारे गए, जिसमें महिलाएं और बच्चे भी शामिल थे। इस बढ़ते तनाव के चलते अमेरिका ने शुक्रवार को इसराइल और हिजबुल्ला के बीच नया युद्ध विराम घोषित किया, लेकिन झड़पें और हवाई हमले जारी रहने से ईरान ने शनिवार को कहा कि उसने हॉर्मुज स्ट्रेट फिर से बंद कर दिया है। जी हाँ, हालांकि जहाजों की आवाजाही के आंकड़े बताते हैं कि वहां से जहाज गुजर रहे हैं। अब आप मुझे ये बताइए कि इनके बीच में बात भी चल रही है, ये एक दूसरे को धमकी भी दे रहे हैं और ये भी कह रहे हैं कि ओके ठीक है, मतलब तुम कुछ भी करो, असली काम हम ही खत्म करते हैं। ईरान इज लाइक कि ओके डू व्हाटएवर यू वांट, हम तुम्हें देख लेंगे। जी हाँ, ऑफ कोर्स इसके साथ हम ट्रंप रोस्टिंग सेशन में भी एंटर करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले हम आपको एक गाना सुनाएंगे और फिर हम आपको बताएंगे ट्रंप क्या क्या खुराफाती नई चीजें कर रहे हैं। आप लोग बोलोगे कि निवेश शर्मा, आई नो वी आर वेटिंग फॉर इट। सो आइए सबसे पहले एक गाना सुनते हैं और फिर चलते हैं उस और।

दोस्तों एक चीज मुझे कभी भी समझ नहीं आएगी कि अमेरिका के पास इतने सारे पैसे हैं। जी हाँ, बाय द वे ट्रम्प रोस्टिंग सेशन जो है वो ऑफिशियली शुरू हो गया है, तो ध्यान से सुनिएगा क्योंकि आपको मजा आने वाला है। और हंसने में कोई बुराई नहीं है, हंसने से हमारा खून बढ़ेगा। मतलब ये इंसान सारी जगह पे काम गलत कर रहा है, लेकिन अगर एटलीस्ट हमारा खून बढ़ा दे तो फिर तो एक तो अच्छा काम तो इनकी झोली में आना चाहिए, राइट? सो यहां पर जैसे मैंने कहा कि मुझे कभी भी समझ नहीं आएगा कि अमेरिका के पास इतने सारे पैसे हैं, मतलब एटलीस्ट वो ये दिखाता तो है कि उसके पास इतने सारे पैसे हैं, तो वो एक अच्छा सा बंदा क्यों नहीं हायर कर लेते जो डोनाल्ड ट्रंप के ट्वीट्स लिख सके। I mean, मुझे ऐसा लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप ड्रंक होते हैं और रात को उठ के कुछ भी लिखना शुरू कर देते हैं। अब आप लोग बोलोगे कि एग्जैक्टली क्या हुआ है। वेल, अभी कुछ दिन पहले, 3 दिन पहले उन्होंने एक ट्वीट किया था। उन्होंने कहा कि वी डिडंट मीट आउट ऑफ डेस्परेशन, ईरान डिड, दे आर फिनिश्ड, विल प्ले आउट द 60 डेज, दे गेट नो मनी, नो 10 सेंट्स। जी हाँ, ये डोनाल्ड ट्रंप द प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका ने ये ट्वीट किया है। आप लोग बोलोगे कि ये सच में ऐसा लगता है ड्रंक होके ही ट्वीट करता है बंदा। मतलब मैं कहूंगी कि ये हर टाइम ड्रंक रहता है या फिर हर टाइम नींद में रहता है, क्योंकि अब तो इनकी वो वायरल वीडियो बहुत ज्यादा वायरल हो रही है जिसमें ये सो रहे हैं। लिटरली वहां पर प्रेस है, पूरा लोग सब कुछ बोल रहे हैं, यहां वहां से बातें हो रही है, एंड ही इज लाइक ओके लेट मी जस्ट टेक अ नैप, या लेट मी जस्ट अ 5 मिनट नैप, या दैट्स वॉट ही वॉज डूइंग। नाउ ये वाला ट्वीट तो एक चीज है। अच्छा, फिर इनको तो पता ही है, आपको पता है कि जब भी लोग इनको बोलते हैं कि अच्छा अच्छा तुम्हारी हार हुई है, तो ये एकदम से ट्रिगर हो जाता है बंदा। सो यहाँ पे भी कुछ ऐसे ही हुआ। बड़े अच्छे से बोलता है कि नहीं नहीं, हमने कुछ नहीं किया, हम इनको कोई पैसे नहीं देने वाले। ईरान ने सीधा सीधा कह दिया है कि ये $300 बिलियन हमें देने वाले हैं। आई डोंट नो कि 300 बिलियन से वो ज्यादा देंगे या कम देंगे, लेकिन अब ट्रंप ये मानने के लिए तैयार नहीं है कि जहां पर सब कुछ सही था पहले से, मतलब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज मैंने खुलवा दिया। अरे वो पहले ही खुला हुआ था चाचा जी, तुमने उसे बंद करवा दिया था। सो यहां पर वो बड़े ही अच्छे से कहते हैं कि क्या बोलते हैं, बड़े ही अच्छे से कि मैं ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो है खुलवा दिया है, अब मैं जो है वो ये कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ, इकोनॉमी जो है वो एकदम बूस्ट हो गई है, शेयर मार्केट जो है वो एकदम खतरनाक तरीके से ऊपर चली गई है। अरे तुमने जितनी बार गिराई है उसका भरपाई करना मुश्किल है। सो यहाँ पर ये वाली चीज भी। अच्छा, नया चीज उन्होंने सीख ली है कि ईरान के साथ तो अब EMU साइन हो गया है, तो अब और क्या किया जाए। अब खुराफाती दिमाग ऐसे शांत तो बैठ नहीं सकते हैं, तो इन्होंने किया कि अच्छा चलो ठीक है, जॉर्जिया मेलानी के पीछे पड़ जाते हैं। अब जॉर्जिया मेलानी ने इनको भाव नहीं दिया अपेरेंटली, क्योंकि G7 की जितने भी वीडियोस हैं उनमें आप देख सकते हो कि शी इज लाइक ओह, एंड यू नो व्हाट द फनी थिंग इज कि शी हैज वन ऑफ द बेस्ट एक्सप्रेशन इन द पॉलिटिकल वर्ल्ड। जी हाँ, जब वो आई रोल करती है, जब भी उनको लगता है क्या ही चल रहा है, ये इंसान क्या ही कर रहा है, देन शी इज लाइक ओह, तो उनके एक्सप्रेशन जो है वो अपने आप में वायरल होते हैं। सो यहां पर उनके पीछे पड़ गए, वॉज लाइक यू नो व्हाट, जॉर्जिया मेलानी पहले तो कहीं नहीं दिखी जब मैं कह रहा था कि हमें जरूरत है, हमें न्यूक्लियर पावर खत्म करनी है ईरान की, और यहां पर हम सबको एक साथ खड़े होने की जरूरत है, तो ना इटली दिखा ना जॉर्जिया मेलानी दिखी, लेकिन जब अब मैं G7 में गया तो शी वाज लाइक यू नो व्हाट, कैन आई टेक अ पिक्चर, कैन आई टेक अ पिक्चर। ओ माय गॉड, आई डोंट नो ये इंसान अपने आप को क्या समझता है। ड्वेन जॉनसन भी सोच रहे होंगे कि किससे कंपेयर कर दिया नहीं भैया। चलिए इसके बाद आपको कुछ और भी बताते हैं, क्योंकि जॉर्जिया मेलानी के साथ साथ वो किसी और के पीछे भी पड़ गए हैं जो कि बहुत फनी है, पर पहले मैं आपको सुनाऊंगी एक बढ़िया सा गाना।

0: क्या आपकी शादी होने वाली है? तो आज ही फोन कीजिए कॉमनवेल्थ सिविल मैरिज सेलिब्रेंट परमानंद को 04111270035 पर या फिर उनसे मिलिए लेवल 133 बालाक्लावा स्ट्रीट वोलोंगाबा में। फॉर वेडिंग्स एंगेजमेंट्स रिन्यूअल ऑफ वाउज और कमिटमेंट सेरेमनीज घर पर हॉल या पार्क में बुक विद परमानंद। कॉल नाउ ऑन 04111270035। रिमेम्बर द नंबर इज 04111270035 या फिर ईमेल करें permanand@optusnet.com.au पर। फॉर बेस्ट सर्विस कंप्लीट लीगल पेपर वर्क मैरिज सर्टिफिकेट एंड अ मेमोरेबल मैरिज सेरेमनी रिमेम्बर द नेम परमानंद ये प्रोफेशनल एंड फ्रेंडली सिविल मैरिज सेलिब्रेंट सिंस 2003।
1: यार साग में कुछ दम नहीं है, बिल्कुल मजा नहीं आया।
2: किसी दिन घर आना, असली देसी घी में साग बनाकर खिलाऊंगा तुम्हें।
1: कहाँ यार, आजकल असली देसी घी मिलते कहाँ है?
2: किस दुनिया में हो भाई, क्वालिटी फूड सर्विस में ट्रिपल रिफाइंड पीवा देसी घी मिलते हैं। ऑस्ट्रेलिया में ही बनते हैं 100% पीवा क्रीम से, 99.9% पीवा मिल्क फैट से, और तो और हर मौसम में उपलब्ध रहने के साथ साथ हाई क्वालिटी पैकेजिंग में भी आते हैं।
1: मुझे तो पता ही नहीं था। अच्छा ये बताओ मैं कहाँ से खरीद सकता हूँ?
2: लगभग सभी इंडियन आउटलेट से तुम पीवा देसी घी ले सकते हो।
3: पीवा देसी घी सिंह डेयरी द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है, बिल्कुल ओरिजिनल और कलरलेस। और इन्फो के लिए आज ही कॉल करें मोबाइल नंबर 04006644355 पर। याद रहे 04006444355 पर, या फिर ईमेल करें singdairy@gmail.com पर।
4: मेरी पत्नी सभी घी ट्राई कर चुकी है और जब से वो पीवा देसी घी इस्तेमाल करने लगी है सारे घर में घी की खुशबू फैल जाती है।
5: Some numbers carry weight beyond what you see. Q11700, the master number of Vedic tradition, a heritage Queensland plate, first issued in 1922, a piece of Queensland history with full provenance, owned outright, transfer ready. For the buyer who understands that the number you carry is a statement of who you are, Q Plate Sales. Inquire at qplatesales.com.au. It's not just a number, it's a statement.
6: The Total Focus Group Australian International Masters 2026, hosted by Queensland Fiji Football Association QFFA, from 1st July till 5th July 2026 at the iconic Olympic FC Stadium in Yeronga, Brisbane, with 32 teams already confirmed participating across Fiji, Australia, New Zealand, Canada and United States. Festival atmosphere for the whole family, live entertainment, kids play zone and food stalls. For more information, contact President Jitendra Prasad, Chairman Imroz Mohammed and Secretary Aman Kumar, connecting the community. And a big thank you to our major sponsor, Total Focus Group.

0: इंडियन फैशन का जब भी जिक्र होता है तो लोग रानी क्रिएशंस को याद करते हैं, क्योंकि रानी क्रिएशन में सभी कुछ उपलब्ध है। यू गेट मेंस एंड लेडीज वेडिंग सूट्स एंड एक्सेसरीज, टॉप क्वालिटी डिजाइनर साड़ीज, लहंगा, सलवार कमीज, पार्टी वेयर एंड मेन शर्ट्स एंड सूट्स। यू कैन ऑल्सो ऑर्डर टेलर मेड सूट्स फ्रॉम रानी क्रिएशंस। इतना ही नहीं, ओरिजिनल डीवीडीज, सीडीज, फोन कार्ड्स, प्रीपेड चार्ज कार्ड्स, फैंसी ज्वेलरी, बैंगल्स, गिफ्टवेयर भी उपलब्ध है। फॉर टॉप क्वालिटी बॉलीवुड फैशन विजिट रानी क्रिएशंस एट 33 बलक्लावा स्ट्रीट, वुलन गैबा, ओपन डेली फ्रॉम 9 AM। टेलीफोन रानी क्रिएशंस ऑन 3391-0622 और विजिट देयर वेब पेज ranicreations.com। द वन स्टॉप बॉलीवुड फैशन एंड एंटरटेनमेंट स्टोर, वेल नोन फॉर इट्स क्वालिटी सर्विस एंड रीजनेबल प्राइसेस।
1: जी हाँ दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्वानी 1701 AM। शो चल रहा है इवनिंग वाइब मेरे यानी आरजे निविया के साथ। दोस्तों बात हो रही है मिस्टर ट्रंप की, और ट्रंप रोस्टिंग सेशन जो है वो थोड़ा सा लंबा चल रहा है, क्योंकि आपको तो पता है वीकेंड में ही उन्होंने हमें इतना सारा कॉन्टेंट दे दिया कि हम अब अपने आप को रोक नहीं पा रहे हैं। जैसे मैंने कहा कि जॉर्जिया मेलानी के पीछे पड़े हुए हैं वो, और जॉर्जिया मेलानी को कहते हैं कि यू नो व्हाट, जब हमें उनकी जरूरत थी, जब हम उन्हें कह रहे थे कि आपको हमारे साथ आना चाहिए, नाटो को हमारे साथ आना चाहिए, यू नो से डील करने के लिए, तब वो नहीं आए। लेकिन अब जब पीस डील साइन हो रही है तो वो G7 में मेरे से पिक्चर मांग रही थी, ऑटोग्राफ। एक तो मुझे समझ नहीं आता कि अपने आप को समझते क्या है, लिटरली। जी हाँ, इसके साथ आप लोग बोलोगे कि निवेश शर्मा ये तो सुना सुना लग रहा है। वेल सुना सुना तो लगेगा, क्योंकि कुछ महीने पहले ये मैक्रों के पीछे पड़े हुए थे। जी हाँ, सो पहले फ्रांस के इमैनुअल मैक्रों की बारी थी, अब जॉर्जिया मेलानी की बारी आ गई है। और जॉर्जिया मेलानी ने भी फायर बैक किया है, उन्होंने कहा है कि नीदर आई नॉर इटली एवर बेग्ड। जी हाँ, मतलब हम कभी भी इस इंसान से भीख मांगेंगे, और वो भी पिक्चर की। लेकिन क्या समझता है अपने आप को? जी हाँ, यहाँ पर ये सारी की सारी सिचुएशन हो रही थी। अब आप लोग बोलोगे कि अच्छा ठीक है, जॉर्जिया मेलानी के पीछे पड़े, ठीक है, उसके बाद अब वो कीर स्टार्मर के पीछे पड़ गए हैं। जी हाँ, आप लोग बोलोगे क्या नाटो वालों ने इनकी भैंस चुरा ली है क्या? वेल, मुझे भी सच में लग रहा है भैंस अंडे कुछ तो चुरा लिया है इनका, क्योंकि जैसे ये पीछे पड़ रहे हैं सारी की सारी नाटो कंट्रीज के, वो साफ दिखा रहा है कि ये बंदा नाटो से बहुत परेशान है। एक दिन बोलता है कि ओके यू नो व्हाट, मैं इतने सारे डॉलर्स, बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर जो है वो खर्चता हूं इटली को प्रोटेक्ट करने के लिए, फ्रांस को प्रोटेक्ट करने के लिए, यूरोप को प्रोटेक्ट करने के लिए, और नाटो हमारा साथ भी नहीं देता। वेल, यहाँ पे मैं इतना जरूर कहूंगी कि हाँ ठीक है, बुरा तो लगता ही है अगर आप बहुत सारा कुछ कर रहे होते हो किसी के लिए भी, किसी इंसान के लिए, किसी कंट्री के लिए, किसी भी के लिए, तो यहाँ पर अगर वो आपका साथ नहीं देते तो आपको बुरा तो लगता है। लेकिन आप खुद सोचिए कि डोनाल्ड ट्रंप इज अ मेनियक, लाइक लिटरली कौन करेगा, और उनका साथ दे के किसी ने अपने ही पीछे रॉकेट लगवाना है क्या? लिटरली, मतलब डोनाल्ड ट्रंप का साथ ना देकर ही नाटो की भलाई है। नाटो ये बहुत पहले ही समझ गया है, अब ऐसे में कीर स्टार्मर के पीछे पड़ गया। सीधा आज ट्वीट करके बोल दिया, यू नो व्हाट, ही इज गोना रिजाइन। जी हाँ, क्योंकि इनसे हो ना पा रहा, इनसे इकोनॉमी नहीं चल रही, इनसे ये नहीं हो रहा, उनसे वो नहीं हो रहा। जी हाँ, पहले इमैनुअल मैक्रो, फिर जॉर्जिया मेलानी, नाउ कीर स्टार्मर। आप लोग बोलोगे कि अगली बारी किसकी है? वेल, पता नहीं, लेकिन एक और बात मैं आपको बता दूं जो कि बहुत ही फनी थी। उन्होंने एक और ट्वीट किया था। अब आप लोग बोलोगे कि निवेश शर्मा, ट्रंप के ट्वीट्स का ना तो अपना एक सीरीज बनना चाहिए। वेल, आई एम इन फॉर इट। मुझे ऐसा लगता है इट विल बी अ वेरी फनी सिचुएशन, एंड इट विल, मतलब ये तो वायरल हो जाएगा। सो वो उसमें लिखते हैं कि यू नो व्हाट, 60 दिन तक हॉर्मुज स्ट्रेट में कोई भी टोल नहीं होगा। जी हाँ, और 60 दिन के बाद भी कोई भी टोल नहीं होगा, अनलेस उसे अमेरिका लगाता है। और वो अमेरिका इसलिए लगाएगा क्योंकि मिडिल ईस्ट की सारी कंट्रियों का गार्डियन एंजल हूं मैं, और मैंने उनका उपकार किया है। तो पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर की जितनी भी कॉस्ट है वो टोल के रूप में अगर वो दे देंगे मुझे, तो कुछ बुराई थोड़ी है। मतलब इतना तो करना ही चाहिए मेरे लिए, मैं कितना बड़ा कल्याणकारी हूं। मतलब मैं जीसस क्राइस्ट के साथ अपने आप की तुलना कर रहा था, पर लोगों ने मुझे बहुत मारा, बट दैट डजंट मीन कि मैं उनसे कम हूं। या एग्जैक्टली, सो वो अपने आप को गार्डियन एंजल कहते हैं, नाटो के पीछे पड़े हुए हैं, और अब वो पता नहीं क्या क्या करने वाले हैं, बट आई वुड से ही इज हाई ऑन मैकडोनल्ड्स। जी हाँ, आई डोंट नो व्हाट ही स्मोक्स, बट या ही डेफिनेटली ईट्स लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ मैकडोनल्ड, और वो मैकडोनल्ड जो है वो असर दिखा रहा है ट्वीट के जरिए। मैं तो कहती हूँ मैकडोनल्ड वालों को बोलो कि इनको देना बंद करें, नहीं तो तुम्हारे पीछे भी पड़ जाएंगे लोग। जी हाँ, यहाँ पर एक और गाना आप सबके लिए मेरी तरफ से।

जी हाँ दोस्तों, इससे क्या सैथ ट्रंप की बातें बहुत सारी हो गई और अब मैं आपको एक बहुत ही जबरदस्त ट्रिप देने वाली हूँ। आप लोग बोलोगे कि हाँ, निव्या शर्मा क्या है वो। चलिए आपको बता दूं, अगर आपको पिकअप लाइन यूज करनी है, बेसिकली आपको किसी को पटाना है, तो पटाने के लिए या तो आपको अच्छा सा गाना डेडिकेट करना पड़ेगा। अगर आप गा लेते हो तो गाइए, अगर आप नहीं गा पाते हो और मेरी तरह गाते हो तो बिल्कुल मत गाना, क्योंकि काम खराब हो सकता है। जी हाँ, लेकिन लेकिन आप किसी को कोई गाना डेडिकेट कर उन्हें वो कर सकते हो। और हाँ, पिकअप लाइन्स तो हमेशा से यूज होती आई है, तो आप वो भी कर सकते हो। सो अगर आप किसी को पटाना चाहते हो तो मैं कहती हूँ ये वाली पिकअप लाइन यूज करके देखिएगा। अगर बात बन गई तो मुझे जरूर बताइएगा, नहीं बनी तो मुझे पीटने मत आइएगा। जी हाँ, सो यहाँ पर जो पिकअप लाइन है वो है, अगर आप किसी से मिलते हो तो सीधा बोल देना, आई डिलीटेड गूगल फ्रॉम माई फोन। और जब वो सामने से पूछेगा या पूछेगी तो बोलेगा वाई, तो आप सामने से बोल देना, बिकॉज द मोमेंट आई सॉ यू माई रिसर्च माई सर्च वॉज ओवर। जी हाँ, अब सामने से अगर वो मोहतरमा है तो वो बहुत ही अच्छे से बोलेंगे ओह रियली, और अगर वो नहीं है मूड में आपकी पिकअप लाइन के तो फिर जो होगा वो मुझे नहीं जानना। लेकिन अगर वो मूड में हुई, अगर उन्हें लगा कि हाँ वो भी इंटरेस्टेड है थोड़ा बहुत और उनको ये पिकअप लाइन अच्छी लगती है, और अगर आपकी बात बन जाती है तो मिठाई मेरे घर भिजवा दीजिएगा, मैं एड्रेस आपको दे दूंगी। ओके जी हाँ, इसी के साथ यहाँ पर एक और गाना आप सबके लिए मेरी तरफ से।

मुझे नहीं पता ऐसा गाना बनाने के लिए कितना रोमांटिक होने की जरूरत है, क्योंकि आप इस गाने को सुनिए, फ्रॉम कॉम्पोजिशन टू लिरिक्स टू गायकी, क्या मैं तारीफ करूं। नो वंडर ये गाना जो है वो सबसे ज्यादा पॉपुलर बना हुआ है। और अगर आप हमारे प्रोग्राम टॉप 10 हॉट 10 को सुनते हैं तब तो आपको पता ही होगा, क्योंकि ये नंबर वन सॉन्ग है पिछले 2 हफ्तों से लगातार, और आगे पता नहीं कितने हफ्तों तक ये नंबर वन बना रहेगा। बट पीपल लव दिस सॉन्ग। बट कॉकटेल 2 भी आ चुकी है, सो गो वॉच इट एंड लेट मी नो आपको कैसी लगी। और इसी के साथ हमारा तो हो गया है वक्त जाने का। कहां निविया शर्मा, अभी कहाँ जाना है? आप यही बोल रहे होंगे कहाँ जाना है, अभी तो वक्त हुआ ही नहीं तुम्हारे जाने का। अरे मतलब ये वाले जोन से दूसरे वाले जोन में जाने का, एंड आई एम टॉकिंग अबाउट वो जोन जो हमारा फेवरेट है, एंड आई एम टॉकिंग अबाउट हमारा फेवरेट सेगमेंट ओल्ड इज गोल्ड। नाउ आई हैव टू से ये सेगमेंट जो है वो आपको पसंद है, हमें पसंद है, और बेसिकली जिसने भी सुना है आज इन तक सबको पसंद है। सो मैं तो बहुत खुश हो जाती हूँ ये सेगमेंट जब मैं आपके लिए लेकर आती हूँ, आप भी खुश हो जाते हो। तो जल्दी से बस खुशी खुशी में ही मजेदार सी पुराने गानों से रिलेटेड फरमाइशें कर दीजिए, क्योंकि दिस इज द परफेक्ट परफेक्ट टाइम। वो पुराने किस्से मैं आपको सुनाऊंगी, पुराने गाने मैं आपको सुनाऊंगी, और उसी में आपका साथ मिल जाए अगर पुराने गानों की फरमाइशों के साथ तो बात बन जाए, राइट। सो ओल्ड इज गोल्ड शुरू हो रहा है। जो गाना मैं आपको सुनाने वाली हूँ सबसे पहला, वो बहुत ही खूबसूरत है, और उसका नाम है ख्वाब हो तुम या कोई हकीकत। आहा, क्या बात है, किशोरदास से शुरुआत हो रही है, कितनी खूबसूरत शुरुआत है, राइट। सुनते हैं इसको और जल्दी से आ जाइए अपनी फरमाइशों के साथ, बस शर्त वही है गाना होना चाहिए पुराना।

दोस्तों कुछ नया करने अगर कोई निकलता है तो उसे कितने सारे चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है ये हमें ही नहीं पता, बल्कि पुरानी एरा में उस एरा में भी लोगों ने इस चीज को देखा है, समझा है, सहा है। जी हाँ, इसी से मैं एक चीज आपको यहाँ पर मंडे है क्योंकि मैं आपको मोटिवेट भी करना चाहती थी और ये किस्सा आपको मोटिवेट भी करेगा और आपको बताएगा भी कि कैसे परेशानियों का सामना बड़े बड़े स्टार्स भी कर चुके हैं उस एरा में। जावेद अख्तर साहब ने ये किस्सा सुनाया था एक कार्यक्रम के दौरान। उन्होंने कहा था कि बहुत वक्त पहले की बात है, मैंने एक कहानी लिखी और वो कहानी मुझे बहुत अच्छी लगी, कुछ नया लिखा था मैंने। और तब जब मैं उस कहानी को लेकर प्रोड्यूसर्स के पास गया तो सिर्फ एक ही प्रोड्यूसर से मुझे जो है वो कॉल आया कि अच्छे से मैं उसको नरेट करूं। जी हाँ, वो कहते हैं कि उस वक्त तो प्रोड्यूसर्स के साथ मिल पाना भी जो है वो बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता था, तो मुझे एक प्रोड्यूसर ने जब हाँ कर दी कि वो मुझसे मिलने के लिए तैयार है तो मैं जल्दी से गया और मैंने उन्हें कहानी पूरी तरह से सुनाई। पहले मैंने उन्हें थोड़ा सा बताया था, फिर मैंने उन्हें पूरी तरह से कहानी सुनाई। उन्होंने कहा कि जब मैं कहानी सुना रहा था तो मुझे सच में लग रहा था कि जो प्रोड्यूसर हैं वो काफ़ी इंटरेस्टेड हैं मेरी कहानी में, क्योंकि उनके एक्सप्रेशन से लग रहा था कि नहीं, उनको मज़ा तो आ रहा है कहानी में। और कहानी नई थी, ऐसा कुछ था नहीं, पहले नया कुछ लिखा था मैंने। बस फिर क्या है, कहानी खत्म होती है और उसके बाद मैं सोच रहा था कि अब क्या होने वाला है, क्योंकि रिस्पॉन्स जो है वो अभी तक बहुत ही ज़्यादा बढ़िया आया है। मतलब एक्सप्रेशन से तो यही लग रहा था कि बात शायद बन सकती है। कहानी खत्म होती है, वो प्रोड्यूसर साहब से पूछते हैं कि ओके सर, तो आपको कैसी लगी कहानी? तो प्रोड्यूसर साहब बोलते हैं, डार्लिंग बाकी सब तो बहुत बढ़िया है, मतलब मैंने कहानी सुनी, बहुत मज़ेदार कहानी है, बट एक रिस्क है बहुत बड़ा। जावेद अख्तर कहते हैं, अच्छा अब बताइए क्या रिस्क है? तो प्रोड्यूसर कहते हैं कि ऐसी कहानी अभी तक किसी पिक्चर में देखी नहीं। तो यहाँ पर प्रोड्यूसर यही कहने की कोशिश कर रहा है कि जो दिख रहा है, जो चल रहा है, उसको चलाने में दिक्कत नहीं होगी, जो ऑलरेडी लोगों को पसंद आ रहा है उसे और आगे पसंद करवाने में दिक्कत नहीं होगी, लेकिन अगर कुछ नया दिखाना है जो कि अच्छा भी है लेकिन वो है नया और लोगों ने देखा नहीं है और क्या पता उन्हें पसंद ना आए, तो उसमें रिस्क है। मूवी चलेगी या नहीं चलेगी, ये रिस्क है। जावेद अख्तर साहब कहते हैं कि ये बात मैंने अपनी गांठ बांध ली, मुझे पता चल गया कि लोगों को क्रिएटिविटी से इतना कोई मतलब नहीं है। जी हाँ, उनको कहानी से इतना कोई मतलब नहीं है, उनको वही करना है जो चल रहा है, जो ऑलरेडी हिट है मार्केट में। अगर आप कुछ नया लेकर जाओगे तो वो रेडी नहीं होंगे इस चीज़ के लिए। लेकिन क्या आपको इस वजह से हार मान जानी है? यही जावेद अख्तर ने कहा। और क्या जावेद अख्तर ने फिर कहानियां अच्छी नहीं लिखी? नहीं, ऑफ कोर्स उन्होंने लिखी। सो दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू से हियर, कि अगर आप किसी चीज के लिए एफर्ट कर रहे हो और आपको लग रहा है कि ओके ये तो नया है, सामने वाले इसके लिए तैयार नहीं है, तो मैं कहती हूँ डटे रहिए, क्योंकि एक ना एक दिन आएगा जब लोग उसके लिए तैयार हो जाएंगे। और क्या मतलब, आप अगर किसी चीज की शुरुआत कर रहे हो, आप किसी मोनोटनी को तोड़ रहे हो, तो इसमें तो आपकी ही बड़ाई है। हाँ, उसमें थोड़े से चैलेंजेस आ सकते हैं, बट आपको सफलता जरूर मिलेगी। यहाँ पर एक और गाना आप सबके लिए मेरी तरफ से।

बिजली का बिल देखकर हर महीने शॉक लगता है क्या? तो अब स्विच करो सोलर पर। रे सोलर पावर के साथ आपके लोकल CEC अप्रूव्ड सोलर एक्सपर्ट्स। घर हो या बिजनेस, हम सब के लिए सोलर पैनल्स, बैटरीज और कमर्शियल सिस्टम्स को सप्लाई और इंस्टॉल करते हैं, ताकि आप बचा सके पैसे और क्लीन एंड रिन्यूएबल एनर्जी से एनवायरमेंट को भी। आपकी लोकल टीम पर भरोसा रखे, रे सोलर पावर का प्रॉमिस है क्वालिटी प्रोडक्ट्स, प्रोफेशनल इंस्टॉलेशन और रियल सेविंग्स। तो अब बिजली का बिल नहीं, सिर्फ सनशाइन मिलेगा। रे सोलर पावर, पावरिंग होम्स, पावरिंग बिजनेसेस, पावरिंग द फ्यूचर। आज ही कॉल करें 0430-525-896, दैट इज 0430-525-896। हमारा ईमेल आईडी है ray@raysolarpower.com.au और वेबसाइट www.raysolarpower.com.au।

0: Excuse me, may I? Some matches are made in heaven and some are made at weddings. Every wedding is special. Think weddings, think Roy Singh. From the grand ballroom to your childhood backyard to a faraway beach, the big day comes in all sizes and styles, and that is why I'm proud that you have trusted me with your civil wedding. And I cannot wait to help you create yours. Contact me, Roy Singh, today on 0411-022-602. 0411-022-602. Or email me at royleendrasingh@gmail.com. Think weddings, think Roy Singh.
1: आप माने या ना माने, बात बिल्कुल सही है। मौत और टैक्स से कोई नहीं बच सकता, लेकिन आपका हुनरदार अकाउंटेंट आपको कम टैक्स भी भरवा सकता है और अधिक टैक्स वापस लौटा भी सकता है। स्मॉल और मीडियम बिजनेस टैक्स अकाउंटिंग, ऑल इनकम टैक्स बेस आदि विषयों में वर्षों के अनुभवी बिजनेस अकाउंटेंट प्रकाश मेनन का जवाब नहीं। प्रॉम्प्ट पर्सनलाइज्ड एंड प्रोफेशनल सर्विस के लिए ऑब्लिगेशन फ्री अपॉइंटमेंट फ्री ऑफ चार्ज रिंग करे प्रकाश मेनन को। फोन 3630-5438, 3630-5438 या मोबाइल 0415-952-660, 0415-952-660।
2: जी हाँ दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्वानी 1701 AM। शो चल रहा है इवनिंग वाइब मेरे यानी आरजे निव्या के साथ। दोस्तों आपने देखा होगा, अभी हम कुछ दिनों से मौसमी चटर्जी जी के बारे में बहुत सारी बातें कर रहे हैं। वेल, रीजन है हमारे पास कि उनकी बातें जो है वो सबसे ज्यादा फनी होती है और उनके मुंह से सारे के सारे किस्से निकल जाते हैं। मतलब ऐसे दूसरे स्टार्स होते हैं ना, वो सारी की सारी बातें नहीं बताते। मौसमी चटर्जी मतलब एकदम अनफिल्टर्ड होकर सब कुछ बता देती है। तो जब उनसे पूछा गया एक कार्यक्रम के दौरान कि मौसमी जी आप हमें ये बताइए कि उस वक्त वो कौन से एक्टर थे जिनको ना डायलॉग्स याद नहीं होते थे, उनको बड़ी प्रॉब्लम होती थी डायलॉग्स याद करने में, तो मौसमी चटर्जी विदाउट मतलब वो एक मिनट का भी पोज नहीं लेती है, एक सेकंड का भी पोज नहीं लेती है। वो कहती है राजेश खन्ना। जी हाँ, अब एक बात तो पक्की है कि काका की फैन फॉलोइंग बहुत सारी है, लेकिन गड़बड़ हिसाब किताब बहुत था। जी हाँ, मतलब लेट वो सेट पे आते थे, डायलॉग्स भी याद नहीं होते थे। जी हाँ, मौसमी चटर्जी बताती हैं कि उनके लिए उनके असिस्टेंट्स को लिटरली स्लेट पर डायलॉग्स लिखने पड़ते थे और कैमरा के सामने खड़ा होना पड़ता था, कैमरा के पीछे खड़ा होना पड़ता था, ताकि वो अपने डायलॉग्स भूल ना जाए, क्योंकि वो अपनी अदायगी दिखाते थे और उतने में ही डायलॉग भूल जाते थे। जी हाँ, ये बताया है मौसमी चटर्जी ने। लेकिन उन्होंने एक और चीज कही, उन्होंने कहा लेकिन अगर मैं बात करूं कि सबसे ज्यादा जल्दी किसको डायलॉग याद हो जाते थे, तो उन्होंने शत्रुघ्न सिन्हा का नाम लिया। जी हाँ, वो बताती है कि शत्रुघ्न सिन्हा का मैंने देखा है कि उनको आप 5 पन्ने का पूरा सीन दे दो, वो 5 मिनट में याद करके आ जाएंगे, उनको कभी भी कोई चीज नहीं भूलती। जब उनसे पूछा गया कि आपको सबसे ज्यादा स्टाइलिश बंदा कौन लगता था, तो उन्होंने कहा कि मुझे लगता था फिरोज खान। अब आप लोग भी अग्री करोगे और मैं भी कहीं ना कहीं अग्री करूंगी कि फिरोज खान वॉज रियली रियली रियली यू नो वेरी वेरी स्टाइलिश। और दूसरी चीज उन्होंने कहा, दूसरा व्यक्ति का जब नाम लिया, उससे तो मैं खुद भी अग्री कर रही थी और इसके बारे में मैं पहले भी बात कर चुकी हूँ कि शशि कपूर के बारे में काफ़ी लेडीज़ ने कहा है कि वो बहुत ज़्यादा स्टाइलिश थे और इसमें मौसमी चटर्जी भी शामिल थी। उन्होंने कहा अगर फिजिक के बारे में बात करूं तो विनोद खन्ना वॉज वेरी वेरी हैंडसम। और एक चीज़ जो उन्होंने कही जो कि बहुत ही फनी थी और मुझे उसके बारे में बोलना है, वो ये थी कि पहले के जो हीरो थे ना, उनको देख के लगता था कि वो हीरो है। आजकल तो पता ही नहीं चलता कौन है हीरो कौन है हीरोइन। आप एकदम बैठे होंगे, आप बोलोगे कि पिक्चर चल रही है, कौन है हीरोइन कौन है हीरोइन, और जब सामने वाला बोलेगा कि ओ साइड में ही बैठी है, ओ ये है हीरोइन, या क्योंकि अब वो चीज़ पता नहीं चलती। एंड बहुत सारे लोग इस बात से एग्री करते हैं, पहले के हीरो चाहे मनोज कुमार हो, शशि कपूर हो, दिलीप कुमार हो, यू नो अमिताभ बच्चन और ये जितेंद्र, इन हीरोज को देख के ही लगता था कि ना ये हीरो है भाई, ये हीरो, किसी को बताना नहीं पड़ता था कि ये हीरो है, लेकिन अब वो चीज नहीं है। सो या आई गेस पुरानी एरा अपने आप में जबरदस्त थी और उसको कोई भी बीट नहीं कर सकता। इसी के साथ आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे अब आपसे कल, तब तक के लिए सुनते रहिए रेडियो ब्रिस्वानी 1701 AM और हेल्दी रहिए, हैप्पी रहिए, मुस्कुराते रहिए, गाते रहिए, खाते रहिए। अब ये गाना आप सबके लिए आखिरी गाना इस प्रोग्राम का, और वो है जाने बहार हुस्न तेरा बेमिसाल है। क्या बात है, अब किशोर दास से शुरुआत हुई थी तो रफी दास से तो एंडिंग होनी चाहिए शो की, राइट? मतलब ऐसे कैसे बात बनेगी नहीं तो। बाय, सी यू, टाटा, मिलते हैं आपसे कल।

फैशन का जब भी जिक्र होता है तो लोग रानी क्रिएशंस को याद करते हैं, क्योंकि रानी क्रिएशन में सभी कुछ उपलब्ध है। यू गेट मेंस एंड लेडीज वेडिंग सूट्स एंड एक्सेसरीज, टॉप क्वालिटी डिजाइनर साड़ीज, लहंगा, सलवार कमीज, पार्टी वेयर एंड मेन शर्ट्स एंड सूट्स। यू कैन ऑल्सो ऑर्डर टेलर मेड सूट्स फ्रॉम रानी क्रिएशंस। इतना ही नहीं, ओरिजिनल डीवीडी, सीडीज, फोन कार्ड्स, प्रीपेड चार्ज कार्ड्स, फैंसी ज्वेलरी, बैंगल्स, गिफ्ट वेयर भी उपलब्ध है। फॉर टॉप क्वालिटी बॉलीवुड फैशंस विजिट रानी क्रिएशंस एट 33 बलक्लावा स्ट्रीट, वुलन गैबा, ओपन डेली फ्रॉम 9 AM। टेलीफोन रानी क्रिएशंस ऑन 3391-0622 और विजिट देयर वेब पेज ranicreations.com। द वन स्टॉप बॉलीवुड फैशन एंड एंटरटेनमेंट स्टोर, वेल नोन फॉर इट्स क्वालिटी, सर्विस एंड रीजनेबल प्राइसेस।

आप माने या ना माने, बात बिल्कुल सही है। मौत और टैक्स से कोई नहीं बच सकता, लेकिन आपका हुनरदार अकाउंटेंट आपको कम टैक्स भी भरवा सकता है और अधिक टैक्स वापस लौटा भी सकता है। स्मॉल और मीडियम बिजनेस टैक्स अकाउंटिंग, ऑल इनकम टैक्स बेस आदि विषयों में वर्षों के अनुभवी बिजनेस अकाउंटेंट प्रकाश मेनन का जवाब नहीं। प्रॉम्प्ट पर्सनलाइज्ड एंड प्रोफेशनल सर्विस के लिए ऑब्लिगेशन फ्री अपॉइंटमेंट फ्री ऑफ चार्ज रिंग करें प्रकाश मेनन को। फोन 3630-5438 3630-5438 या मोबाइल 0415-952-660 0415-952-660

0: ये तुम कहाँ ले जा रही हो? ये ग्रोसरी पास वाले शॉप से ले सकते हैं ना?
1: यस बेबी, बट नो कॉम्प्रोमाइज विद क्वालिटी एंड हेल्थ। हम जाएंगे सिर्फ MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड।
0: ऐसा क्या खास है वहाँ?
1: सब कुछ, क्वालिटी स्पाइसेस, लेंटिल्स, राइस, फ्लावर और फ्रोजन सब्जी फ्रॉम फिजी एंड इंडिया। ब्रिस्बेन के बेस्ट इंडियन बुचर सप्लाइंग फार्म फ्रेश गोट, लैम्ब, चिकन एंड डक और फ्रेश लोकल प्रोड्यूस भी रखते हैं। साथ ही किचनवेयर एंड डिस्पोजेबल प्लेट्स की लार्ज रेंज किसी भी फंक्शन के लिए।
0: अरे वाह, इंटेलिजेंट हो गई हो।
1: MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड, सर्विंग ब्रिस्बेन सिंस 1999, ओपन 7 डेज। फाइंड अस ऑन फेसबुक और विजिट वेबसाइट mcsfoods.com.au। 1/268 किंगस्टन रोड, स्लैक्स क्रीक, फोन नंबर 3804-3818। दैट्स 3804-3818।

0: नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्वानी 1701 AM। मैं हूं निव्या शर्मा और स्वागत है आपका आज के न्यूज बुलेटिन में। सबसे पहले शुरुआत हमेशा की तरह ब्रिस्बेन की कुछ खास खबरों के साथ। ब्रिस्बेन में घरों की कमी और जोनिंग पर नया रिसर्च। जी हां, ग्रिफिथ यूनिवर्सिटी की एक नई रिसर्च में सामने आया है कि ब्रिस्बेन में अपार्टमेंट्स और टाउन हाउस बनाने के लिए जो जोनिंग की गई थी उनमें से लगभग आधी जमीनें साइज में बहुत छोटी हैं। नियम के मुताबिक 600 स्क्वायर मीटर की जगह चाहिए जबकि ज्यादातर प्लॉट 400 स्क्वायर मीटर के हैं। इसके साथ ब्रिस्बेन हार्नेस रेसिंग के लिए विक्टोरियाई घोड़ा का आगमन। जी हाँ, ब्रिस्बेन के एल्बियन पार्क में अगले महीने होने वाले बड़े हार्नेस रेसिंग इवेंट के लिए विक्टोरिया के मशहूर ओनर डैनी जविट्सानोस अपने 9 बेहतरीन घोड़ों की टीम के साथ ब्रिस्बेन आ रहे हैं। इस हफ्ते बुधवार और शनिवार को ट्रकों के जरिए उनके टॉप घोड़े ब्रिस्बेन पहुंच रहे हैं। इसी के साथ विंटर स्कूल हॉलीडे के लिए ब्रिस्बेन में खास इवेंट्स। चूंकि जून का महीना चल रहा है और विंटर स्कूल हॉलीडेज नजदीक हैं, ब्रिस्बेन सिटी काउंसिल ने बच्चों और परिवारों के लिए शहर के अलग अलग पार्कों में विंटर फेस्टिवल्स और आउटडोर एक्टिविटीज की लिस्ट जारी की है। वहीं ब्रिस्बेन में पब्लिक ट्रांसपोर्ट और बसों के रूट में बदलाव। ब्रिस्बेन के डेली कम्यूटर्स के लिए एक जरूरी अपडेट। शहर के कुछ हिस्सों में चल रहे कंस्ट्रक्शन वर्क की वजह से आज से कुछ मुख्य बस रूट्स और उनके समय में बदलाव किया गया है। अगर आप आज सफर कर रहे हैं तो घर से निकलने से पहले ट्रांसलिंक ऐप पर नया शेड्यूल जरूर चेक कर लें। वहीं ब्रिस्बेन का आज का मौसम बहुत ही खूबसूरत रहा। दिन में आसमान बिल्कुल साफ रहा और धूप भी खिली रही। जी हाँ, 21 से 22 डिग्री सेल्सियस के बीच में तापमान रहा और परसों ये और भी अच्छा होने वाला है। मतलब कल थोड़े बहुत बादल होंगे, ऑल्दो ऐसा ही मौसम रहेगा जितना कि मौसम और वेदर स्ट्रीमिंग साइट्स बता रही हैं। अब यहां पर वेडनेसडे को और भी खूबसूरत मौसम आपको देखने को मिलेगा। इसी के साथ अब चलते हैं सीधा भारत की कुछ महत्वपूर्ण खबरों की तरफ। सबसे पहले नीट रीटेस्ट का नतीजा और अगला कदम। शुरुआत करते हैं देश की सबसे बड़ी खबर से। नीट परीक्षा को लेकर जो विवाद चल रहा था उसमें रीटेस्ट के बाद आज सरकार और शिक्षा मंत्रालय की एक हाई लेवल मीटिंग होने जा रही है। इसी के साथ राम मंदिर फंड मामले में SIT की जांच तेज। अयोध्या से एक बड़ी खबर आ रही है। राम मंदिर के फंड और चढ़ावे में गड़बड़ी के आरोपों को लेकर बनाई गई SIT यानी स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम ने अपनी जांच तेज कर दी है। टीम ने मंदिर ट्रस्ट और वहां के कुछ अधिकारियों को फिलहाल अयोध्या से बाहर न जाने के निर्देश दिए हैं। वहीं तमिलनाडु में आवारा कुत्तों को लेकर हाई कोर्ट सख्त। मद्रास हाई कोर्ट ने आज तमिलनाडु और पुडुचेरी में आवारा कुत्तों से लोगों को बचाने के लिए एक कड़ा रुख अपनाया है। कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के पुराने आदेशों की सख्ती से लागू करने के लिए आज एक खास सुनवाई रखी है। वहीं क्रूड ऑयल की रिकॉर्ड खरीदारी। भारत ने इस महीने यानी जून में रूस और UAE से रिकॉर्ड मात्रा में कच्चे तेल की खरीदारी की। एक्सपर्ट्स का कहना है कि मिडल ईस्ट में चल रहे तनाव के बीच भारत ने अपनी एनर्जी सिक्योरिटी को मजबूत करने के लिए ये कदम उठाया है। वहीं CBSE क्लास 12 रीवैल्यूएशन के नतीजे भी जारी हो गए हैं। इसके साथ अब जरा चलते हैं सीधा अंतर्राष्ट्रीय खबरों की तरफ। सबसे पहले अमेरिका और ईरान के बीच ऐतिहासिक शांति समझौता वार्ता। इंटरनेशनल खबरों की बात करें तो स्विट्जरलैंड के वर्गनस्टॉक रिजॉर्ट में अमेरिका और ईरान के बीच चल रही हाई लेवल बातचीत आज दूसरे दिन भी जारी रही। दोनों देशों के बीच युद्ध को पूरी तरह खत्म करने और लेबनान में सीज फायर बनाए रखने के लिए एक रोड मैप तैयार कर लिया गया है। वहीं कतर की फैक्ट्री में बड़ा धमाका। कतर के रास लफान इंडस्ट्रियल सिटी से एक दुखद खबर है जहां एक फैक्ट्री में तकनीकी खराबी की वजह से भीषण ब्लास्ट हुआ है। इसके साथ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में कतर के जहाजों की एंट्री। इसी बीच कतर ने अपने 4 बड़े गैस टैंकर जहाजों को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के समुद्री रास्तों से आगे रवाना कर दिया है। हालांकि इस इलाके में तनाव की वजह से बाकी देशों के जहाजों की आवाजाही थोड़ी कम हुई है। वहीं कांगो में इबोला वायरस का खतरा बढ़ा। अफ्रीकी देश डेमोक्रेटिक रिपब्लिकन ऑफ कांगो में इबोला वायरस का प्रकोप एक बार फिर तेजी से फैल रहा है। स्वास्थ्य अधिकारियों के मुताबिक वहां कन्फर्म मामलों की संख्या अब 1000 के पार पहुंच चुकी है। वहीं बांग्लादेश पीएम का पहला विदेशी दौरा। बांग्लादेश के में फरवरी में हुए चुनावों को जीतने के बाद वहां के प्रधानमंत्री तारिक रहमान अपनी पहली आधिकारिक यात्रा पर मलेशिया पहुंच चुके हैं। इस दौरे पर दोनों देशों के बीच ट्रेड, लेबर और रोहिंग्या शरणार्थियों के मुद्दे पर बेहद अहम समझौता होने की उम्मीद है। ऐसे के साथ जर्मनी ने टोल टैक्स सिस्टम को लेकर दी चेतावनी। जर्मनी के विदेश मंत्री ने एक बड़ा बयान देते हुए कहा है कि अमेरिका ईरान युद्ध के खत्म होने के बाद स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज वाले समुद्री रास्ते पर किसी भी तरह का नया टोल टैक्स या फीस सिस्टम लागू नहीं किया जाना चाहिए। ऐसे के साथ अब जरा चलते हैं सीधा खेल समाचारों की तरफ। सबसे पहले फीफा वर्ल्ड कप 2026 स्पेन की शानदार जीत। रुक करते हैं खेल की दुनिया का, जहां फीफा वर्ल्ड कप 2026 का रोमांच चरम पर है। अटलांटा स्टेडियम में खेले गए ग्रुप एच के एक बड़े मुकाबले में स्पेन ने सऊदी अरब को 4-0 से बुरी तरह हरा दिया। वहीं फीफा वर्ल्ड कप 2026 बेल्जियम और ईरान का मैच ड्रॉ। वर्ल्ड कप के ही एक और दिलचस्प मुकाबले में लॉस एंजलिस स्टेडियम में बेल्जियम और ईरान के बीच का मैच 0-0 से ड्रॉ रहा। वहीं विमेंस T20 वर्ल्ड कप साउथ अफ्रीका ने भारत को हराया। जी हां, क्रिकेट की बात करें तो विमेंस T20 वर्ल्ड कप में भारत को एक बड़ा झटका लगा है। साउथ अफ्रीका की ऑलराउंडर मारिजाने कैप की शानदार पारी के बदौलत साउथ अफ्रीका ने भारत को हरा दिया। वहीं वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप स्लो ओवर रेट के लिए इंग्लैंड पर भारी जुर्माना। आईसीसी ने इंग्लैंड की मेंस टीम पर एक बड़ी कार्रवाई की है। न्यूजीलैंड के खिलाफ दूसरे टेस्ट में मैच में स्लो ओवर यानी तय समय से कम ओवर फेंकने के लिए इंग्लैंड पर मैच की फीस का 50% जुर्माना लगाया गया है। इसी के साथ हॉकी भारतीय टीम ने ओलंपिक चैंपियन नीदरलैंड्स को चटाई धूल। जी हां, भारतीय हॉकी फैंस के लिए एक बेहद गर्व की बात है। अपने कप्तान हरमनप्रीत की गैर मौजूदगी में भी भारतीय मेंस हॉकी टीम ने कमाल कर दिया। इसी के साथ आज के लिए बस इतना ही। मिलेंगे अब आपसे कल, तब तक के लिए सुनते रहिए रेडियो ब्रिस्वानी 1701 AM।
1: अर्न मनी फ्रॉम योर एम्प्टी ड्रिंक कंटेनर्स विद कंटेनर्स फॉर चेंज। Your empty eligible cans, bottles and cartons receive a 10 cents refund each. We call it bin coin. Save, spend or donate your bin coin to a cause you support. There's a Containers for Change near you. Bank it, don't bin it. Visit the website to find your nearest refund point and start trading for 10 cents today. Containers for Change के माध्यम से अपने खाली डिब्बे बोतलों से धनराशि कमाएं। आपके प्रत्येक योग्य खाली कैन, बोतल और कार्टन पर 10 सेंट का रिफंड प्राप्त होता है। इसे हम बिन कॉइन कहते हैं। अपने बिन कॉइन की बचत करके रखें, खर्च करें या जिस उद्देश्य में आपका विश्वास है उसमें दान करें। आपके नजदीक कहीं एक कंटेनर्स फॉर चेंज मौजूद है, बैंक में डालें ना कि कूड़ेदान में। अपना सबसे नजदीकी रिफंड पॉइंट ढूंढने के लिए वेबसाइट पर जाएं और आज ही 10 सेंट कमाना शुरू करें।
2: कंटेनर्स फॉर चेंज राही अपने खाली डब्बिया बोतलों तो कमाई करो। तुहाडे हर एक योग खाली कैन, बोतल अते कार्टन उते 10 सेंट दा रिफंड प्राप्त हुंदा है। इसनू असी बिन कॉइन कहंदे हां। अपने बिन कॉइन नू बचा के रखो, खर्चो जां फिर जिस किसे संस्था जां विषय विच तुहाडा विश्वास है उन्हां नू दान विच दे दियो। तुहाडे नेड़े एक कंटेनर्स फॉर चेंज मौजूद है, बैंक विच पाओ ना के कूड़ेदान विच। अपना सब तो नजदीकी रिफंड पॉइंट लभण लई वैबसाइट उते जाओ अते अज ही 10 सेंट कमाना शुरू करो। वधेरे किफायती रिहायश की शुरुआत वधेरे घरां दी उपलब्धता नाल हुंदी है। इसे लई नवीं क्वींसलैंड सरकार सूबे भर विच 98,000 तों वी वध नवे घरां दे निर्माण दा राह खोल रही है। असीं होर घर जल्दी बनाउण लई बुनियादी ढांचे विच $2 बिलियन दा निवेश कर रहे हां। असीं रिहायश लई 4100 हेक्टेयर तों वध जमीन उपलब्ध करवा दित्ती है अते लोड़वंदां लई 53,500 समाजिक अते कम्युनिटी घर मुहैया करवा रहे हां। इस तो अलावा होर भी योजनावां तैयार हन। अ प्लेस टू कॉल होम खोजो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारत। ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन। ਨਵੀਂ ਕੁਈਨਜ਼ਲੈਂਡ ਸਰਕਾਰ 4000 ਹੈਕਟੇਅਰ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਜ਼ਮੀਨ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਲਈ 53,500 ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਘਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅ ਪਲੇਸ ਟੂ ਕਾਲ ਹੋਮ ਖੋਜੋ। ਕੁਈਨਜ਼ਲੈਂਡ ਸਰਕਾਰ ਬ੍ਰਿਸਬੇਨ ਵੱਲੋਂ ਅਧਿਕਾਰਤ, ਆਥੋਰਾਈਜ਼ਡ ਬਾਈ ਦਾ ਕੁਈਨਜ਼ਲੈਂਡ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਬ੍ਰਿਸਬੇਨ। ਵਧੇਰੇ ਕਿਫਾਇਤੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਧੇਰੇ ਘਰਾਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਨਵੀਂ ਕੁਈਨਜ਼ਲੈਂਡ ਸਰਕਾਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ $2 ਬਿਲੀਅਨ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕੁਈਨਜ਼ਲੈਂਡ ਭਰ ਵਿੱਚ 98,000 ਨਵੇਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦਾ ਰਾਹ ਖੋਲਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਅ ਪਲੇਸ ਟੂ ਕਾਲ ਹੋਮ ਖੋਜੋ। ਕੁਈਨਜ਼ਲੈਂਡ ਸਰਕਾਰ ਬ੍ਰਿਸਬੇਨ ਵੱਲੋਂ ਅਧਿਕਾਰਤ, ਆਥੋਰਾਈਜ਼ਡ ਬਾਈ ਦਾ ਕੁਈਨਜ਼ਲੈਂਡ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਬ੍ਰਿਸਬੇਨ।

0: अनुज कोई अच्छा सा लॉयर सजेस्ट करो ना, ऐसा जो मेरी सारी बात ढंग से सुने समझे और फिर मेरे तरीके से मुझे समझाए।
1: अर्शाद लॉयर्स है तुम्हारी प्रॉब्लम का सलूशन। कमर्शियल मैटर हो जैसे लीज का मामला, बिजनेस हो या फिर घरों की बाइंग सेलिंग का मामला, और डिवोर्स जैसे फैमिली मैटर्स भी, वो सब में मदद कर सकती हैं। और फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अदालत तक तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। अभी फोन करो 0420-933-171 पर और 15 मिनट का फ्री फोन कंसल्टेशन ले लो।
0: अरे वाह, इनका पता बताना।
1: अर्शाद लॉयर्स, माउंट ग्रेविट शोग्राउंड्स, ऑफिस 5, 1644 लोगन रोड, माउंट ग्रेविट, एम्पल पार्किंग। कॉल अर्शाद फ्रॉम अर्शाद लॉयर्स नाउ ऑन 0420-933-171। वेबसाइट www.arshadlawyers.com। We pride ourselves in providing excellent service.

0: यार राहुल, तेरे केस का क्या हुआ?
1: यार I'm so worried. Actually want an experienced lawyer to handle my case.
0: मेरी एडवाइस है, go for the best. अतुल भारद्वाज जी है ना, उनके पास 12 साल से ज्यादा का वास्ट एक्सपीरियंस है और लॉ की एंट्री केसेस को हैंडल करने में उनकी एक्सपर्टीज है. क्रिमिनल लॉ, डोमेस्टिक ऑफेंस, ट्रैफिक ड्रग ऑफेंस में 12 साल से ज्यादा का रिच एक्सपीरियंस, और तो और कन्वेयंस, फैमिली लॉ, इमिग्रेशन लॉज में भी भारद्वाज एंड एसोसिएट्स के लॉयर्स का वास्ट एक्सपीरियंस है. एंड द बेस्ट पॉइंट, दे अंडरस्टैंड द स्ट्रेस दैट यू गो थ्रू एंड वर्क इफेक्टिवली टू मिनिमाइज इट.
1: थैंक्स अटनिया, आई एम सो रिलैक्स्ड टू हियर दैट.
0: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Contact Atul now on 0400-234-235. That is 0400-234-235.
2: एक लड़की थी दीवानी सी, एक लड़के पे वो मरती थी, नजरें झुका के शर्मा के गलियों से गुजरती थी, चोरी चोरी चुपके चुपके चिट्ठियां लिखा करती थी. कुछ कहना था शायद उसको, जाने किससे डरती थी. जब भी मिलती थी मुझसे, मुझसे पूछा करती थी, प्यार कैसे होता है, ये प्यार कैसे होता है. और मैं सिर्फ यही कह पाता था.

0: Hi, this is Amitabh Bachchan.
1: और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
2: Hi guys, I'm Manmeet from the Meet Brothers. आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
3: Hi, this is Salman Khan.
4: और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
5: Hi, this is Deepika Padukone. और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
6: To everyone tuning into Radio Briswani, this is Alia.
7: Hi, मैं हूँ Tulsi Kumar और आप मुझे सुन रहे हैं Radio Briswani से.
8: To everyone tuning into Radio Briswani, this is Shahrukh Khan.
9: Hi, this is Ajay Devgan और आप सुन रहे हैं Radio Briswani.

आसान हो। दिल को चुराने वालों आंख न चुराओ, नाम तो बताओ, जान पहचान हो, जीना आसान हो।

मेरा नाम डॉक्टर कुमार है और यहाँ कुछ ऐसा है जिसे जानना अच्छा है। एक नया नेशनल लंग कैंसर स्क्रीनिंग प्रोग्राम शुरू हुआ है। ये सरल है, निशुल्क है और ये लक्षणों के सामने आने से पहले ही लंग कैंसर का पता लगा सकता है। यदि आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो हो सकता है कि आप ये सोचें कि बहुत देर हो चुकी है या इसके बारे में ना जानना ही बेहतर है। लेकिन क्या आपको पता है कि फेफड़ों के कैंसर की शुरुआत में पता लगाए गए 65% से अधिक मामलों का सफलतापूर्वक इलाज किया जा सकता है। यदि आप 50 से 70 वर्ष की आयु के हैं और आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो अपने डॉक्टर से बात करें या lungcancerscreen.org.au पर जाएं।

0: बनो।
1: प्रिया, नेक्स्ट मंथ मामा का बर्थडे है, सोच रही हूँ उनको फॉरेन एक्सचेंज के थ्रू न्यूजीलैंड मनी भेज दूँ, जिससे वो अपनी पसंद का गिफ्ट ले लेंगे।
2: ये तो बहुत अच्छा आइडिया है, मेरे पास एक अच्छा ऑप्शन भी है मनी ट्रांसफर करने का।
1: अच्छा, वो क्या?
2: अब तुम घर बैठे न्यूजीलैंड या फिजी में भी मनी भेज सकती हो लोटस फॉरेन एक्सचेंज की हेल्प से ऑनलाइन, और वो भी फ्री में।
1: लेकिन मामा के लिए मनी लेने कहीं दूर जाना पॉसिबल नहीं होगा।
2: अरे, रिसीवर्स अब कैश पिकअप, बैंक ट्रांसफर या मोबाइल वॉलेट में भी ले सकते हैं मनी। डाउनलोड

0: यार सब ठीक है, बस मम्मी पापा इंडिया में अकेला फील करते हैं। अनऑर्गेनाइज्ड हेल्पर्स पे भरोसा भी नहीं होता। कल को इमरजेंसी हो जाए तो?
1: तूने ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग के बारे में सुना है? गुरुग्राम में है प्रोफेशनल सीनियर लिविंग, 24/7 नर्सिंग और डॉक्टर्स के स्ट्रॉन्ग टाई-अप्स के साथ। फोर्टिस, मेडांटा, सीके बिरला, आर्टेमिस, सब अच्छे हॉस्पिटल्स पास ही हैं।
0: सीरियसली? मतलब प्रॉपर केयर और मुझे यहाँ भी पीस ऑफ माइंड?
1: बिल्कुल, ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, ऑस्ट्रेलियन ओन्ड सीनियर लिविंग इन गुरुग्राम इंडिया। ऑस्ट्रेलियन स्टैंडर्ड्स की प्रोफेशनलिज्म, एक्सपीरियंस टीम और ट्रस्टेड अल्टरनेटिव टू अनऑर्गेनाइज्ड अनरिलायबल होम हेल्पर्स। अपने पेरेंट्स के लिए सेफ डिग्निफाइड केयर चाहिए? ओम्स ऑर्ग, स्पेल्ड OMSORG। वेबसाइट omsorg.co.in। व्हाट्सएप या कॉल कीजिए इंडिया नंबर 844-838-1360। ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, जहां केयर का मतलब है रियल केयर।

0: भाई मम्मी पापा की तबीयत की बहुत टेंशन रहती है यार। हम यहाँ ब्रिस्बेन में और वो इंडिया में अकेले हैं।
1: तो ओमसॉक से बात कर, इंडिया में एल्डर्स और दिव्यांगनों के लिए इन होम केयर देते हैं एकदम प्रोफेशनल तरीके से।
0: हाँ, लेकिन भरोसा कैसे करूं?
1: अरे ओमसॉक एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी मैपल केयर की सब्सिडियरी है और मैपल केयर NDIS का रजिस्टर्ड प्रोवाइडर है।
0: अच्छा, मतलब स्टैंडर्ड और रिस्क मैनेजमेंट भी ऑस्ट्रेलिया जैसा?
1: बिल्कुल, खाना, दवाई, हेल्थ चेक, सब कुछ जैसे आप खुद देख रहे हो।
0: फिर तो आज ही वेबसाइट देखनी पड़ेगी।
1: उनकी वेबसाइट www.omsorg.co.in है। भारत में नंबर +91 8448 381 360 है और ऑस्ट्रेलिया में 0470 631 801। प्यार और देखभाल की कोई दूरी नहीं होती भाई। ओमसॉक, केयरिंग विद डिग्निटी।

क्या आपकी शादी होने वाली है? तो आज ही फोन कीजिए कॉमनवेल्थ सिविल मैरिज सेलिब्रेंट परमानंद को 04111270355 पर, या फिर उनसे मिलिए लेवल 133 बालाक्लावा स्ट्रीट वोलोंगाबा में। फॉर वेडिंग्स, एंगेजमेंट्स, रिन्यूअल ऑफ वाउज और कमिटमेंट सेरेमनीज घर पर, हॉल या पार्क में, बुक विद परमानंद। कॉल नाउ ऑन 04111270355। रिमेम्बर द नंबर इज 04111270355, या फिर ईमेल करें permanand@optusnet.com.au पर। फॉर बेस्ट सर्विस, कंप्लीट लीगल पेपर वर्क, मैरिज सर्टिफिकेट एंड अ मेमोरेबल मैरिज सेरेमनी, रिमेम्बर द नेम परमानंद, योर प्रोफेशनल एंड फ्रेंडली सिविल मैरिज सेलिब्रेंट सिंस 2003।

0: यार साग में कुछ दम नहीं है, बिल्कुल मजा नहीं आया।
1: किसी दिन घर आना, असली देसी घी में साग बनाकर खिलाऊंगा तुम्हें।
0: कहाँ यार, आजकल असली देसी घी मिलते कहाँ है?
1: किस दुनिया में हो भाई, क्वालिटी फूड सर्विस में ट्रिपल रिफाइंड प्योर देसी घी मिलते हैं। ऑस्ट्रेलिया में ही बनते हैं, 100% प्योर क्रीम से, 99.9% प्योर मिल्क फैट से, और तो और हर मौसम में उपलब्ध रहने के साथ साथ हाई क्वालिटी पैकेजिंग में भी आते हैं।
0: मुझे तो पता ही नहीं था। अच्छा ये बताओ मैं कहाँ से खरीद सकता हूँ?
1: लगभग सभी इंडियन आउटलेट से तुम पीवा देसी घी ले सकते हो।
2: पीवा देसी घी सिंह डेयरी द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है, बिल्कुल ओरिजिनल और कलरलेस। और इन्फो के लिए आज ही कॉल करें मोबाइल नंबर 0400664435 पर, याद रहे 0400664435 पर, या फिर ईमेल करें singdairy@gmail.com पर।
3: मेरी पत्नी सभी घी ट्राई कर चुकी है और जब से वो पीवा देसी घी इस्तेमाल करने लगी है, सारे घर में घी की खुशबू फैल जाती है।

फैशन का जब भी जिक्र होता है तो लोग रानी क्रिएशंस को याद करते हैं, क्योंकि रानी क्रिएशन में सभी कुछ उपलब्ध है। यू गेट मेंस एंड लेडीज वेडिंग सूट्स एंड एक्सेसरीज, टॉप क्वालिटी डिजाइनर साड़ीज, लहंगा, सलवार कमीज, पार्टी वेयर एंड मेन शर्ट्स एंड सूट्स। यू कैन ऑल्सो ऑर्डर टेलर मेड सूट्स फ्रॉम रानी क्रिएशंस। इतना ही नहीं, ओरिजिनल डीवीडी, सीडीज, फोन कार्ड्स, प्रीपेड चार्ज कार्ड्स, फैंसी ज्वेलरी, बैंगल्स, गिफ्टवेयर भी उपलब्ध है। फॉर टॉप क्वालिटी बॉलीवुड फैशन विजिट रानी क्रिएशंस एट 33

बिजली का बिल देखकर हर महीने शॉक लगता है क्या? तो अब स्विच करो सोलर पर। ब्रे सोलर पावर के साथ आपके लोकल CEC अप्रूव्ड सोलर एक्सपर्ट्स। घर हो या बिजनेस, हम सब के लिए सोलर पैनल्स, बैटरीज और कमर्शियल सिस्टम्स को सप्लाई और इंस्टॉल करते हैं, ताकि आप बचा सके पैसे और क्लीन एंड रिन्यूएबल एनर्जी से एनवायरमेंट को भी। आपकी लोकल टीम पर भरोसा रखे। ब्रे सोलर पावर का प्रॉमिस है क्वालिटी प्रोडक्ट्स, प्रोफेशनल इंस्टॉलेशन और रियल सेविंग्स। तो अब बिजली का बिल नहीं, सिर्फ सनशाइन मिलेगा। रे सोलर पावर, पावरिंग होम्स, पावरिंग बिजनेसेस, पावरिंग द फ्यूचर। आज ही कॉल करें 0430-525-896, दैट इज 0430-525-896। हमारा ईमेल आईडी है ray@raysolarpower.com.au और वेबसाइट www.raysolarpower.com.au।

0: Some matches are made in heaven and some are made at weddings. Every wedding is special. Think weddings, think Roy Singh. From the grand ballroom to your childhood backyard to a faraway beach, the big day comes in all sizes and styles, and that is why I'm proud that you have trusted me with your civil wedding, and I cannot wait to help you create yours. Contact me, Roy Singh, today on 0411-022-602, 0411-022-602, or email me at roylindrasingh@gmail.com. Think weddings, think Roy Singh.
1: आप माने या ना माने, बात बिल्कुल सही है। मौत और टैक्स से कोई नहीं बच सकता, लेकिन आपका हुनरदार अकाउंटेंट आपको कम टैक्स भी भरवा सकता है और अधिक टैक्स वापस लौटा भी सकता है। स्मॉल और मीडियम बिजनेस टैक्स अकाउंटिंग, ऑल इनकम टैक्स बेस आदि विषयों में वर्षों के अनुभवी बिजनेस अकाउंटेंट प्रकाश मेनन का जवाब नहीं। प्रॉम्प्ट पर्सनलाइज्ड एंड प्रोफेशनल सर्विस के लिए ऑब्लिगेशन फ्री अपॉइंटमेंट फ्री ऑफ चार्ज रिंग करें प्रकाश मेनन को। फोन 3630-5438 या मोबाइल 0415-952-660 0415-952-660।

0: हनी, ये तुम कहाँ ले जा रही हो? ये ग्रोसरी पास वाले शॉप से ले सकते हैं ना?
1: यस बेबी, बट नो कॉम्प्रोमाइज विद क्वालिटी एंड हेल्थ। हम जाएंगे सिर्फ MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड।
0: ऐसा क्या खास है वहाँ?
1: सब कुछ, क्वालिटी स्पाइसेस, लेंटिल्स, राइस, फ्लावर और फ्रोजन सब्जी फ्रॉम फिजी एंड इंडिया। ब्रिस्बेन के बेस्ट इंडियन बुचर सप्लाइंग फार्म फ्रेश गोट, लैम्ब, चिकन एंड डक और फ्रेश लोकल प्रोड्यूस भी रखते हैं। साथ ही किचनवेयर एंड डिस्पोजेबल प्लेट्स की लार्ज रेंज किसी भी फंक्शन के लिए।
0: अरे वाह, इंटेलिजेंट हो गई हो।
1: MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड, सर्विंग ब्रिस्बेन सिंस 1999, ओपन 7 डेज। फाइंड अस ऑन फेसबुक और विजिट वेबसाइट mcsfoods.com.au। 1/268 किंगस्टन रोड, स्लैक्स क्रीक, फोन नंबर 3804-3818। दैट्स 3804-3818।

Earn money from your empty drink containers with Containers for Change. Your empty eligible cans, bottles and cartons receive a 10 cents refund each. We call it Bin Coin. Save, spend or donate your Bin Coin to a cause you support. There's a Containers for Change near you. Bank it, don't bin it. Visit the website to find your nearest refund point and start trading for 10 cents today. कंटेनर्स फॉर चेंज के माध्यम से अपने खाली डिब्बे बोतलों से धनराशि कमाएं। आपके प्रत्येक योग्य खाली कैन बोतल और कार्टन पर 10 सेंट का रिफंड प्राप्त होता है। इसे हम बिन कॉइन कहते हैं। अपने बिन कॉइन की बचत करके रखें, खर्च करें या जिस उद्देश्य में आपका विश्वास है उसमें दान करें। आपके नजदीक कहीं एक कंटेनर्स फॉर चेंज मौजूद है, बैंक में डालें ना कि कूड़ेदान में। अपना सबसे नजदीकी रिफंड पॉइंट ढूंढने के लिए वेबसाइट पर जाएं और आज ही 10 सेंट कमाना शुरू करें।

हाँ जी जी अनु जी, वेलकम बैक। एक बार फिर तो बहुत बहुत स्वागत है जी थोड़ा थोड़े अपने चाहते रेडियो स्टेशन रेडियो सोनी 101.1 ते जी आर जे संदेश अलग दिन बने हुए हुणे ना फिल्मां दे विचों जिहड़ियां पूरी दुनिया दे विच छाईयां हुईयां ने, तां इह जिहड़ी लिस्ट मैं फरोल रही हां तां इस विच सब तों पहला नाम जिहड़ा आउंदा है उह हैगा बूंग। जी हाँ, ये लक्ष्मी प्रिया देवी दे निर्देशन विच बनी मणिपुरी फिल्म हैगी है बूंग। फिल्म का नाम ते बूंग ने ना हाल ही विच बाफ्टा अवार्ड 2026 विच बेस्ट चिल्ड्रन एंड फैमिली फिल्म का अवार्ड जीत के ना इतिहास रच दिता है। फरहान अख्तर ते रितेश सिद्धवानी दे एक्सल एंटरटेनमेंट द्वारा प्रोड्यूस इस फिल्म विच एक छोटे मुंडे की कहानी है जो अपने पिता की तलाश विच निकलता है। फिल्म मणिपुर विच जाति तनाव ते सीमा दीआं चुनौतियां नूं एक बच्चे दे नजरिए दे नाल दिखाउंदी हैगी है जो बहुत वधिया लगती है, क्योंकि जेड़ी चीज बच्चे दे नजरिए दे नाल दिखाई जांदी है कि ना वो नो डाउट कमाल दी हुंदी है।

0: मेरा नाम डॉक्टर कुमार है और यहाँ कुछ ऐसा है जिसे जानना अच्छा है। एक नया नेशनल लंग कैंसर स्क्रीनिंग प्रोग्राम शुरू हुआ है। ये सरल है, निशुल्क है और ये लक्षणों के सामने आने से पहले ही लंग कैंसर का पता लगा सकता है। यदि आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो हो सकता है कि आप ये सोचें कि बहुत देर हो चुकी है या इसके बारे में ना जानना ही बेहतर है। लेकिन क्या आपको पता है कि फेफड़ों के कैंसर की शुरुआत में पता लगाए गए 65% से अधिक मामलों का सफलतापूर्वक इलाज किया जा सकता है। यदि आप 50 से 70 वर्ष की आयु के हैं और आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो अपने डॉक्टर से बात करें या lungcancerscreen.org.au पर जाएं।
1: प्रिया, नेक्स्ट मंथ मामा का बर्थडे है। सोच रही हूँ उनको फॉरेन एक्सचेंज के थ्रू न्यूजीलैंड मनी भेज दूँ, जिससे वो अपनी पसंद का गिफ्ट ले लेंगे।
2: ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। मेरे पास एक अच्छा ऑप्शन भी है मनी ट्रांसफर करने का।
1: अच्छा, वो क्या?
2: अब तुम घर बैठे न्यूजीलैंड या फिजी में भी मनी भेज सकती हो लोटस फॉरेन एक्सचेंज की हेल्प से ऑनलाइन, और वो भी फ्री में।
1: लेकिन मामा के लिए मनी लेने कहीं दूर जाना पॉसिबल नहीं होगा।
2: अरे, रिसीवर्स अब कैश पिकअप, बैंक ट्रांसफर या मोबाइल वॉलेट में भी ले सकते हैं मनी। डाउनलोड कीजिए लोटस फॉरेन एक्सचेंज ऑनलाइन au.lotusfx.com ऐप आज ही विजिट करें।

0: यार सब ठीक है, बस मम्मी पापा इंडिया में अकेला फील करते हैं। अनऑर्गेनाइज्ड हेल्पर्स पे भरोसा भी नहीं होता। कल को इमरजेंसी हो जाए तो?
1: तूने ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग के बारे में सुना है? गुरुग्राम में है प्रोफेशनल सीनियर लिविंग, 24/7 नर्सिंग और डॉक्टर्स के स्ट्रॉन्ग टाई-अप्स के साथ। फोर्टिस, मेडांटा, सीके बिरला, आर्टेमिस, सब अच्छे हॉस्पिटल्स पास ही हैं।
0: सीरियसली? मतलब प्रॉपर केयर और मुझे यहाँ भी पीस ऑफ माइंड?
1: बिल्कुल, ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, ऑस्ट्रेलियन ओन्ड सीनियर लिविंग इन गुरुग्राम इंडिया। ऑस्ट्रेलियन स्टैंडर्ड्स की प्रोफेशनलिज्म, एक्सपीरियंस टीम और ट्रस्टेड अल्टरनेटिव टू अनऑर्गेनाइज्ड अनरिलायबल होम हेल्पर्स। अपने पेरेंट्स के लिए सेफ डिग्निफाइड केयर चाहिए? ओम्स ऑर्ग, स्पेल्ड OMSORG। वेबसाइट omsorg.co.in। व्हाट्सएप या कॉल कीजिए इंडिया नंबर 8448381360। ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, जहां केयर का मतलब है रियल केयर।
2: भाई मम्मी पापा की तबीयत की बहुत टेंशन रहती है यार, हम यहाँ ब्रिस्बेन में और वो इंडिया में अकेले हैं।
3: तो ओम्स ऑर्ग से बात कर, इंडिया में एल्डर्स और दिव्यांगनों के लिए इन होम केयर देते हैं एकदम प्रोफेशनल तरीके से।
2: हाँ लेकिन भरोसा कैसे करूं?
3: अरे ओम्स ऑर्ग एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी मैपल केयर की सब्सिडियरी है और मैपल केयर NDIS का रजिस्टर्ड प्रोवाइडर है।
2: अच्छा मतलब स्टैंडर्ड और रिस्क मैनेजमेंट भी ऑस्ट्रेलिया जैसा?
3: बिल्कुल, खाना, दवाई, हेल्थ चेक, सब कुछ जैसे आप खुद देख रहे हो।
2: फिर तो आज ही वेबसाइट देखनी पड़ेगी।
3: उनकी वेबसाइट www.omsorg.co.in है। भारत में नंबर +91 8448381360 है और ऑस्ट्रेलिया में 0470631801। प्यार और देखभाल की कोई दूरी नहीं होती भाई।
4: ओम्सॉक, केयरिंग विद डिग्निटी।

क्या आपकी शादी होने वाली है? तो आज ही फोन कीजिए कॉमनवेल्थ सिविल मैरिज सेलिब्रेंट परमानंद को 04111270035 पर, या फिर उनसे मिलिए लेवल 133 बालाक्लावा स्ट्रीट वोलोंगाबा में। फॉर वेडिंग्स, एंगेजमेंट्स, रिन्यूअल ऑफ वाउज और कमिटमेंट सेरेमनीज घर पर, हॉल या पार्क में, बुक विद परमानंद। कॉल नाउ ऑन 04111270035। रिमेम्बर द नंबर इज 04111270035, या फिर ईमेल करें permanand@optusnet.com.au पर। फॉर बेस्ट सर्विस, कंप्लीट लीगल पेपर वर्क, मैरिज सर्टिफिकेट एंड अ मेमोरेबल मैरिज सेरेमनी, रिमेम्बर द नेम परमानंद, योर प्रोफेशनल एंड फ्रेंडली सिविल मैरिज सेलिब्रेंट सिंस 2003।

0: यार साग में कुछ दम नहीं है, बिल्कुल मजा नहीं आया।
1: किसी दिन घर आना, असली देसी घी में साग बनाकर खिलाऊंगा तुम्हें।
0: कहाँ यार, आजकल असली देसी घी मिलते कहाँ है?
1: किस दुनिया में हो भाई, क्वालिटी फूड सर्विस में ट्रिपल रिफाइंड प्योर देसी घी मिलते हैं। ऑस्ट्रेलिया में ही बनते हैं 100% प्योर क्रीम से, 99.9% प्योर मिल्क फैट से, और तो और हर मौसम में उपलब्ध रहने के साथ साथ हाई क्वालिटी पैकेजिंग में भी आते हैं।
0: मुझे तो पता ही नहीं था। अच्छा ये बताओ मैं कहाँ से खरीद सकता हूँ?
1: लगभग सभी इंडियन आउटलेट से तुम पीवा देसी घी ले सकते हो।
2: पीवा देसी घी सिंह डेयरी द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है, बिल्कुल ओरिजिनल और कलरलेस। और इन्फो के लिए आज ही कॉल करें मोबाइल नंबर 0400664435 पर, याद रहे 0400664435 पर, या फिर ईमेल करें singdairy@gmail.com पर।
3: मेरी पत्नी सभी घी ट्राई कर चुकी है और जब से वो पीवा देसी घी इस्तेमाल करने लगी है सारे घर में घी की खुशबू फैल जाती है।

0: பண்ணு.
1: इंडियन फैशन का जब भी जिक्र होता है तो लोग रानी क्रिएशंस को याद करते हैं, क्योंकि रानी क्रिएशन में सभी कुछ उपलब्ध है. यू गेट मेंस एंड लेडीज वेडिंग सूट्स एंड एक्सेसरीज, टॉप क्वालिटी डिजाइनर साड़ीज, लहंगा, सलवार कमीज, पार्टी वेयर एंड मेन शर्ट्स एंड सूट्स. यू कैन ऑल्सो ऑर्डर टेलर मेड सूट्स फ्रॉम रानी क्रिएशंस. इतना ही नहीं, ओरिजिनल डीवीडीज, सीडीज, फोन कार्ड्स, प्रीपेड चार्ज कार्ड्स, फैंसी ज्वेलरी, बैंगल्स, गिफ्ट वेयर भी उपलब्ध है. फॉर टॉप क्वालिटी बॉलीवुड फैशन विजिट रानी क्रिएशंस एट 33 बलक्लावा स्ट्रीट, वुलन गैबा. ओपन daily from 9 a.m. Telephone Rani Creations on 3391-0622 or visit their webpage ranicreations.com. The one-stop Bollywood fashion and entertainment store, well known for its quality service and reasonable prices.

बिजली का बिल देखकर हर महीने शॉक लगता है क्या? तो अब स्विच करो सोलर पर। रे सोलर पावर के साथ आपके लोकल CEC अप्रूव्ड सोलर एक्सपर्ट्स। घर हो या बिजनेस, हम सब के लिए सोलर पैनल्स, बैटरीज और कमर्शियल सिस्टम्स को सप्लाई और इंस्टॉल करते हैं, ताकि आप बचा सके पैसे और क्लीन एंड रिन्यूएबल एनर्जी से एनवायरनमेंट को भी। आपकी लोकल टीम पर भरोसा रखें। रे सोलर पावर का प्रॉमिस है क्वालिटी प्रोडक्ट्स, प्रोफेशनल इंस्टॉलेशन और रियल सेविंग्स। तो अब बिजली का बिल नहीं, सिर्फ सनशाइन मिलेगा। रे सोलर पावर, पावरिंग होम्स, पावरिंग बिजनेसेस, पावरिंग द फ्यूचर। आज ही कॉल करें 0430-525-896, दैट इज 0430-525-896। हमारा ईमेल आईडी है ray@raysolarpower.com.au और वेबसाइट www.raysolarpower.com.au।

आप माने या ना माने, बात बिल्कुल सही है। मौत और टैक्स से कोई नहीं बच सकता, लेकिन आपका हुनरदार अकाउंटेंट आपको कम टैक्स भी भरवा सकता है और अधिक टैक्स वापस लौटा भी सकता है। स्मॉल और मीडियम बिजनेस टैक्स अकाउंटिंग, ऑल इनकम टैक्स बेस आदि विषयों में वर्षों के अनुभवी बिजनेस अकाउंटेंट प्रकाश मेनन का जवाब नहीं। प्रॉम्प्ट पर्सनलाइज्ड एंड प्रोफेशनल सर्विस के लिए ऑब्लिगेशन फ्री अपॉइंटमेंट फ्री ऑफ चार्ज रिंग करें प्रकाश मेनन को। फोन 3630-5438 या मोबाइल 0415-952-660 0415-952-660

0: नहीं, ये तुम कहाँ ले जा रही हो? ये ग्रोसरी पास वाली शॉप से ले सकते हैं ना?
1: यस बेबी, बट नो कॉम्प्रोमाइज विद क्वालिटी एंड हेल्थ। हम जाएंगे सिर्फ MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड।
0: ऐसा क्या खास है वहाँ?
1: सब कुछ, क्वालिटी स्पाइसेस, लेंटिल्स, राइस, फ्लावर और फ्रोजन सब्जी फ्रॉम फिजी एंड इंडिया। ब्रिस्बेन के बेस्ट इंडियन बुचर सप्लाइंग फार्म फ्रेश गोट, लैम्ब, चिकन एंड डक और फ्रेश लोकल प्रोड्यूस भी रखते हैं। साथ ही किचनवेयर एंड डिस्पोजेबल प्लेट्स की लार्ज रेंज किसी भी फंक्शन के लिए।
0: अरे वाह, इंटेलिजेंट हो गई हो।
1: MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड, सर्विंग ब्रिस्बेन सिंस 1999, ओपन 7 डेज। फाइंड अस ऑन फेसबुक और विजिट वेबसाइट mcsfoods.com.au। 1/268 किंगस्टन रोड, स्लैक्स क्रीक, फोन नंबर 3804-3818। दैट्स 3804-3818।

दुनिया के किसी भी कोने में रहा, तुमसे कितना भी फासला रहा, यकीन मानो बचपन से आज तक हर पल हर मोड़ तुम्हें साथ पाया। समझ नहीं आता इस रिश्ते को क्या कहूं यार, तुम कहो तो आज इसे एक नाम दूं।

वहमो गुमान से दूर दूर, यकीन की हद के पास पास, दिल को भरम ये हो गया, उनको हमसे प्यार है।

कंटेनर्स फॉर चेंज के माध्यम से अपने खाली डिब्बे बोतलों से धनराशि कमाएं। आपके प्रत्येक योग्य खाली कैन बोतल और कार्टन पर

ना बदला में, ना बदला।

0: बदला बदला बदला बदला बदला बदला बदला बदला बदला बदला बदला
1: यूएस के इलेक्शन के बाद जब डोनाल्ड ट्रंप व्हाइट हाउस

0: ओए राहुल, वीरे तेरे केस दा की होया?
1: ओ यारा, मैं बहुत वरीड हां। आई एक्चुअली वांट एन एक्सपीरियंस्ड लॉयर टू हैंडल माय केस।
0: गो फॉर द बेस्ट वीरे। अतुल भारद्वाज जी नु आज ही कांटेक्ट करो। ओना दे कोल वास्ट एक्सपीरियंस आ ते लॉ दी इंट्रीकेसीज नु हैंडल करन च भी ओ एक्सपर्ट हन। क्रिमिनल लॉ, डोमेस्टिक वायलेंस, ट्रैफिक ड्रग ऑफेंस विच 12 साल तो वद्दा रिच एक्सपीरियंस। ते कन्वेयंस, फैमिली लॉ, इमिग्रेशन लॉज विच भी भारद्वाज एंड एसोसिएट्स दे लॉयर्स दा वास्ट एक्सपीरियंस आ। एंड द बेस्ट पॉइंट, they understand the stress that you go through and work effectively to minimize it.
1: Thanks a ton, Veere. I'm so relaxed to hear that.
0: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Ajji contact karo Atul Jino on 0400-234-235. That is 0400-234-235.
2: Anuj, koi achha sa lawyer suggest karo na. Aisa jo meri sari baat dhang se sune, samjhe, और फिर मेरे तरीके से मुझे समझाए।
3: अरशाद लॉयर्स है तुम्हारी प्रॉब्लम का सलूशन। कमर्शियल मैटर हो जैसे लीज का मामला, बिजनेस हो या फिर घरों की बाइंग सेलिंग का मामला, और डिवोर्स जैसे फैमिली मैटर्स भी, वो सब में मदद कर सकती हैं। और फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अदालत तक तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। अभी फोन करो 0420-933-171 पर और 15 मिनट का फ्री फोन कंसल्टेशन ले लो।
2: अरे वाह, इनका पता बताना।
3: अरशाद लॉयर्स, माउंट ग्रेविट शोग्राउंड्स, ऑफिस 5, 1644 लोगन रोड, माउंट ग्रेविट, एम्पल पार्किंग। कॉल अरशाद फ्रॉम अरशाद लॉयर्स नाउ ऑन 0420-933-171। वेबसाइट www.arshadlawyers.com। We pride ourselves in providing excellent service.

0: Hi, this is Amitabh Bachchan.
1: और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
2: Hi guys, I'm Manmeet from the Meet Brothers. आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
3: Hi, this is Salman Khan. और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
4: Hi, this is Deepika Padukone. और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
5: To everyone tuning into Radio Briswani, this is Alia.
6: Hi, मैं हूँ Tulsi Kumar और आप मुझे सुन रहे हैं Radio Briswani से.
7: To everyone tuning into Radio Briswani, this is Shahrukh Khan.
8: Hi, this is Ajay Devgan और आप सुन रहे हैं Radio Briswani.

मेरा नाम डॉक्टर कुमार है और यहाँ कुछ ऐसा है जिसे जानना अच्छा है। एक नया नेशनल लंग कैंसर स्क्रीनिंग प्रोग्राम शुरू हुआ है। ये सरल है, निशुल्क है और ये लक्षणों के सामने आने से पहले ही लंग कैंसर का पता लगा सकता है। यदि आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो हो सकता है कि आप ये सोचें कि बहुत देर हो चुकी है या इसके बारे में ना जानना ही बेहतर है। लेकिन क्या आपको पता है कि फेफड़ों के कैंसर की शुरुआत में पता लगाए गए 65% से अधिक मामलों का सफलतापूर्वक इलाज किया जा सकता है। यदि आप 50 से 70 वर्ष की आयु के हैं और आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो अपने डॉक्टर से बात करें या lungcancerscreen.org.au पर जाएं।

0: प्रिया, नेक्स्ट मंथ मामा का बर्थडे है। सोच रही हूँ उनको फॉरेन एक्सचेंज के थ्रू न्यूजीलैंड मनी भेज दूँ, जिससे वो अपनी पसंद का गिफ्ट ले लेंगे।
1: ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। मेरे पास एक अच्छा ऑप्शन भी है मनी ट्रांसफर करने का।
0: अच्छा, वो क्या?
1: अब तुम घर बैठे न्यूजीलैंड या फिजी में भी मनी भेज सकती हो लोटस फॉरेन एक्सचेंज की हेल्प से ऑनलाइन, और वो भी फ्री में।
0: लेकिन मामा के लिए मनी लेने कहीं दूर जाना पॉसिबल नहीं होगा।
1: अरे, रिसीवर्स अब कैश पिकअप, बैंक ट्रांसफर या मोबाइल वॉलेट में भी ले सकते हैं मनी। डाउनलोड कीजिए लोटस फॉरेन एक्सचेंज ऑनलाइन au.lotusfx.com ऐप आज ही विजिट करें।

0: यार सब ठीक है, बस मम्मी पापा इंडिया में अकेला फील करते हैं। अनऑर्गेनाइज्ड हेल्पर्स पे भरोसा भी नहीं होता, कल को इमरजेंसी हो जाए तो।
1: तूने ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग के बारे में सुना है? गुरुग्राम में है प्रोफेशनल सीनियर लिविंग, 24/7 नर्सिंग और डॉक्टर्स के स्ट्रॉन्ग टाई-अप्स के साथ। फोर्टिस, मेडांटा, सीके बिरला, आर्टेमिस, सब अच्छे हॉस्पिटल पास ही है।
0: सीरियसली, मतलब प्रॉपर केयर और मुझे यहाँ भी पीस ऑफ माइंड।
1: बिल्कुल, ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, ऑस्ट्रेलियन ओन्ड सीनियर लिविंग इन गुरुग्राम इंडिया। ऑस्ट्रेलियन स्टैंडर्ड्स की प्रोफेशनलिज्म, एक्सपीरियंस टीम और ट्रस्टेड अल्टरनेटिव टू अनऑर्गेनाइज्ड अनरिलायबल होम हेल्पर्स। अपने पेरेंट्स के लिए सेफ डिग्निफाइड केयर चाहिए, ओम्स ऑर्ग, स्पेल्ड OMSORG। वेबसाइट omsorg.co.in, व्हाट्सएप या कॉल कीजिए इंडिया नंबर 8448381360। ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, जहां केयर का मतलब है रियल केयर।
2: भाई, मम्मी पापा की तबीयत की बहुत टेंशन रहती है यार। हम यहाँ ब्रिस्बेन में और वो इंडिया में अकेले हैं।
3: तो ओम्स ऑर्ग से बात कर, इंडिया में एल्डर्स और दिव्यांगनों के लिए इन होम केयर देते हैं एकदम प्रोफेशनल तरीके से।
2: हाँ, लेकिन भरोसा कैसे करूं?
3: अरे, ओम्स ऑर्ग एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी मैपल केयर की सब्सिडियरी है और मैपल केयर NDIS का रजिस्टर्ड प्रोवाइडर है।
2: अच्छा, मतलब स्टैंडर्ड और रिस्क मैनेजमेंट भी ऑस्ट्रेलिया जैसा।
3: बिल्कुल, खाना, दवाई, हेल्थ चेक, सब कुछ जैसे आप खुद देख रहे हो।
2: फिर तो आज ही वेबसाइट देखनी पड़ेगी।
3: उनकी वेबसाइट www.omsorg.co.in है। भारत में नंबर +91 8448381360 है और ऑस्ट्रेलिया में 0470631801। प्यार और देखभाल की कोई दूरी नहीं होती भाई।
4: ओम्सॉक, केयरिंग विद डिग्निटी।

क्या आपकी शादी होने वाली है? तो आज ही फोन कीजिए कॉमनवेल्थ सिविल मैरिज सेलिब्रेंट परमानंद को 04111270 पर, या फिर उनसे मिलिए लेवल 1 33 बालाक्लावा स्ट्रीट वोलोंगाबा में।

0: यार साग में कुछ दम नहीं है, बिल्कुल मजा नहीं आया।
1: किसी दिन घर आना, असली देसी घी में साग बनाकर खिलाऊंगा तुम्हें।
0: कहाँ यार, आजकल असली देसी घी मिलते कहाँ है?
1: किस दुनिया में हो भाई, क्वालिटी फूड सर्विस में ट्रिपल रिफाइंड प्योर देसी घी मिलते हैं। ऑस्ट्रेलिया में ही बनते हैं, 100% प्योर क्रीम से, 99.9% प्योर मिल्क फैट से, और तो और हर मौसम में उपलब्ध रहने के साथ साथ हाई क्वालिटी पैकेजिंग में भी आते हैं।
0: मुझे तो पता ही नहीं था। अच्छा ये बताओ मैं कहाँ से खरीद सकता हूँ?
1: लगभग सभी इंडियन आउटलेट से तुम पीवा देसी घी ले सकते हो।
2: पीवा देसी घी सिंह डेयरी द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है, बिल्कुल ओरिजिनल और कलरलेस। और इन्फो के लिए आज ही कॉल करें मोबाइल नंबर 0400664435 पर, याद रहे 0400664435 पर, या फिर ईमेल करें singdairy@gmail.com पर।
3: मेरी पत्नी सभी घी ट्राई कर चुकी है और जब से वो पीवा देसी घी इस्तेमाल करने लगी है, सारे घर में घी की खुशबू फैल जाती है।

फैशन का जब भी जिक्र होता है तो लोग रानी क्रिएशंस को याद करते हैं, क्योंकि रानी क्रिएशन में सभी कुछ उपलब्ध है। यू गेट मेंस एंड लेडीज वेडिंग सूट्स एंड एक्सेसरीज, टॉप क्वालिटी डिजाइनर साड़ीज, लहंगा, सलवार कमीज, पार्टी वेयर एंड मेन शर्ट्स एंड सूट्स। यू कैन ऑल्सो ऑर्डर टेलर मेड सूट्स फ्रॉम रानी क्रिएशंस। इतना ही नहीं, ओरिजिनल डीवीडी, सीडीज, फोन कार्ड्स, प्रीपेड चार्ज कार्ड्स, फैंसी ज्वेलरी, बैंगल्स, गिफ्ट वेयर भी उपलब्ध है। फॉर टॉप क्वालिटी बॉलीवुड फैशंस विजिट रानी क्रिएशंस एट 33 बलक्लावा स्ट्रीट, वुलन गैबा, ओपन डेली फ्रॉम 9 AM। टेलीफोन रानी क्रिएशंस ऑन 3391-0622 और विजिट देयर वेब पेज ranicreations.com। द वन स्टॉप बॉलीवुड फैशन एंड एंटरटेनमेंट स्टोर, वेल नोन फॉर इट्स क्वालिटी सर्विस एंड रीजनेबल प्राइसेस।

बिजली का बिल देखकर हर महीने शॉक लगता है क्या? तो अब स्विच करो सोलर पर। रे सोलर पावर के साथ आपके लोकल सीईसी अप्रूव्ड सोलर एक्सपर्ट्स। घर हो या बिजनेस, हम सब के लिए सोलर पैनल्स, बैटरीज और कमर्शियल सिस्टम्स को सप्लाई और इंस्टॉल करते हैं, ताकि आप बचा सके पैसे और क्लीन एंड रिन्यूएबल एनर्जी से एनवायरमेंट को भी। आपकी लोकल टीम पर भरोसा रखें। रे सोलर पावर का प्रॉमिस है क्वालिटी प्रोडक्ट्स, प्रोफेशनल इंस्टॉलेशन और रियल सेविंग्स। तो अब बिजली का बिल नहीं, सिर्फ सनशाइन मिलेगा। रे सोलर पावर, पावरिंग होम्स, पावरिंग बिजनेसेस, पावरिंग द फ्यूचर। आज ही कॉल करें 0430-525-896, दैट इज 0430-525-896। हमारा ईमेल आईडी है ray@raysolarpower.com.au और वेबसाइट www.raysolarpower.com.au।

आप माने या ना माने, बात बिल्कुल सही है। मौत और टैक्स से कोई नहीं बच सकता, लेकिन आपका हुनरदार अकाउंटेंट आपको कम टैक्स भी भरवा सकता है और अधिक टैक्स वापस लौटा भी सकता है। स्मॉल और मीडियम बिजनेस टैक्स अकाउंटिंग, ऑल इनकम टैक्स बेस आदि विषयों में वर्षों के अनुभवी बिजनेस अकाउंटेंट प्रकाश मेनन का जवाब नहीं। प्रॉम्प्ट पर्सनलाइज्ड एंड प्रोफेशनल सर्विस के लिए ऑब्लिगेशन फ्री अपॉइंटमेंट फ्री ऑफ चार्ज रिंग करें प्रकाश मेनन को। फोन 3630-5438 या मोबाइल 0415-952-660 0415-952-660

0: हनी ये तुम कहाँ ले जा रही हो, ये ग्रोसरी पास वाले शॉप से ले सकते हैं ना।
1: यस बेबी, बट नो कॉम्प्रोमाइज विद क्वालिटी एंड हेल्थ। हम जाएंगे सिर्फ MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड।
0: ऐसा क्या खास है वहाँ?
1: सब कुछ, क्वालिटी स्पाइसेस, लेंटिल्स, राइस, फ्लावर और फ्रोजन सब्जी फ्रॉम फिजी एंड इंडिया। ब्रिस्बेन के बेस्ट इंडियन बुचर सप्लाइंग फार्म फ्रेश गोट, लैम्ब, चिकन एंड डक और फ्रेश लोकल प्रोड्यूस भी रखते हैं। साथ ही किचनवेयर एंड डिस्पोजेबल प्लेट्स की लार्ज रेंज किसी भी फंक्शन के लिए।
0: अरे वाह, इंटेलिजेंट हो गई हो।
1: MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड, सर्विंग ब्रिस्बेन सिंस 1999, ओपन 7 डेज। फाइंड अस ऑन फेसबुक और विजिट वेबसाइट mcsfoods.com.au। 1/268 किंगस्टन रोड, स्लैक्स क्रीक, फोन नंबर 3804-3818। दैट्स 3804-3818।

चीजें खत्म हो जाती हैं, लोग बदल जाते हैं और जीवन जीवन चलता रहता है। नमस्कार, आदाब, खैर मकदम, सत श्री अकाल श्रोताओं। रेडियो ब्रिस्वानी 107.01 AM पर इसी बदलते जीवन के साथ एक बार फिर से सताक्षी आपके साथ है। रेडियो ब्रिस्वानी पर हमारे और आपके सुबह के खास सफर जीवन आधार में। जीवन में बहुत कुछ बदलता है, कुछ आता है, कुछ छूटता है, लेकिन ये जीवन, इसकी कहानी यूं ही मनुष्य की आखिरी सांस तक चलती रहती है और यही है जीवन का आधार। आइए आज इसी जीवन के आधार को समेटते हैं एक बार फिर से हमारे सफर जीवन आधार में रेडियो ब्रिस्वानी 107.01 AM पर और आगे बढ़ते हैं इस अगले गीत के साथ।

श्रोताओं, लोगों को लगता है कि अगर आप ज्यादा बोलेंगे तो सामने वाले को लगेगा या जो सामने लोग बैठे हैं उनको लगेगा कि आपके पास बहुत सारी नॉलेज है। अगर आपके सामने भी कोई ज्यादा बोल रहा है और ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि उसके पास वाकई बहुत नॉलेज है, तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि वो ज्ञानी है, उसके पास बहुत ज्ञान है। ऐसा बिल्कुल भी मतलब नहीं है। सही मायनों में जो ज्ञानी है ना, वो उतना ही बोलता है जितना जरूरी है, कम बोलता है, शांत रहता है और सबसे इम्पोर्टेंट, प्रेम से बोलता है। ईगो नहीं होता उसमें, क्योंकि उसे पता है कि उसके पास ज्ञान है, सही ज्ञान है। और जिसके पास ज्ञान है वो ज्ञान का धनी है, अहंकार का नहीं। आइए इसी बात पर आगे बढ़ते हैं जीवन आधार में एक और गीत के साथ। सुनते रहिए रेडियो प्रस्वानी पर सताक्षी के साथ जीवन आधार।

सुबह का ये खास और बेहतरीन सफर जो आपको जिंदगी से जोड़ता है, सच्चाई से जोड़ता है, उस परमपिता परमात्मा परमेश्वर से जोड़ता है और इस सफर का नाम है जीवन आधार। इसी सफर में आज आप सताक्षी के साथ एक बार फिर से हैं श्रोताओं, और इसी सफर में हम आगे बढ़ेंगे इस अगले गीत के साथ। सुनते रहिए मेरे साथ जीवन आधार और रहिए रेडियो प्रस्वानी पर।

क्योंकि यूं तो कई बातें या उनके कई थॉट्स मशहूर हैं, बहुत फेमस हैं, लेकिन मुझे गौतम बुद्ध की कही बात, एक बात जो है वो हमेशा मैं अपने दिल में रखती हूँ और मुझे बड़ी अच्छी लगती है कि क्रोध के समय मौन और समस्या के समय मुस्कान, यही सबसे बड़ी ताकत होती है। और अगर आप इस बात को मेरी तरह अपने मन में रख लें, संभाल के गांठ बांध के जहन में बैठा लें, तो यकीनन आप जिंदगी पर विजय हासिल कर सकते हैं। क्रोध जो है सबसे ज्यादा आपके रिश्ते खराब करता है, आपके अंदर कई सारी बीमारियों को जन्म देता है, आपकी अपनी एनर्जीज को डिस्टर्ब कर देता है। और अगर आप उसके समय शांत रहना सीख जाते हैं, आप मौन रहना सीख जाते हैं, आप अननेसेसरी बोलते नहीं हैं, तो आप कई रिश्तों को बचा लेते हैं, अपने मन की शांति को बचा लेते हैं। और कठिन समय जीवन में आना ही आना है, मनुष्य की नियति है कि कठिन समय से भी उसके जीवन को गुजरना है जैसे उसके जीवन खुशियों से गुजरता है। उस समय मुस्कान चेहरे पर बनाए रखना, वो प्यार बनाए रखना और हिम्मत बनाए रखना, यही जीवन की सबसे बड़ी ताकत है। और इसी ताकत के नाम सुनूंगी और सुनवाऊंगी आपको भी अगला गीत। सुनते रहिए रेडियो ब्रिस्वानी पर सताक्षी के साथ जीवन आधार।

ये सफर जिसमें आप खुद को ढूंढ पा रहे हैं और समझ पा रहे हैं कि जीवन कितना खूबसूरत है और इसे कितनी खूबसूरती से हम बिता सकते हैं, इसी जीवन को समझने का नाम है जीवन आधार। और इसी जीवन आधार पर हम और आप आज एक बार फिर से साथ चल रहे हैं। आइए आगे बढ़ते हैं इस एक और गीत के साथ। सुनते रहिए जीवन आधार और रहिए सताक्षी के साथ।

अगर आप अपनी समस्या का समाधान कर सकते हैं तो चिंता करने की क्या जरूरत है, और अगर आप इसका समाधान नहीं कर सकते तो चिंता करने से क्या फायदा है। रेडियो ब्रिस्वानी 1701 एम पर सताक्षी के साथ आप सुन रहे हैं जीवन आधार। प्रॉब्लम जब जिंदगी में आती है तो फिक्र तो होती है ना। हमको आपको इसी बात की फिक्र है कि इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है। प्रॉब्लम जब इस दुनिया में हमारी जिंदगी में आती है तो जाहिर सी बात है आपको प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढने में परेशानी होती है और आप फिर चिंता करते हैं। लेकिन देखा जाए तो किसी भी प्रॉब्लम के सिर्फ दो ही फेजेस होते हैं, या तो उसका सॉल्यूशन है और या फिर कोई सॉल्यूशन नहीं है। अगर उसका सॉल्यूशन है तो उसको खोजिए, चिंता करने से कोई फायदा नहीं है, आप उसका सॉल्यूशन ढूंढिए। और अगर सॉल्यूशन ही नहीं है, आप कुछ कर ही नहीं सकते, आपके हाथ में कुछ है ही नहीं, तो फिर भला चिंता का फायदा क्या है। सोचने वाली बात है। सोचिए और सुनते रहिए जीवन आधार सताक्षी के साथ।

श्रोताओं, ये था आज एक और जीवन से जुड़ा हमारा खास सफर जीवन आधार रेडियो ब्रिस्वानी 1701 एम पर, और एक और जिंदगी से जुड़े ऐसे ही खास सफर के साथ कल फिर से जीवन आधार में आपसे सुबह सुबह होगी मुलाकात। आज के सफर से अब लूंगी विदा, नमस्कार।

0: कंटेनर्स फॉर चेंज के माध्यम से अपने खाली डिब्बे बोतलों से धनराशि कमाएं। आपके प्रत्येक योग्य खाली कैन बोतल और कार्टन पर 10 सेंट का रिफंड प्राप्त होता है। इसे हम बिन कॉइन कहते हैं। अपने बिन कॉइन की बचत करके रखें, खर्च करें या जिस उद्देश्य में आपका विश्वास है उसमें दान करें। आपके नजदीक कहीं एक कंटेनर्स फॉर चेंज मौजूद है, बैंक में डालें ना कि कूड़ेदान में। अपना सबसे नजदीकी रिफंड पॉइंट ढूंढने के लिए वेबसाइट पर जाएं और आज ही 10 सेंट कमाना शुरू करें।
1: नमस्कार ब्रिस्बेन, गुड मॉर्निंग क्वींसलैंड। आप सुन रहे हैं अपना फेवरेट रेडियो स्टेशन रेडियो ब्रिस्बानी और मैं हूं आपकी दोस्त और होस्ट आरजे जॉनी जैन, लेकर हाजिर हूं चांदने का सफर। आज है ट्यूसडे, एक नया दिन, नया मौका और ढेर सारी पॉजिटिव एनर्जी के साथ आप सभी का स्वागत है। अगले एक घंटे तक हम लेकर आए हैं लेटेस्ट अपडेट्स, इंटरेस्टिंग फैक्ट्स, बॉलीवुड की दुनिया से कुछ मसालेदार गॉसिप्स, ऑस्ट्रेलिया की खबरें और पुरानी यादों को एक खूबसूरत सा सफर बनाने के लिए आप सभी को सुनना होगा रेडियो ब्रिस्बानी में ये प्यारा सा कार्यक्रम, ताकि आप सभी पुरानी यादों के साथ अपने सफर को और भी खूबसूरत बनाते रहें। तो आइए इसी के साथ बढ़ते हैं आगे इस खूबसूरत से गीत के साथ और आपकी मॉर्निंग बहुत ही ब्यूटीफुल जाए इस गीत के साथ। सुनते रहिए रेडियो ब्रिस्बानी।

तो आइए सबसे पहले जानते हैं ऑस्ट्रेलिया की अपडेट। क्वींसलैंड में विंटर का असर बढ़ रहा है। ब्रिस्बेन और आसपास के इलाकों में सुबह और रात का टेम्परेचर काफी नीचे जा रहा है। अगर आप अर्ली मॉर्निंग ड्राइव कर रहे हैं तो वार्म क्लोथिंग जो है और सेफ ड्राइविंग का ध्यान जरूर रखें। वहीं पे दोस्तों स्कूल हॉलीडेज करीब है और टूरिज्म इंडस्ट्री में काफी एक्टिविटी देखने को भी मिल रही है। गोल्ड कोस्ट और सनशाइन कोस्ट डेस्टिनेशंस फिर से फैमिलीज की पहली पसंद बन रही है। और वहीं पे ऑस्ट्रेलियन जॉब मार्केट में हेल्थ केयर, एज केयर जो है और टेक्नोलॉजी सेक्टर समेत अपॉर्चुनिटीज लगातार बढ़ रही है। तो ये थी ऑस्ट्रेलिया के कुछ अपडेट्स। तो आइए इसी के साथ बढ़ते हैं आगे और सुनते हैं नेक्स्ट ट्रैक ऑन रेडियो ब्रिस्बेन।

आप सभी सुन रहे हैं रेडियो ब्रसवानी। तो आइए जी अब नजर भारत के कुछ खास खबरों पर। डिजिटल इंडिया के तहत ऑनलाइन सर्विस और एआई बेस्ड टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल तेजी से आगे बढ़ रहा है। वहीं पर मॉनसून कई राज्यों में अच्छी रफ्तार से आगे बढ़ रहा है, जिससे किसानों को काफी उम्मीदें भी है। वहीं पर भारत का स्टार्टअप जो है इकोसिस्टम लगातार दुनिया के सबसे बड़े इनोवेशन हब्स में शुमार हो रहा है। तो ये थी भारत की कुछ अपडेट्स। जाने के थोड़ी देर बाद बॉलीवुड के बारे में कुछ खास बातें। आप सभी जुड़े रहिए मेरे साथ रेडियो ब्रसवानी में। तो आइए एंजॉय करते हैं इस ट्रैक को।

हाँ जी, तो चलिए फिर अब वक्त है बॉलीवुड की गलियों में घूमने का। जी हाँ, बॉलीवुड में इस साल कई बड़े प्रोजेक्ट्स अनाउंस हुए हैं और ऑडियंस को एक्शन, कॉमेडी और फैमिली एंटरटेनर्स का जबरदस्त मिक्स जो है वो देखने को मिलने वाला है। वहीं पर OTT प्लेटफॉर्म पर इंडियन कंटेंट की पॉपुलैरिटी ग्लोबल लेवल पर बढ़ रही है और ऑस्ट्रेलियन ऑडियंस सभी हिंदी कंटेंट को काफी पसंद कर रही है। वहीं पर इंडस्ट्री इनसाइडर्स के मुताबिक कई सुपरस्टार्स के कोलैबोरेशंस प्रोजेक्ट पर काम जो है वो चल रहा है। ऑफिशियल अनाउंसमेंट्स का जो फैंस है वो बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। तो जी, हमने जानी बॉलीवुड की बहुत सारी अपडेट्स, जानेंगे थोड़ी देर बाद कुछ गॉसिप्स, क्योंकि वो भी काफी जरूरी है। तो आइए एक साथ बढ़ते हैं आगे और सुनते हैं नेक्स्ट ट्रैक ऑन योर रेडियो बिस्वानी।

हाँ जी, इस गीत के बाद एक बार फिर से आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, क्या आपको याद है वो जमाना जब कैसेट्स रिवाइंड करने के लिए हम पेंसिल का सहारा लिया करते थे? जी हाँ, जब संडे की मूवी पूरा परिवार जो है वो एक साथ देखता था और एक इवेंट होती थी, जब स्कूल की समर हॉलीडेज खत्म ही नहीं होती थी और जब दोस्ती फेसबुक और इंस्टाग्राम से नहीं गले के क्रिकेट और साइकिल राइड से होती थी। अगर दोस्तों आपको भी कोई पुरानी याद या फिर फेवरेट गाना याद आ रहा है तो हमें जरूर मैसेज कीजिए, क्योंकि पुरानी यादें ना कभी भी भूली नहीं जा सकती। वो एक एक पल, एक एक मोमेंट, एक एक टाइम, वो ऐसा याद आता है ना कि आज के टाइम पर अगर हम सोचते हैं तो काश वो पुराना टाइम वापस आ जाता, क्योंकि आजकल टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ चुकी है कि वो पुरानी यादें बन के रह गई है, क्योंकि वो पुरानी चीज आजकल के टाइम के जो बच्चे हैं या आजकल की जनरेशन है वो एंजॉय नहीं कर पाते, क्योंकि टेक्नोलॉजी ही इतनी बढ़ गई है, क्या करें। लेकिन जी, हमारे टाइम पे वो यादें, वो बातें, वो गॉसिप्स बहुत ही बढ़िया लगती थी। उस टाइम थे रियल फ्रेंडशिप्स, उस टाइम ना कोई फोन थे ना मोबाइल्स थे, हमेशा दोस्तों के घर जाना, उनके घर टीवी देखना, है ना, छुपन छुपाई, इंडोर आउटडोर गेम्स इतनी सारी होती थी कि वो यादें हमेशा आज भी याद करें तो हमारा ऐसा लगता है हम बचपन जी रहे हैं, है ना। आपकी भी ऐसी कोई बचपन वाली बात या कोई ऐसी यादें जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं, आप जरूर शेयर कर सकते हैं। तो आइए इसी के साथ बढ़ते हैं आगे, सुनते हैं नेक्स्ट ट्रैक ऑन योर रेडियो ब्रसवानी।

वेलकम बैक जी, आप सभी सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी। आप सभी सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी में आपकी दोस्त और होस्ट आरजे चांदनी जैन को। तो दोस्तों, कहना चाहूंगी, सफलता हमेशा बड़े कदमों से नहीं मिलती, कभी कभी रोजाना लिया गया एक छोटा सा कदम भी जिंदगी बदल देती है। सच कह रही हूँ ना? तो आइए इसी के साथ बढ़ते हैं एक और गीत के साथ और सुनते रहिए रेडियो ब्रिसवानी।

हाँ जी दोस्तों, इसी के साथ आज के ट्यूसडे मॉर्निंग शो का वक्त यहीं पर समाप्त होता है। मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए और अपनों के साथ वक्त जरूर बिताएं। मैं हूँ आपकी दोस्त और होस्ट आरजे चानी जैन और आप सभी सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी। जी हाँ, मिलते हैं अगले सेगमेंट में एक नए टॉपिक और नए अंदाज के साथ। जिंदगी को इंजॉय कीजिए, क्योंकि ट्यूसडे भी कभी कभी फ्राइडे जैसा फील करा ही देता है ना। सुनते रहिए रेडियो ब्रिसवानी, दीजिए मुझे इजाजत, टेक केयर, बाय बाय।

नमस्कार, मैं सताक्षी, आप सुन रहे हैं रेडियो प्रस्वानी 1701 MI। सुनते हैं अब तक की प्रमुख खबरें और सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय खबरें। डेविड कैमरन से शुरुआत, अब स्टार्मर का भी इस्तीफा। ब्रिटेन की सियासत से इस वक्त की सबसे बड़ी और विस्फोटक खबर सामने आई है। दुनिया के सबसे पुराने लोकतंत्रों में से एक ब्रिटेन की राजनीति आज उस चौराहे पर खड़ी है जहां स्थायित्व शब्द मजाक बनकर रह गया है। इस बात को ऐसे समझिए कि देश के प्रमुख वामपंथी दल लेबर पार्टी के भीतर मचे भीषण सियासी घमासान और आंतरिक बगावत ने आखिरकार प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर की कुर्सी भी छीन ली। चौतरफा आलोचनाओं, अपनों के ही तीखे तीरों और पार्टी सहयोगियों के अविश्वास से घिरे स्टार्मर ने 22 जून को अपने पद से इस्तीफा दे दिया। फिलीपींस के स्कूल में गोलीबारी, 3 छात्रों की मौत, 5 घायल। मध्य फिलीपींस के टाइलोबन शहर में स्थित एक स्कूल में अंधाधुंध गोलीबारी हुई। इस गोलीबारी में 3 छात्रों की मौत हो गई जबकि 5 घायल बताए जा रहे हैं। स्थानीय पुलिस के अनुसार यह घटना सुबह करीब 9 बजे बरंगाए सैन जोस के एक स्कूल परिसर के भीतर हुई। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने एक संदिग्ध नाबालिग को हिरासत में लिया है। आइए जुड़ते हैं अब भारत के साथ और सुनते हैं भारतीय खबरें। नौसेना के बेड़े में शामिल हुए 3 नए स्वदेशी जहाज, चीफ नेवी बोले आधुनिक तकनीक से निर्माण क्षमता को मिली नई उड़ान। नौसेना प्रमुख एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन ने कहा कि 3 फ्रंटलाइन युद्धपोतों एडवांस्ड स्टेल्थ फ्रिगेट, INS दूनागिरी, सर्वेक्षण पोत, INS संशोधक और एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटरक्राफ्ट INS अग्रे का नौसेना में शामिल होना ये दर्शाता है कि भारत की युद्धपोत निर्माण क्षमता आधुनिक तकनीक, आत्मनिर्भरता और आत्मविश्वास के मामले में नई गति प्राप्त कर रही है। CCPA ने भ्रामक विज्ञापनों पर लगाया बैन, कंपनियों को दी चेतावनी। ग्राहकों को गुमराह करने वाले विज्ञापनों पर देश की केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण ने कड़ा एक्शन लिया है। CCPA ने 2 बड़ी कंपनियों स्टोरिया फूड्स और बैक्टर्स फूड स्पेशलिस्ट पर 1-1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। इसके साथ ही कंपनियों को तुरंत अपने पैकेट, वेबसाइट और सोशल मीडिया से इन झूठे दावों को हटाने का आदेश दिया है। साथ ही सभी कंपनियों को कड़ा निर्देश दिया है कि वो किसी भी विज्ञापन के जरिए अपने प्रोडक्ट की झूठी जानकारी नहीं फैला सकते। ये थी अब तक की प्रमुख खबरें। अगली खबरों के साथ जल्द होगी मुलाकात। सुनते रहिए रेडियो प्रस्वानी और सताक्षी को दीजिए इजाजत। नमस्कार।

0: Oh boy. My nose and my this
1: thing all clear.
0: All cleared up now. Honestly, I'm not putting it on.
1: In certain terms.
0: आज ये सब होना था. कहते हैं कि भगवान के बिना पत्ता भी नहीं हिलता.
1: ओके.
0: और आज ऐसे है कि अमिता ने एक रोटी लेकर आई मेरे लिए और आज उसमें क्या बोलते हैं ऑयस्टर.
1: हाँ,
0: मशरूम का
1: किंग ऑयस्टर.
0: किंग ऑयस्टर वो बनाई उन्होंने वेजिटेरियन. वेरी नाइस. बहुत अच्छा लगा. और तो मैंने सोचा चलो ये जो जंगली चिली ऑयल मैं यूज करता हूँ. ओह माय गॉड मेबी आई पुट अ लिटिल बिट
1: टू मच
0: बिकॉज यू नो आई ईट लॉट्स ऑफ चिली राइट. बट आई थिंक टुमारो आई विल बी सिंगिंग द रिंग ऑफ फायर सॉन्ग. बट आई टेल यू व्हाट ऑनेस्टली I will say, if anything is wrong, I will say. I want to be a true critic, okay? Mm. Only thing I will say about this thing is you careful how much you put in, okay?
1: Because it's tells you
0: can make
1: jungly,
0: it mild, you can
1: it
0: make
1: is.
0: It heavy, whatever you want to do.
1: Yep.
0: It depends on how much you use. But I tell you, it's got an everlasting taste. It's so beautiful. Wow. Now, don't ask me how you get this thing. I'll come with it tomorrow. But it is just mind-blowing. Thank you for that. Honestly, agar aap ek lekar khayenge, it will go a long way. It will go a long way.
1: Yes, of course. It will last a long time.
0: Much. Yeah, yeah.
1: And look, even on the label is a date it was actually bottled.
0: Yep.
1: Okay?
0: Yep.
1: It's totally vegan.
0: Yep.
1: It's got a batch number as well.
0: Yep.
1: Wow. It's got the ingredients on it.
0: Yep.
1: Tells you how hot. So in this case, the chili jam is too chili in the picture.
0: Yep.
1: Which means it's fairly hot.
0: Uh-huh.
1: Right?
0: Yep.
1: The jungly chili oil has 3 chilies. So that is extra spicy.
0: Oh, boy. I tell you what. If you're cooking a curry, you just put a little bit of
1: little
0: this.
1: Bit.
0: You don't have to worry about putting.
1: Give it a little bit of a lift, a kick.
0: Yeah.
1: Mm.
0: Oh, you don't have to put any other chili in it. Oh, this is the oil. I mean, it's just so beautiful. Mm. Okay.
1: So I think you are firing on all cylinders at the moment.
0: I am. My nose is clear and everything is good. Because the amount I used is probably what you would have used in a big pot of curry.
1: Why did you put so much?
0: Well, because I'm a chili eater. I love chili.
1: Well, burn, baby, burn is all I can say.
0: कुछ लोग कहते हैं कि बोलने में ये मिर्च की तरह हो आप. नहीं दोस्तों मैं इतना बैड नहीं हूँ ठीक है. लेकिन कुछ लोग हैं जो कहते हैं. खैर समझो. फिजी सरकार ने एक नया सर्वे शुरू किया है जिसे पता लगेगा पता लगाया जाएगा कि क्या बोलते हैं कि बढ़ते जो फ्यूल प्राइसेस का बिजनेसेस पर क्या असर पड़ रहा है. और सरकार का कहना है कि इस सर्वे के नीचे नेता क्या इस सर्वे का नतीजे जो फ्यूचर सपोर्ट पॉलिसीज बनाने में मदद करेगा. Trying to improve my Hindi a bit. Deputy Prime Minister William Gavoka ने political parties से appeal की है कि जो हमारे यूथ लोग हैं उनको ज्यादा मौका दिया जाए और उनकी पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन बढ़ाई जाए यानी उसको करप्ट किया जाए पॉलिटिक्स में. जोक्स असाइड शुगर इंडस्ट्री पर चर्चा जारी है. कुछ नेताओं ने कहा है कि शुगर सेक्टर को इलेक्शन मुद्दा नहीं बनाना चाहिए जबकि मिल फेलियर्स और लॉसेस को लेकर भी चिंता व्यक्त की गई है. इट रियली मेक्स मी फील सैड व्हेन आई हियर कि मिल फेलियर्स बिकॉज यू नो आई वर्क्ड फॉर द शुगर मिल. वी सेव्ड आवर टाइम इन शुगर मिल ओवर देयर एंड बॉय इट वाज रनिंग लाइक अ क्लॉक ऑलवेज रन दो बट आई डोंट नो व्हाट इज हैपनिंग. मे बी महंगाई के

0: $100 रिश्वत मामले की जांच चल रही है. देयर वाज सम
1: ब्राइबरी एंड करप्शन.
0: या ये जो लॉ ग्रुप में मिला था ड्रग, ये तो कल मैंने कवा कर लिया था. फिजी होल्डिंग्स लिमिटेड ने वोडाफोन फिजी के जो सीईओ को अपने बोर्ड में शामिल किया है, साथ ही एक नया ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लॉन्च हुआ है जो फिजियंस को लोकल सर्विसेज प्रोवाइडर्स से जोड़ने में मदद करेगा. ठीक है. और नेडी के सेंट मिनास होम के बच्चों को देनिराव रिजॉर्ट में एक खास दिन बिताने का मौका मिला. दैट्स नाइस, इजन्ट इट. इस इनिशिएटिव ने बच्चों के जो चेहरों पर मुस्कान ला दी. क्या बात है, स्मॉल थिंग्स लाइक दैट मेक अ बिग थिंग ना. और कहते हैं दोस्तों कि जिंदगी में रास्ते कभी आसान नहीं होते, लेकिन हौसला और मेहनत हर मुश्किल को आसान बना देता है. आगे बढ़ते रहिए, क्योंकि सफलता उन्हीं को मिलती है जो रुकते नहीं. तो कार्यक्रम को हम आगे बढ़ाते रहे. ठीक है, चलो गीत सुन लेते हैं. और अगर आप भी कुछ कहना चाहें तो नंबर है 04300031701 या 3279-1701.

0: देखिए दोस्तों, ये चिली जो चीज है ना, ये बड़ा एडिक्टिव है। मैं तो बहुत बुरी तरह से एडिक्टेड हूँ, जैसे लोग अल्कोहल से एडिक्ट हो जाते हैं और तबेको वगैरह से। ये मेरा मेरा है चिली।
1: योर वीकनेस इज चिली,
0: राइट? एवरीवन नोज दैट।
1: यहाँ तक कि
0: जब मैं कहीं पर कभी जाता हूँ, कोई पार्टी वगैरह में या कहीं
1: शादी
0: में, तो दूर से कोई अपना हाथ उठा कर मुझे, ए जतीश लाए हो, क्योंकि मैं अपने चिली लेकर चलता हूँ।
1: यू आर एक्सट्रीम, आई एम नॉट दैट बैड, आई लाइक माय फूड हॉट, बट
0: या
1: बट आई थिंक यू आर वन लेवल हायर देन दैट।
0: ओह, आई एम अ फ्यू लेवल हायर देन यू दैट। एंड सो माय आज का हमारा जो क्या बोलते हैं मेन्यू इज सेट।
1: या
0: स्टिर फ्राई।
1: ओह, स्टिर फ्राई विद चिली ऑयल।
0: ओह मैन, can't wait for the time. Okay. What else I was going to say? Slip ho gaya, chala gaya.
1: Oh no.
0: Yeah, anyway, so that's what's going to happen in my house tonight. Chahe koi khaye ya na khaye.
1: No.
0: Lekin main khaunga.
1: I thought of a song, you know, Sarpute, yes. It's so
0: funny. Today's Tuesday, it's not Wednesday.
1: No, it's not Wednesday.
0: Oh, my God.
1: Anyway. But the way you said it, it just made me think of that song.
0: Oh, yeah.
1: Oh, gosh.
0: Come
1: hell or high water.
0: Jai marute, ya.
1: Yeah,
0: mai to... Come on, guys, help me. Quick, guys. Go on, dekhte hain kaun behtar hai. Chahe sar phoote ya kuch hai,
1: something like that. Anyway, okay, yeah. Because you're going on about mirchi, I thought, let me... I know it's not Wednesday,
0: yeah,
1: but...
0: It doesn't matter, yeah.

0: देखो दोस्तों, मैं हमेशा सच कहने का प्रयास करता हूँ, जहाँ तक हो सकता है मैं सच बोलता हूँ। और मैं सच यही बोलूँगा। या ओके, ऑन दिस बॉक्स ऑफ टिश्यू आई टेक द ओथ। मैं यही सच कहूँगा कि आज का जो गीत है, दे आर ब्यूटिफुल गीत, लेकिन ये मेरे चॉइसेस नहीं है। कमल कमल कमल याद कर रही होगी, यानी आपका एमी का चॉइसेस है, और अच्छा लगा, वेरी नाइस।
1: थैंक यू.
0: सो दे विल बिकम माई चॉइसेस टू। अच्छा, देखिए दोस्तों, मेरे जो द ओल्डेस्ट सन मेरा है, जो बड़ा बेटा है, उसका फ्रेंड का पिता ने उसको वीडियो भेजा है। वीडियो में दिखाता है कि 1 बजे सुबह आज किसी ने आया, गाड़ी का राइट राउंड किया। आई डोंट नो क्यों किया ऐसे, शायद कुछ एक डीएक्टिवेट कर रहा होगा। गाड़ी लेकर उन्होंने गया, रास्ते पर खड़ी थी गाड़ी, गाड़ी को लेकर गया, पर 1 घंटा बाद लाकर गाड़ी उसी जगह को पार्क करके चला गया। यू कैन सी हिम कमिंग
1: एंड गोइंग
0: देन टेकिंग द कार, देन एट 2 o'clock कम बैक, बिकॉज इट्स एक्टिवेटेड, राइट, मोशन इज फोकस्ड ऑन दैट कार। ही केम इन पार्क्ड, गॉट आउट एंड ही वॉक्ड अवे विद अ बैकपैक। कुछ डैमेज नहीं हुआ गाड़ी में, नथिंग एट ऑल। सो I told him it's not a laughing matter.
1: No.
0: You should report to the police at once because this guy could have committed a crime. But सोचने वाली बात है, why would a person come take a car for 1 hour, come back and park the car at the same place again, nicely parked, like nothing happened.
1: So if he didn't have a camera, he would not have known
0: at
1: all.
0: He would not have known that his car was been used.
1: Has been used for
0: so
1: whatever purpose.
0: So मुझे भी पता लगाना है कि चाबी कहाँ पर थी और कैसे उन्होंने स्टार्ट किया होगा।
1: सो बट आई थिंक दे कैन डीएक्टिवेट स्टफ, यू नो, दे हैव ऑल दीज लाइक डिवाइसेस।
0: या दैट्स व्हाई प्रोबब्ली वेंट अराउंड सो वेयर द डिवाइस इज, यू नो, टू डीएक्टिवेट इट। सो
1: इट्स सो स्केरी।
0: या स्केरी। कभी कभी मैं जब अपना वेन लेकर जाता हूँ, जो मेरा डू, sometimes I forget to lock it. Man, I could be going for a long ride, eh?
1: While you're asleep. Imagine you get up somewhere else.
0: And I'm going.
1: What is happening today?
0: I don't know.
1: I hope it's not the chili. Oh my
0: Why,
1: God.
0: This feels good tonight. What's happening? Oh boy. Hasi aa jaye dosto.

0: थैंक यू, आप लोग टेक्स्ट कर भेज रहे हैं, हंस भी रहे हैं। चलो दोस्तों, हंसना बहुत ज़रूरी है, और क्योंकि लाइफ इज जस्ट बट अ ब्लिंक ऑफ एन आई, ब्लिंक ऑफ, राइट? या ओके। अगर आपका कोई फरमाइश आप सुनना चाहें तो आप भेज सकते हैं हमारे पास, ठीक है?
1: Yes, of course. Why not? I've got nothing against that. Whoever wants to listen to whatever song.
0: और जैसे मैंने कहा दोस्तों, हंसना जो है ना, हंसना सेहत के लिए अच्छा होता है। आप जानते हैं इंडिया में शुरू किया गया था, अभी भी हो रहा होगा शायद, जो है लाफ हंसते हैं। कभी कभी झूठा हंसने से आपको सच्चा हंसी भी आने लगता है, है कि नहीं? लाफिंग इज वेरी गुड फॉर हेल्थ। वो कहते हैं कि वो बच्चा सोते हुए भी हंसता है, कल वो भी
1: द
0: बेबी स्माइल्स लाफ्स इवन व्हाइल स्लीपिंग, किसी ने कहा है। जब तक हंसना बंद नहीं होता, तब तक उम्मीद भी जिंदा रहती है। एज लॉन्ग एज यू कैन लाफ, होप इज स्टिल अलाइव।
1: दैट्स ट्रू।
0: तो हंसो दोस्तों, दिल खोल के हंसो। तो चलो हम ये प्रयास करते हैं आपको हंसाने को भी। लेकिन हमारा जो न्यूज होता है, आजकल का जो न्यूज है दोस्तों, क्या बताऊं आपको?
1: डिप्रेसिंग न्यूज।
0: आई
1: डोंट थिंक देयर इज एनीथिंग गुड इन द न्यूज एनीमोर।
0: आई हैव बीन टोल्ड दैट व्हाई डोंट यू वॉच न्यूज, बिकॉज़ यू नो व्हाट इज हैपनिंग इन द वर्ल्ड। I don't want to know what is happening in the world, because I know nothing good is happening.
1: Sometimes it becomes too much.
0: You think if you had a channel, and a good news channel, say we call
1: that'll
0: it,
1: be nice, yeah.
0: You think people would be watching, or are they so addicted to all the bad things nowadays in life?
1: I think
0: yehi buri cheez wo watch karna chahte hain, sunna chahte hain. Acha nahi.
1: I would watch good news.
0: I would too, I think. So, I don't know. ये doom और gloom जो इस दुनिया में है दोस्तों, देखो हम अपना दुनिया खुद अपना बना सकते हैं। ओके? कुछ लोग हैं जो लोगों के साथ रहना पसंद करते हैं। They can't survive alone.
1: Yeah.
0: कुछ लोग हैं जो बहुत competitive होते हैं। कुछ लोग हैं जो मालूम नहीं क्या क्या हासिल करना चाहते हैं, टू प्रूव व्हाट आई डोंट नो, मे बी टू देमसेल्व्स, हो सकता है। और कुछ लोग हैं जो एकांत में रहते हैं, नेचर को प्यार करते हैं, और ये सब करते हैं, जो क्राउड नहीं पसंद करते हैं, और ये जो अवार्ड्स वगैरह नहीं पसंद करते हैं। सो वी आर ऑल डिफरेंट काइंड ऑफ पीपल, aren't we? Maybe we should have a little bit of everything. I don't know. But, it's one of those things, isn't it?
1: Yep.
0: You like to be alone, or you like to be... I mean, like to be... You have to have friends. You like to be are in the same frequency.
1: You need your alone time as well.
0: Oh, very important.
1: It's very important. Right?
0: Very important.
1: You get to recharge yourself.
0: Yeah.
1: I think when you're alone, you learn a lot about yourself.
0: I think not only about yourself, you learn a lot about this world.
1: Oh, yes, alone. Yes.
0: Because
1: yes.
0: There's no interference. You can learn, you can, you know. Honestly, you learn a lot.
1: You
0: do. Jo humare bade bade log hue hain, kavi hue hain, aur jo jaise ki Aash Ghalib ka hum abhi bhi charcha karte hain, these guys were all thinkers. They were probably loners, right? And they understood life more, I think, because unka concentration usi mein rehta hai.
1: Yep.
0: Yeah. Anyway, chalo, aapka kya isme raha hai, vichar hai, bataiye. Aur number hai 04-3003-1701. Chalo, sunte hain geet.

0: ओके एक्सक्यूज मी, चलिए दोस्तों कुछ एड सुन लेते हैं, देन वी विल कम बैक. आप सुन रहे हैं रेडियो बिजवानी, आपकी अपनी पहचान.
1: Ready to stop renting and thinking about owning one, or maybe an investor looking to invest? Then think no more, and it is time to build your future in upcoming house and land packages available in Oxley, Breckenridge, Morgill and surrounding areas in Brisbane, Queensland. It is the great Australian dream. Homes built strong, smart and built to last. If you are ready to make the move, then don't wait till tomorrow. Call agent John Lawla on 0404-004-899. Yes, it's 0404-004-899. And quote code word Briswani. Your new home waiting for you in Oxley, Breckenridge, Morgill and surrounding areas in Brisbane, Queensland.
2: The Total Focus Group Australian International Masters 2026, hosted by Queensland Fiji Football Association QFFA, from 1st July till 5th July 2026 at the iconic Olympic FC Stadium in Yeronga, Brisbane, with 32 teams already confirmed participating across Fiji, Australia, New Zealand, Canada and United States. Festival atmosphere for the whole family, live entertainment, kids play zone and food stalls. For more information, contact President Jitendra Prasad, Chairman Imroz Mohammed and Secretary Aman Kumar, connecting the community. And a big thank you to our major sponsor, Total Focus Group.
3: इंडियन फैशन का जब भी जिक्र होता है तो लोग रानी क्रिएशंस को याद करते हैं, क्योंकि रानी क्रिएशन में सभी कुछ उपलब्ध है. यू गेट मेंस एंड लेडीज वेडिंग सूट्स एंड एक्सेसरीज, टॉप क्वालिटी डिजाइनर साड़ीज, लहंगा, सलवार कमीज, पार्टी वेयर एंड मेन शर्ट्स एंड सूट्स. यू कैन ऑल्सो ऑर्डर टेलर मेड सूट्स फ्रॉम रानी क्रिएशंस. इतना ही नहीं, ओरिजिनल डीवीडी, सीडीज, फोन कार्ड्स, प्रीपेड चार्ज कार्ड्स, फैंसी ज्वेलरी, बैंगल्स, गिफ्ट वेयर भी उपलब्ध है. फॉर टॉप क्वालिटी बॉलीवुड फैशंस, विजिट रानी क्रिएशंस एट 33 बलक्लावा स्ट्रीट, वोलंगाबा. ओपन daily from 9 a.m. Telephone Rani Creations on 3391-0622 or visit their webpage ranicreations.com. The one-stop Bollywood fashion and entertainment store, well known for its quality service and reasonable prices.
0: Okay, yeah, somebody said, yeah, we got that oil, but not this particular oil. It is somebody that's made it locally here, yeah. And it's, yeah, very nice. So it has got a little bit of Indian touch in it, which is very nice. ओके आगे बढ़ते हैं दोस्तों और कार्यक्रम में. और अगर आप भी कुछ सुनना चाहे तो प्लीज डू गिव अस अ कॉल. और या एंड जो गीत अगला जो गीत है इसका हमेशा हमारे पास रिक्वेस्ट आया करता था दोस्तों. एक फिजी का कलाकार है, सुन लेते हैं.

0: जी हाँ दोस्तों, दुनिया पागल है या फिर मैं दीवाना, क्या बात है। आपने सुना, और दयानंद, फिजी के दयानंद, और बहुत नामी सिंगर थे दोस्तों फॉर फिजी, एंड अनफॉर्चुनेटली इज नॉट विद अस। और एक बार आया था यहाँ पर शायद कुछ शो करने के लिए, वेरी लो कीड पर्सन, वेरी लो कीड शो करने के लिए आया था, तो वंडरफुल पर्सन। देखिए दोस्तों, कहते हैं कि जिंदगी में दो चीज कभी कभी मत छोड़िए, मुस्कुराना और उम्मीद, क्योंकि मुस्कुराहट प्रॉब्लम्स को छोटा कर देती है और उम्मीद कल को बेहतर बना देती है। जिंदगी में दो चीज कभी नहीं छोड़ना, मेरे ख्याल से तीन चीज कभी नहीं छोड़ना। याद रखिए, खुश रहने के लिए सब कुछ होना जरूरी नहीं, लेकिन जो कुछ है उसकी कदर करना जरूरी है। मुस्कुराते रहिए, गाते रहिए, और रेडियो बिजवानी 79.1 AM के साथ जुड़े रहिए। ठीक है, ओके, चलो आगे
1: आगे पीछे आगे पीछे।
0: अनादा सॉन्ग, आगे पीछे, मतलब बढ़िया।

0: शाबाश पंडित, बड़ा अच्छा गाना था.
1: What a beautiful song.
0: अच्छा लगा सुनकर.
1: ओके,
0: इस समय 8:19 हो गए हैं दोस्तों. आपको याद रहे कि इस कार्यक्रम के बाद में आप सताक्षी के साथ रहेंगे और 11 बजे संदेश के साथ पंजाबी प्रोग्राम, 3 बजे से आप हो जाएंगे निविया के साथ. एंड निविया, I like her new songs that she comes up with.
1: Okay, that's good.
0: Very, very nice. Very Western kind of songs. Yeah.
1: Okay.
0: अच्छा लगता है मुझे.
1: It's good for that part of the day.
0: Yeah, she's got segmented program. And then she has a part where she discusses about the news, you know. And then she then goes into old songs.
1: Oh, that's good.
0: Very nice. सब प्रोग्राम अपने अपने स्टाइल से लोग करते हैं दोस्तों, बड़ा अच्छा लगता है. दिस द वैरायटी, इज़न्ट इट?
1: वैरायटी इज़ अ स्पाइस
0: ऑफ लाइफ. तो चलिए आगे बढ़ते हैं.
1: सो कैन वी कॉल ब्रिजवानी स्पाइसी?
0: वी आर वेरी स्पाइसी. आई हैव गुड वन ऑफ कोर्स.
1: या
0: वी मस्ट. ना यू राइट, वेरी स्पाइसी.
1: वी आर स्पाइसी. आई थिंक
0: What'd
1: Why didn't we think of that before?
0: I don't know.
1: What
0: about being spicy?
1: Yeah.
0: Yeah, we can always change something, can't we?
1: Yeah.
0: Ask our people. Come up with an idea where we can sound very spicy.

0: ओके बहुत प्यारा गाना था दोस्तों. दैट सॉन्ग इज ऑलवेज सो नाइस टू हियर, इजंट इट. दिल को छू लेने वाला गाना है. वेल आई मस्ट से आज जो चॉइसेस है, मैं भी बजाया करता था लेकिन मोस्टली आपका चॉइस है आज. आई मीन लाइक दे आर वेरी नाइस चॉइसेस.
1: लाइक यस्टरडे
0: मिर्च नहीं लगा रहा हूँ मैं, बटा नहीं कर रहा हूँ मैं, सच कह रहा हूँ. नाइस सॉन्ग्स. करना तो ज्यादा कर मेरा चॉइस था. चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों. रेडियो बिजवानी आप सुन रहे हैं, आपकी अपनी पहचान. ओके
1: ओके

0: ओ सम ओल्ड हिट्स अब हम शुरू करेंगे दोस्तों. अभी ओके लेट्स सी व्हाट यू हैव कम अप विद दिस टाइम फॉर द ओल्ड गाना.
1: ओह माय गुडनेस, यू पुट मी अंडर प्रेशर डोंट यू.
0: नो
1: व्हाई, व्हाट्स गोइंग ऑन विद माय माइक? माय माइक्स वांटिंग टू डाई. माय माइक सेज गो होम. व्हाट इज माय माइक सेइंग?
0: योर माइक हैज अ वेरी स्मार्ट वे ऑफ सेइंग हाउ यू फील.

0: What a sweet song. Thank you. बहुत nice, अच्छा लगा. और कहते हैं दोस्तों, the one who radiate peace through their thoughts are the true givers of the world. इतने अच्छे अच्छे बातें आ जाते हैं. गुरु जी ने कहा था. और चलो अच्छा लगा. सोनी भाई कैसे हो आप? उम्मीद है आप अच्छे होंगे. और अब हम उस समय आ गए हैं दोस्तों जब आहिस्ता आहिस्ता हमको यहाँ से निकलना पड़ेगा. आहिस्ता नहीं, मुझे बहुत फास्ट जाना है आज. 9:20 है मेरा अपॉइंटमेंट.
1: जी हाँ, लेट्स लेट्स लेट्स कट टू द चेस इन लास्ट टू सॉन्ग्स. ओके.

0: ओके अब हम जा रहे हैं दोस्तों यहाँ से
1: जी,
0: और कल जरूर मिलेंगे, जरूर मिलेंगे
1: जी।
0: पॉजिटिव थिंकिंग बहुत जरूरी है,
1: Wednesday.
0: और अपना ख्याल रखिएगा दोस्तों आप। बी काइंड टू एवरीबॉडी, बी काइंड टू योरसेल्फ,
1: वी विल डू एवरीथिंग पॉसिबल टू बी हियर विद यू टुमारो।
0: Yeah. Like Amita always says too, remember everything in limits, okay?
1: If only she would practice that.
0: With her chocolates.
1: Oh. And her. Okay, we'll stop there.
0: It's Namaste. So much easy to preach, isn't it?
1: Yeah. We'll see you all tomorrow.

0: गुड मॉर्निंग। ये अलार्म नहीं है भाई सुबह का, ये तो सताक्षी की गुड मॉर्निंग है आपसे और खासकर उनसे जिनको अभी भी गुड मॉर्निंग करने का बिल्कुल दिल नहीं है। देखिए उठ जाइए, सुबह जो है वो ढेर सारे एहसास तो आपके लिए लेकर आती ही है, लेकिन एक चीज और है जो खास आपके लिए हर रोज नई सुबह लेकर आती है। आपकी जिंदगी में एक नया दिन और आपके लिए एक नया मौका उन ख्वाहिशों को पूरा करने का जिन्हें आप बेसब्री से पूरा करना चाहते थे कल रात को। बस यही सोच रहे थे कि एक दिन और मिल जाता तो बस हम कर ही डालते इसे पूरा। तो चलिए आज फटाफट से उठ जाइए और इन ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए आज जो ये दिन आपको मिला है इसे जाया मत करिए, इसे वेस्ट मत कीजिए और इसको खूबसूरत बनाइए अपने नए एहसासों और मोहब्बत के साथ। मैं हूँ सताक्षी दोस्तों रेडियो ब्रिस्वानी पर आज एक बार फिर से, और मेरे साथ हैं बॉलीवुड के कई बेहतरीन गाने, ऐसे मॉर्निंग ट्रैक्स जो आपको एक बार फिर से रिफ्रेश कर देंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं मिलके आज के इस जर्नी की इस अगले ट्रैक के साथ। स्टे ट्यून्ड रेडियो ब्रिस्वानी, सताक्षी के साथ सुनते रहिए इट हैपेंस।
1: असूलों पर जहां आ जाए टकराना जरूरी है, बंदा जिंदा हो तो जिंदा नजर आना जरूरी है, बंदा हो तो जिंदा हो।

इट्स एंजॉय कर रहे हैं दोस्तों आप रेडियो ब्रिस्पानी 1701 एम पर सताक्षी के साथ। आगे बढ़ूं उसके पहले जो खास दिन जिनका आज है उनको हम विश करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। रेडियो ब्रिस्पानी विश करता है उन्हें जिनके लिए आज का दिन स्पेशल इसलिए है क्योंकि आज उनका जन्मदिन है। जन्मदिन की बर्थडे की ढेरों ढेर शुभकामनाएं और आपकी जो जिंदगी है महकती रहे, खुशियों से चहकती रहे और आप हर दिन इस जिंदगी को खूबसूरती से जीते रहे, अपनी जिंदगी में पॉजिटिव रहे और सेल्फ लव की तरफ जरूर बढ़ते रहे क्योंकि खुद से मोहब्बत बाबू मशाय बहुत जरूरी है। और जिनके लिए आज का दिन स्पेशल इसलिए है क्योंकि उन्हें मोहब्बत खुद से नहीं किसी और से हो रखी है, तो भाई शादी की सालगिरह बहुत बहुत मुबारक। लेकिन चाहे वेडिंग एनिवर्सरी आप इसलिए मना रहे हैं क्योंकि लव मैरिज हुई थी या फिर आपकी हुई थी अरेंज मैरिज, देखिए मैरिज तो मैरिज है और मैरिज के बाद चाहे लव हो या अरेंज हो बीवी बीवी होती है। और आप ना भी चाहे तो भी वो आपको बता देंगी कि भाई आज कुछ स्पेशल करना है, तो उनको बताने का मौका मत दीजिए और आप अपनी वेडिंग एनिवर्सरी को और भी खास बनाइए और आज एक दूसरे के साथ एक अच्छा क्वालिटी टाइम स्पेंड कीजिए ताकि जो रोज की जद्दोजहद है, स्ट्रगल्स है, उनके चलते आप एक दूसरे को वक्त नहीं दे पाते, आज वो वक्त आप जरूर दें। जिनके लिए आज का दिन स्पेशल और खास है उन सबको ऑल द वेरी बेस्ट। आप सबको डेडिकेट करेंगे ये अगला ट्रैक। स्टे ट्यून्ड रेडियो ब्रिस्पानी सताक्षी के साथ, सुनते रहिए इट हैपेंस।

इट हैपेंस एंजॉय कर रहे हैं आप रेडियो ब्रिस्वानी 1701 एम पर। दोस्तों इट हैपेंस के सफर में आज एक बार फिर से आपका साथ सताक्षी दे रही है, सताक्षी निभा रही है। तो सबसे पहले तो ये बताइए कि कैसे हैं आप जिंदगी में, ये सब कुछ मजेदार जबरदस्त और बेहतरीन चल रहा है कि नहीं? भाई देखिए, मुझे पूरी उम्मीद हमेशा की तरह है कि सब कुछ एकदम चकाचक होगा, बढ़िया होगा, जबरदस्त होगा। और यकीन मानिए, वहां अगर सब कुछ ठीक है तो यहां हम भी बिल्कुल ठीक है। और आज एक बार फिर से आपके लिए चुनकर लाई हूं कुछ ऐसे नगमे, ऐसी बातें जो आपके दिन को बनाने की पूरी कोशिश करेंगी और आपको आपकी जिंदगी से मिलवाने की भी कोशिश करेंगी। तो चलिए फिर, आज दिन भी है, मुहूर्त भी है और अच्छी सी मॉर्निंग भी है, हम और आप भी हैं। और दिन और मुहूर्त मैंने इसलिए कहा क्योंकि यार जब ना जिंदगी में आप कुछ करने की ठान लेते हैं, अपने दोस्तों से मिलने की, अपने किसी काम को करने की आप सोच लेते हैं, तो मुझे लगता है वही दिन वही मुहूर्त तो बन जाता है सबसे शुभ, है ना। तो आज बस मुहूर्त निकल आया है हमारी जिंदगी में कुछ बेटर करने का, हमारी जिंदगी से हमको मिलने का और एक कदम अपनी सक्सेस की तरफ और बढ़ाने का। आइए इस अगले कदम के साथ, जिंदगी के अगले कदम के साथ, हमारी सक्सेस के अगले कदम के साथ आगे बढ़ते हैं हम भी इस सुबह को गुड मॉर्निंग कहते हुए और एंजॉय करते हैं इस अगले ट्रैक को। स्टे ट्यून्ड रेडियो ब्रिस्वानी, सताक्षी के साथ एंजॉय करते रहिए इट हैपेंस।

वेलकम बैक, इट हैपेंस। एंजॉय कर रहे हैं आप सताक्षी के साथ रेडियो प्रस्वानी 107.01 AM पर। हर एक मुस्कुराहट मुस्कान नहीं होती। ये गाना जो है ये बहुत कुछ कह देता है। वैसे देखिए, आपके सामने जो हंस रहा है, जिसकी स्माइल आपको खूबसूरत लग रही है, उसको देखकर आप ये सोच रहे हैं कि बंदा कितना खुश है अपनी जिंदगी में। तो क्या वो बंदा सच में खुश है? कभी कभी स्माइल्स भी फेक होती हैं, क्योंकि हम हर किसी के आगे अपनी तकलीफ अपना दर्द बयां नहीं कर सकते यार। लोगों को दिखाने के लिए मुस्कुराना पड़ता है, हंसना पड़ता है, हम खुश हैं ये दिखाना पड़ता है। तो कभी भी ये मत सोचिए कि सामने वाला या आप खुद भी अगर स्माइल कर रहे हैं, ये सामने वाला आपके आगे मुस्कुरा रहा है, तो वो बहुत खुश है जिंदगी में। उसकी जिंदगी में क्या बीत रही है ये तो वही बेटर जानता। और ठीक इसी तरह से, जी हाँ, ठीक इसी तरह से आंसू भी हमेशा रियल नहीं होते, हमेशा प्योर नहीं होते। यानी कि प्योर हार्टेड इंसान ही रोता है, ऐसा नहीं होता है भाई। कभी कभी वो कहते हैं ना कि

क्रोकोडाइल टीयर जिसे आप कहते हैं, हाँ वो भी निकलते हैं मगरमच्छ वाले आंसू, ठीक है। तो हर एक रोते इंसान को साफ दिल का मत मान लीजिए, और ये मत मान लीजिए कि यार इसकी जिंदगी कितने दुखों से भरी हुई है, इसके लिए आपको उसके दुखों के बेस में जाना पड़ेगा, तभी सच्चाई सामने आएगी, ठीक है जी। तो चलिए अभी हम फिलहाल आगे बढ़ते हैं एक रियल से और एंटरटेनिंग गाने के साथ। सुनते रहिए इट हैपेंस, और रहिए सताक्षी के साथ सिर्फ और सिर्फ रेडियो ब्रिस्पानी पर।

इस फानी पर गानों की हैट्रिक सताक्षी के साथ आप एंजॉय कर रहे हैं और एंजॉय कर रहे हैं मेरे साथ कई बेहतरीन और खूबसूरत गाने। लेकिन गानों की हैट्रिक का ही लास्ट ट्रैक दोबारा सुनने को थोड़ी ना मिलेगा इस प्रोग्राम में। आइए इसे एंजॉय करते हैं और इसके उस पार ढेर सारी बातें आपसे होंगी। स्टे ट्यून्ड रेडियो ब्रिस्फानी।

0: ਓਏ ਰਾਹੁਲ ਵੀਰੇ ਤੇਰੇ ਕੇਸ ਦਾ ਕੀ ਹੋਇਆ?
1: ਓ ਯਾਰਾ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵਰੀਡ ਆ। I actually want an experienced lawyer to handle my case.
0: Go for the best, Vire. Atul Bhardwaj ji nu ajj hi contact karo. Ona de kol vast experience aa te law di intricacies nu handle karan ch vi oh expert han. Criminal law, domestic violence, traffic drug offense vich 12 saal to vadh da rich experience. Te conveyance, family law, immigration laws vich vi Bhardwaj and Associates de lawyers da vast experience aa. And the best point, they understand the stress that you go through and work effectively to minimize it.
1: Thanks a ton, Vire. I'm so relaxed to hear that.
0: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Ajji contact karo Atul Jino on 0400-234-235. That is 0400-234-235.
2: Anuj, koi achha sa lawyer suggest karo na. Aisa jo meri sari baat dhang se sune, samjhe, और फिर मेरे तरीके से मुझे समझाए।
3: अरशाद लॉयर्स है तुम्हारी प्रॉब्लम का सलूशन। कमर्शियल मैटर हो जैसे लीज का मामला, बिजनेस हो या फिर घरों की बाइंग सेलिंग का मामला, और डिवोर्स जैसे फैमिली मैटर्स भी, वो सब में मदद कर सकती हैं। और फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अदालत तक तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। अभी फोन करो 0420-933-171 पर और 15 मिनट का फ्री फोन कंसल्टेशन ले लो।
2: अरे वाह, इनका पता बताना।
3: अरशाद लॉयर्स, माउंट ग्रेविट शोग्राउंड्स, ऑफिस 5, 1644 लोगन रोड, माउंट ग्रेविट, एम्पल पार्किंग। कॉल अरशाद फ्रॉम अरशाद लॉयर्स नाउ ऑन 0420-933-171। वेबसाइट www.arshadlawyers.com। We pride ourselves in providing excellent service.

0: 3271701 AM पर आप एंजॉय कर रहे हैं आपका अपना ब्रेकफास्ट शो इट हैपेंस। इट हैपेंस में सताक्षी आज एक बार फिर से आपके साथ है और सताक्षी के साथ आप सुन रहे हैं कुछ बेहतरीन बॉलीवुड नंबर्स। वैसे लगता है ना यार, जिंदगी में अगर अपने साथ हो तो जिंदगी कितनी आसान हो जाए, कितनी जबरदस्त हो जाए। जब दोस्तों वाली उम्र होती है तो दोस्तों को साथ लेकर चलना चाहते हैं, जब कंफर्ट जोन मिलता है तो पेरेंट्स के साथ उंगली पकड़ के चलना चाहते हैं, लाइफ पार्टनर का साथ मिलता है तो लगता है कि यार इसके साथ पूरी जिंदगी भर साथ चलना है। हाँ, चलना तो है, साथ चलना है, लेकिन आपके लिए कोई और नहीं चलने वाला इस दुनिया में। अपने रास्ते पर, अपनी रोड पर आपको खुद ही चलना है और यकीन मानिए इस रोड को आपको अकेले ही पार करना है। बहुत सारे रिश्ते, बहुत सारे लोग आपके साथ जुड़ते रहेंगे, छूटते रहेंगे, मगर आपके पास ऑप्शन नहीं है सब कुछ छोड़ के भागने का। ये रास्ता आपके लिए बनाया गया है और जितना लंबा बनाया गया है आपको उतना लंबा अकेले भी तय करना पड़ेगा। हमेशा जिन लोगों को आप साथ लेकर चलना चाहते हैं वो आपके लिए आपकी रोड पर साथ नहीं चलेंगे। आइए इसी बात पर आगे बढ़ते एक और गाने के साथ, सुनते रहिए इट हैपेंस, सताक्षी है आपके साथ।
1: भूख लगी जोरों की भूख लगी, मुर्गे की बांग हमें कोयल की भूख लगी।

साक्षी के साथ आप एंजॉय कर रहे हैं इट हैपेंस। जी हाँ, आपका अपना ब्रेकफास्ट शो जिसमें आज एक बार फिर से साक्षी आपके साथ कुछ बेहतरीन गानों के साथ साथ निभा रही है। और बातें तो यार हमारी होती है जबरदस्त और मजेदार है। तो इन बातों से याद आया कि मैं ये पूछ रही थी आपसे, एक चीज बताइए भाई कि पास्ट को लेकर आज भी रोते हैं, पास्ट को लेकर आज भी परेशान होते हैं? वही तो, हम में से ज्यादातर लोग यही तो कर रहे हैं कि अपने पास्ट को लेकर परेशान हो रहे हैं, रो रहे हैं। अब आप कहेंगे कि उससे क्या होता है? देखिए, उससे ये होता है कि आपका पास्ट आपके आज को इफेक्ट कर रहा है, यानी कि आप कितने भी खुशी दिखा ले आप दिल से खुश नहीं है। असल में पास्ट जब प्रेजेंट को इफेक्ट करना बंद कर देना तभी जिंदगी में असली खुशी आती है। तो हटाइए ना ये पास्ट, क्या रखा है इसमें? कुछ भी तो नहीं रखा है। मतलब सोचेंगे, परेशान होंगे, आप कल में जाके उस कल को बदल नहीं सकते हैं और ना ही बीता हुआ कल आज में ला सकते हैं। तो कम से कम इतना ही कर लें कि कम से कम आज को जी लें, है ना जी? तो चलिए जीते हैं आज को पूरी तरह से खुलकर और एंजॉय करते हैं ये अगला ट्रैक। सुनते रहिए इट हैपेंस, साक्षी है आपके साथ।